0: रोज रात 8 बजे सिर्फ CMR 101.3 FM टोरंटो।
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट ले, कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वेयर योर कार गेट्स द It deserves.
2: कैशपॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000, 416-284-7000.
3: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इंपॉर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $120 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.79% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
4: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 आवर्स नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेपाटो रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
1: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं। और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील, कॉल 905-946-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere, or visit mymechanicauto.ca.

0: Another Dawn Clean with the Dawn Ducks.
1: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
2: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
1: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
2: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
1: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
2: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
1: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
0: Dawn Platinum, the better grease getter.
3: गोल्ड खरीदना है तो ये है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट्स 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटोबिकोक नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीदने बचत। विजिट asiagolding.com। Looking for your next ride? Morningside Nissan पर ये है perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. जी हाँ, आपने ठीक सुना, 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. अब फिक्र ना करें, हम सब credit types के साथ काम करते हैं, जिससे सबको approve होने का मौका मिल सके. Visit Morningside Nissan today and मिले AHA से, और call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan.
4: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था, और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए। टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार, ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स SR फ्रॉम $154 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 3.99% APR विद $5,800 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.

0: रोज रात 8 बजे सिर्फ CMR 101.3 FM टोरंटो।
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहां बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.
2: कैशपॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000, 416-284-7000.
3: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इंपॉर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $120 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.79% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
4: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेपाटू रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
1: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9046-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere, or visit mymechanicauto.ca.

0: Another Dawn Clean with the Dawn Ducks.
1: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
2: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
1: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
2: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
1: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
2: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
1: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
0: Dawn Platinum, the better grease getter.
3: गोल्ड खरीदना है तो यह परफेक्ट टाइम क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट्स 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीदने बचत। विजिट asiagolding.com। Looking for your next ride? Morningside Nissan पर ये है perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. जी हाँ, आपने ठीक सुना. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. और फिक्र ना करें, हम सब credit types के साथ काम करते हैं, जिससे सबको approve होने का मौका मिल सके. Visit Morningside Nissan today and मिले AHA से और call 416-804-2365. Drive home your new Nissan.
4: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए। टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार, ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स SR फ्रॉम $154 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 3.99% APR विद $5,800 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
3: CMR at 8 दिल से एक घंटा बेहतरीन म्यूजिक, दिलचस्प बातें और आपकी अपनी कम्युनिटी के साथ।
4: हर शाम दिल से।
3: मंडे टू फ्राइडे 8 PM टू 9 PM सिर्फ CMR 101.3 FM टोरंटो पर।

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी, और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इंपॉर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $120 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.79% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।

किसी लड़की की बाहों में झूल जा, दो चार दिन बाद उसको भूल जा। ए, और सुन,

0: और मी नहीं चलेगा। वैम बैम थैंक यू मैम नहीं चलेगा। वन नाइट स्टैंड नहीं चलेगा।
1: लिसन मैडम, तो क्या चलेगा?

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी कि मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड डिपार्चर रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
3: आप सुन रहे CMRF 9, Monday to Friday, 9 AM to 11 AM. Stay tuned.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.
1: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोवर को दोस्त के घर ले जाने के लिए। टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार, ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स SR फ्रॉम $154 वीकली फॉर 36 months एट 3.99% APR विद $5,800 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
0: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs, jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send aur receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
2: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट ले। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.

0: You're listening to CMR at 9 on CMR 101.3 FM.
1: Toronto!
2: Kaheen mat jaiye.
0: Don't touch that dial.
2: Hum bas yo chale hain.
0: After a short break and a few messages from our sponsors. Stay tuned for more hit Bollywood classics, timeless melodies, and non-stop entertainment. CMR 101.3 FM, Toronto! We'll be right back!
3: Looking for your next ride? Morning side Nissan, but ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Aur fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morning Side Nissan today and mile EAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morning Side Nissan.
4: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो से जस्ट 2 आवर्स नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेपाटू रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका. हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स. खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ. So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
3: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें. वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स. नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ ही ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी. और हाँ, विद ए मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री. सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील. कॉल 905-946-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.

0: राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा।

रिलायबल पावर हर इंपॉर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $120 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.79% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today।

0: आप सुन रहे CMRX 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 11 AM. स्टे ट्यून्ड. Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. हम प्रोवाइड करते हैं honest और reliable services for all your financial needs, जैसे कि worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. दुनिया के किसी भी कोने से send और receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer करता है top dollars for your gold. Unwanted or used gold के लिए Cashpoint देगा fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call kare 416-284-7000. 416-284-7000.
1: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें. वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स. नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी. और हाँ, विद ए मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री. सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं. और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील, कॉल 9 046 1000 for Midland and Sears and 416 757 1000 for Midland and Ellesmere, or visit mymechanicauto.ca.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.
1: डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड डिपार्चर रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मस्कोका. हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स. खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीज हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ. So call today at 705-378-2210, 705-378-2210. Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Aur fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AHA se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside.
0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था, और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए। टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स SR फ्रॉम $154 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 3.99% APR विद $5,800 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।

0: आप सुन रहे हैं CMRX 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 11 AM. स्टे ट्यून्ड.
1: Another Don Clean with the Don Dux.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर इट डिजर्व्स.
5: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विथ $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
6: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. हम provide करते हैं honest और reliable services for all your financial needs, जैसे कि worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. दुनिया के किसी भी कोने से send और receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer करता है top dollars for your gold. Unwanted or used gold के लिए Cashpoint देगा fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स .ca।

0: FM.
1: Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Aur fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan. क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो से जस्ट 2 आवर्स नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेपाटू रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका. हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स. खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ. So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स.ca।
2: ओहो,

0: रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन, तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाए अपने सीजनल टायर्स और करवाए सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट ले, कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वेयर योर कार गेट्स द केयर इट डिजर्व्स।
1: कैशपॉइंट, वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein, 416-284-7000, 416-284-7000.
2: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इंपॉर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $120 वीकली फॉर 36 months एट 4.79% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ ही ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 905-946-1000 फॉर मिडलैंड एंड सील्स एंड 416-757-1000 फॉर मिडलैंड एंड एल्समियर और विजिट mymechanicauto.ca।
1: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400 एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेपाटू रिसोर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीज हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
2: Listen to us around the universe, www.cmr.fm.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था, और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए। टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार, ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स SR फ्रॉम $154 वीकली फॉर 36 months एट 3.99% APR विद $5,800 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: Another Don clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.
5: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: तभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इम्पोर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $120 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.79% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1,000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9046-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
2: Oh, hey!

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, jahan news, views, sports, entertainment ki khabre hongi bilkul unlimited. Entertainment to bahut hai, lekin yahan par milega aapko bilkul unlimited. News aur views to har jagah milenge, lekin yahan par milega bilkul unlimited.
3: Yahan bhi hoga, wahan bhi hoga, ab to sare jahan mein hoga kya? Mera hi jalwa.
2: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक. पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
4: है आदत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
2: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम.
5: और म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई, लेके
2: रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम. स्टे ट्यून्ड.

0: The advertisements, views, and opinions expressed in the radio show are that of the sponsors, guests, and callers, and are not necessarily those of the South Asian Unlimited show, host, and its producers. The show is for entertainment purposes only and does not advocate any sponsors' messages. It is solely the responsibility of the advertiser or sponsor.
1: Namaskar, Sasrikal, Assalamu Alaikum, main Sunny Joshi, aapka hardik swagat karta hoon. Sore throat aaj bhi hai. कोशिश होगी 2 बजे तक शो को किसी तरीके तक मैनेज करने की और आप तक पहुंचाने की. बाहर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस फील्स लाइक 21 एंड ब्रह्मास्त्र के गीत से दिन की शुरुआत की है. स्टूडियो का नंबर 416-593-0055. 12:15 की हेडलाइंस बिल्कुल रेडी हैं एंड स्पॉन्सर्स के मैसेजेस. द सेगमेंट इज़ ब्रॉट टू यू बाय क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा, Rajdhani Sweets and Restaurant, Kavya Home Your Care and McVean Dental Care. We'll take a very short break. Headlines aap tak pahunchate hain aur Manan ji bhi hamare saath honge aage chalkar and sari khabrein somehow 2 baje tak aap tak pahuncha di jayengi.
0: मॉर्गेज का कोई भी काम याद रखें एक ही नाम, मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी. फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक. बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी. 6478631940 6478631940.
2: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ. वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है. एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे. हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट. फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर. विजिट veinsautogroup.com.
0: क्या आपकी होम और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल ड्यू है? क्या आपको तलाश है गुड रेट्स की फॉर द राइट कवरेजेस? तो आज ही कॉल करें गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिस्सागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296. इट्स 289-891-0296. आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग 2 cars एंड अ होम. Remember, you're in good hands with Allstate.
3: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश. खरीदिए GTA में कहीं और ना मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा. ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808.
4: की तुहानू इलेक्ट्रिशियन दी लोड है, सानू हाई रिस्क इलेक्ट्रिकल ते कॉल करो. हाई रिस्क क्यों? क्योंकि साडे कोल लाइसेंस नहीं है ते सी इलेक्ट्रिकल परमिट नहीं लेंदे. जाने की तुसी पक्का नहीं कह सकदे कि साडा काम किन्ना कु सुरक्षित जां कानूनी है, पर एक गल पक्की है कि जदों वी असीं आवांगे असीं तुहाडा टॉयलेट जरूर वरतांगे. इसलिए हुणे कॉल करो, असीं वादा करदे हां कि तुहाडे घर नूं आग नहीं लगेगी. शायद
5: अपने परिवार की रक्षा करो, सिर्फ लाइसेंस्ड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ही वरतो अते यकीनी बनाओ कि ईएसए परमिट हासिल करन. होर जानने लई hirelicense.ca ते जाओ. इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वल्लों एक सुनेहा.
6: समर ड्राइव का एक्साइटमेंट बढ़ाएं विद टंड्रा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा. आपके नेक्स्ट एडवेंचर के लिए बिल्ट और फाइनेंसिंग सिर्फ 3.99% से. बिग सिलेक्शन, बिग समर मोमेंटम. टोयोटा करोला भी इन स्टॉक है आपकी रोजाना ड्राइव के लिए. बुक अ टेस्ट ड्राइव टुडे. वी पे टॉप डॉलर फॉर योर ट्रेड. इट्स टाइम टू टोयोटा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा.com. लोकेटेड है 3300 स्टील्स एवेन्यू, ईस्ट मार्कम पर. A proud member of Vane's Auto Group.

0: गुड आफ्टरनून, शुरू करते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस। शुरू करते हैं ताजा तरीन हेडलाइंस। ईरान टेंशन के बीच यूएस ने प्लान का ऐलान किया, अ न्यूक्लियर एग्रीमेंट विद सऊदी अरब। यूएस ऑफिशियल के अनुसार यूएस इंडिया ट्रेड डील 3 से 4 महीने में होगी साइन। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पिकैक्स माउंटेन न्यूक्लियर साइट पर हमले की दी वार्निंग और कहा वी आर नॉट फिनिश्ड। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने पिकैक्स माउंटेन पर न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजल्स को शिफ्ट किया। यूएस स्टूडेंट वीजा रूल चेंज, F1 J1 होल्डर्स को एडवाइज किया गया टू रिटर्न बाय सितंबर 15। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने जांच शुरू की इनटू हार्वर्ड चाइना बेस्ड फाइनेंशियल एड प्रोग्राम्स। यूएस के ओहायो रिवर में मास ड्राउनिंग में 5 लोग मारे गए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ्स के ऑर्डर्स के बाद कनाडा से इज रेडी टू इंटेंसिफाई ट्रेड टॉक्स। पीएम कार्नी के अनुसार कनाडा ने प्रपोजल्स दिए हैं टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। ड्रग ट्रैफिकिंग केस में FBI इश्यूज वांटेड नोटिस अगेंस्ट एन इंडियन नेशनल। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी का कहना है कि अब तक ईरान वॉर हैज कॉस्ट $37.5 बिलियन टू द यूएस। लोकल समाचारों में टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट ने अपने $4.5 बिलियन ट्रांसफॉर्मेशन का फेज 2 शुरू किया। सिक किड्स डॉक्टर को चार्ज किया गया विद पोजेसिंग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। वर्क कंप्यूटर हैज बीन सीज्ड। ट्रंप के थ्रेट के बाद प्रोविंसेस ने एग्री किया टू कट बैरियर्स ऑन डायरेक्ट टू कंज्यूमर अल्कोहल सेल्स एंड रेंटर्स डिफ्रॉडेड बाय मोर देन $60,000 ब्रैंटन महिला चार्ज्ड। ओंटारियो के नॉर्थ में 170 से ज्यादा वाइल्ड फायर अभी भी एक्टिव हैं और स्कारब्रो कमर्शियल बिल्डिंग फायर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन राइट नाउ। भारतीय समाचारों में CCTV में कैद हुआ टेररिस्ट शूटिंग जम्मू कश्मीर कॉप एट पॉइंट ब्लैंक रेंज। नई सैटेलाइट इमेजेस ने दिखाया पूरा देश क्लाउड से कवर्ड है मॉनसून से की हुई वापसी। उत्तर प्रदेश के लिए वेदर ऑफिस ने हैवी रेन प्रिडिक्ट की विद वाइड स्प्रेड थंडरस्टॉर्म्स। असम की फ्लड सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ी, 21 लोग मारे गए इन 24 आवर्स। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चीफ का कहना है कि इंडिया अब एक सोलर सुपर पावर है बैक्ड बाय स्किल्ड वर्कफोर्स। बर्गर वीडियो पर कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन का कहना है कि इफ समवन इज हंग्री दे ईट, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, मूवमेंट के लिए मेरी सर्विस पर सबूत की जरूरत नहीं। सिक्किम टनल कलैप्स में 20 मजदूर मारे गए, एफर्ट्स जारी हैं टू रेस्क्यू 5 ट्रैप्ड। नीट टॉपर ने मीडिया से कहा वाई गो टू प्रोटेस्ट व्हेन आई कुड स्टडी एंड इम्प्रूव माई स्कोर। जम्मू एंड कश्मीर में एक क्लैरिक को अरेस्ट किया गया फॉर शेल्टरिंग एंड एडिंग पाकिस्तानी टेररिस्ट। टेरर इकोसिस्टम के खिलाफ मेजर क्रैकडाउन जारी। राहुल गांधी ने गवर्नमेंट को टारगेट किया, कहा 10 सालों में 152 पेपर लीक्स हुए हैं बट 0 कन्विक्शंस। बीजेपी कांग्रेस वर्कर्स क्लैश इन पुणे, पुलिस ने की लाठीचार्ज। पाकिस्तान की खबरों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 10 टेररिस्ट को मार गिराया। बलूचिस्तान के IBOs में 2 फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स को हिरासत में लिया गया। PM शरीफ ने ईरान US के से डी एस्केलेशन की गुहार लगाई, बोले हम मीडिएटर का रोल जरूर निभाएंगे। ईरानियन इंटीरियर मिनिस्टर ने CDM मुनीर से भी की मुलाकात। डेली प्राइसिंग पर हो रही टॉक्स के फेल होने के बाद पेट्रोल पंप ओनर्स ने नेशन वाइड स्ट्राइक का ऐलान किया। गवर्नमेंट ने फ्यूल सेविंग प्लान्स को एक्टिवेट करने पर विचार किया। गवर्नमेंट ने पेट्रोल प्राइस को 4.90 पैसे से बढ़ाया, डीजल बाय 7 रुपीज 15 पर लीटर। मोटरवे गैंग रेप केस में लाहौर हाईकोर्ट ने कॉन्विक्ट्स के डेथ सेंटेंसेस को कंफर्म किया। अदालत का कहना है कि ये क्राइम उस कैटेगरी में आता है जिससे कि कानून की कॉन्शियंस भी हिल जाती है। ड्रग क्रिमिनल अनमोल अलायस पिंकी के खिलाफ केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट। चलान में 14 विटनेसेस और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम भी शामिल। पाकिस्तान ने US से $10 बिलियन की मांग की है, अगर अप्रूव्ड हुआ तो पाकिस्तान के रिजर्व्स को इससे मदद मिलेगी। इस्लामाबाद ने बायलैटरल एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी की मांग की विद अ मैच्योरिटी ऑफ अप टू 5 ईयर्स। सऊदी अरब के खिलाफ हुती थ्रेट्स को पाकिस्तान ने जमकर कंडेम किया। स्पोर्ट्स जगत से डेविड वार्नर प्लीड्स गिल्टी टू ड्रंक ड्राइविंग, फेसेस प्रॉस्पेक्ट ऑफ 9 month जेल टर्म। 50 ओवर एक्शन के लिए बेन स्टोक्स लौटे विद ग्रिटी सेंचुरी इन धर्म्स विन। ट्रिब्यूनल वर्डिक्ट के बाद ललित मोदी क्लियर्ड इन की 2009 आईपीएल साउथ अफ्रीका केस। स्पैनिश फुटबॉल चीफ का कहना है कि फीफा डिस्ट्रॉइंग फुटबॉल फॉर द वर्ल्ड कप, फीफा की लीडरशिप इज फ्लॉड फॉर इट्स डिसीजंस। बॉलीवुड खबरों से विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए वृंदावन पहुंचे। एक्टर राघव जुआल का कहना है कि आर्यन खान कैमरास के लिए स्माइल नहीं करते बिकॉज ही डजंट वॉन्ट टू फेक इट। प्राइम वीडियो की फूलन सेलेक्टेड फॉर स्पेशल प्रेजेंटेशन एट टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। Z5 ने ऐलान किया रंगबाज सीजन 4 विद मोहित रायना। एक्टर रायना ने कहा इट्स ग्रिटी, लेयर्ड एंड डीपली ह्यूमन स्टोरी। शाहरुख खान की फिल्म किंग ने शूटिंग का फाइनल फेज एंटर किया। लास्ट इंटरनेशनल स्केड्यूल प्लान फॉर ऑगस्ट। आमिर खान ऑप्ट्स आउट ऑफ अश्लील ग्रोवर बायोपिक ओवर क्रिएटिव डिफरेंसेस। ये थी साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस।
1: Hyundai का नेक्स्ट स्टार्ट नाउ सेल्स इवेंट चल रहा है डॉन वैली नॉर्थ Hyundai पर। अब सिक्योर करें साल के लोएस्ट रेट्स। हर कस्टमर क्वालिफाई करता है अप टू 1% रेट रिडक्शन के लिए या कैश परचेस पर $500 का बेनिफिट। ऑफर सिर्फ जुलाई 31st तक है। एट डॉन वैली नॉर्थ Hyundai, वी स्पीक योर लैंग्वेज। विजिट DonValleyNorthHyundai.com या Woodbine Avenue and Denison Street, Markham पर।
2: Don Valley North Hyundai,
1: a proud member of Wayne's Auto Group.
0: This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading. पिछले 15 सालों से सक्सेसफुली ऑनलाइन ट्रेडिंग से बहुत से परिवारों को साइड इनकम प्रोवाइड करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 से $6,000 US कमा सकते हैं। फ्लेक्सिबल स्केड्यूल है, श्योरिटी विद फुल कॉन्फिडेंस के साथ मिनिमम $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं। फ्री सेमिनार्स अटेंड करें हर सैटरडे आफ्टरनून। मेक श्योर प्लीज मेक योर अपॉइंटमेंट, वॉक इन ना करें। 12:30 PM to 3:30 PM होता है सेमिनार, एंड कॉल करके अपनी सीट रिजर्व करवा लें 905-206-1008 905-206-1008। Mittal CPA Professional Corporation for all your tax related matters 289-748-4040 289-748-4040।
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
5: Jab

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, और हम बात करते हैं आयशा मुनव्वर जी से, डेट सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट, इनसॉल्वेंसी काउंसलर। और आयशा जी का ओवर 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑप्शंस आपको देती हैं अलग अलग फॉर डेट सेटलमेंट और मैक्सिमम डेट रिलीफ के लिए। आपने कॉल करना है 416-428-2165, 416-428-2165। आयशा जी, वेलकम टू साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो।
1: बिल्कुल, आई हैव टू लेट यू नो व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल डेट सेटल करने के लिए। तो हमारी जो सर्विसेज हैं उनमें आ जाती हैं कंज्यूमर प्रपोजल्स, लमसम प्रपोजल्स, क्रेडिट काउंसलिंग सर्विसेज हैं। इसके अलावा हम बैंक्रप्सी में भी हेल्प आउट करते हैं, कलेक्शन कॉल्स रोक देते हैं, लीगल एक्शन रुक जाता है, इंटरेस्ट भी रुक जाता है, आपके एसेट्स जो है वो सेव रहते हैं। तो बेसिकली ये हमारी सर्विसेज हैं, और मोर देन 20 ईयर्स से मैं कम्युनिटी को हेल्प आउट प्रोवाइड कर रही हूँ, और उसमें यह है कि बेताशा क्लाइंट सब सक्सेसफुली डेट फ्री हो चुके हुए हैं। और अपॉइंटमेंट्स आर ऑलवेज फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल होती हैं, और वन ऑन वन अपॉइंटमेंट इसलिए जरूरी होती है कि हर पर्सन की सिचुएशन फर्क होती है, हर पर्सन की फाइल एक यूनिक फाइल होती है, तो उसको प्रॉपर तरीके से रिव्यू करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि बैंक्स किस तरह से जो है इसको मैक्सिमम सेटल करेंगे, और लीगैलिटी क्या है, प्रोसेस क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, सब कुछ आपको बताया जाता है। एंड देन एंड के ऊपर वी हैव टू लेट यू नो कि कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, क्रेडिट को आप किस तरह से दोबारा एस्टेब्लिश करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो basically this is you know what we do in first appointment to review your situation, to know your options, aur khali hum options discuss karke consultancy nahi provide karte, hum services provide karte hain. Basically we can file consumer proposals for you, bankruptcies for you, and also we provide credit counseling services. To kai tarah ke debts hote hain, unsecured, secured, to basically all kind of unsecured debts can be settled, aur business debts ho, personal ho, iske alawa CRA ke taxes hain, HST mein agar aap behind hain, aur kai लोग ऐसा करते हैं कि इधर उधर से गलत मशवरे लेके आ जाते हैं, तो आई विल सजेस्ट यू के यू नो ऑलवेज गेट योर एडवाइस फ्रॉम राइट प्रोफेशनल, ओनली पीपल हु आर फेडरली लाइसेंस्ड, दे कैन प्रोवाइड यू नो दीज सर्विसेज, जो कि ट्रस्टी ऑफिसेज होते हैं, और वी आर वन ऑफ देम। और उसमें ये कि हम डायरेक्टली वन ऑन वन बैंक्स के साथ डील कर रहे हैं, कोई तीसरी पार्टी बीच में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए आपके केसेस के खराब होने के चांसेस जो है वो क्लोज टू जीरो हो जाते हैं, एंड हमारा जो सक्सेस रेट है वो close to 99.9% आप समझ लें, it's really high, और you know we know the right options for you, so all you have to give me a call to review your debt problems and know your right options to settle your debts. So phone number is 416-428-2165, that is 416-428-2165. Thank you.
0: बहुत बहुत शुक्रिया आयशा जी। और दोस्तों, मैं एक बार फिर से बता दूं, डेट सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट इंसॉल्वेंसी काउंसलर आयशा मुनव्वर जी, एंड आपको देते हैं अलग अलग ऑप्शंस फॉर डेट सेटलमेंट। द नंबर टू कॉल आयशा मुनव्वर 416-428-2165, 416-428-2165, आयशा मुनव्वर

0: ਕਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੰਟਰੀ ਰੋਡ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਟੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਟੋਇੰਗ ਸਟਰੈਂਥ ਬਸ ਲੋਨ ਮੋਵਰ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਟੋਯੋਟਾ ਟੰਡਰਾ, ਵੱਡੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦਮਦਾਰ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਟੋਯੋਟਾ ਦਾ। ਲੀਜ਼ ਕਰੋ 2026 ਟੰਡਰਾ 4x4 ਕਰੂ ਮੈਕਸ SR $154 ਵੀਕਲੀ ਤੋਂ 36 ਮੰਥਸ ਲਈ 3.99% APR ਤੇ $5,800 ਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਿਟ shoptoyota.ca ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਟੋਯੋਟਾ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਾਓ।
1: کاویا ہومیو کیئر، کافی علاج جہاں بے اثر ہو جاتے ہیں وہاں سے شروع ہوتا ہے ہومیوپیتھی کا اثر، بچوں سے لے کر بزرگوں تک، نئے سے لے کر کئی پرانی بیماریوں تک جیسے الرجیز، ایزما، آرتھرائٹس، ہیئر لاس، اسکن ڈسارڈرز، ہیڈ ایکس، مائگرینز، میل یا فیمیل ہیلتھ ایشوز، ڈائجسٹو ڈسارڈرز یا پائلز، مینٹل ہیلتھ ایشوز، ہارٹ پرابلم، ڈائبٹیز اور فار اینی کائنڈ آف اکیوٹ اور کرونک ڈیزیز ہمارے ہومیوپیتھ سے ملے جن کو 20 سال کا زیادہ تجربہ ہے۔ کاویا ہومیو کیئر، جہاں سے شروع ہوتا ہے ہیلدی لائف کا سفر۔ 10 کوٹرل بولیوارڈ, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
2: Welcome back, friends. Ek baar phir se aapka swagat hai. Kavya Homeo Care, Gold Medalist Homeopath Amita Oza hamare saath hain. Baatcheet karte hain, dekhte hain aaj kis topic par karengi baat. Amita ji, aapka swagat hai.
3: Thank you so much, Sunny ji. Good afternoon, everyone. And sabko mera pyar bhara namaskar, sat sri akaal, aadab, kaise ho?
2: Ji, aapko bhi. Meeta ji, please go ahead.
3: हाँ जी, सो आज हम देखेंगे ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में। सो जैसे आर्थराइटिस होता है उसी तरह ऑस्टियो आर्थराइटिस एक कॉमन काइंड का आर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, के आपके जॉइंट में पेन, स्वेलिंग, रेडनेस हो जाते हैं। अब एजिंग के हिसाब से बॉडी में वियर एंड टियर के साथ जो चेंजेस आते हैं तो उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस या सिंपल तरह का आर्थराइटिस कहा जाता है। अब नॉर्मली क्या होगा कि अप टू द एज 40 बॉडी में रीजनरेटिव चेंजेस होते हैं, एंड आफ्टर 40 नियरली जब आप 50 के होने लगते हैं तो उसके साथ बॉडी में डीजनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें क्या होता है कि जॉइंट में जो साइनोवियल फ्लूइड, जिसको हम ऑयल या ग्रीस कहते हैं, तो वो कम होता जाता है। अंदर से कार्टिलेज जो है जॉइंट के अंदर वो ड्राई होने लगती है, वो ब्रेकडाउन उसका स्टार्ट हो जाता है। मसल्स हैं, टेंडन्स हैं आपके, ये सारे लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है कि सारी बॉडी में ये चेंजेस आएंगे। लेकिन जिस जॉइंट का यूज आप ज्यादा करते हो तो उसमें अर्ली आर्थराइटिक चेंजेस डेवलप होंगे, जैसे कि मोस्ट कॉमन है आपके नी जॉइंट में, क्योंकि आपका जॉब, आपका काम, पूरी लाइफ जिसके बल आप खड़े हो, चलते हो, तो वहां पे पहले चेंजेस आने हैं। सो नी में पेन स्टार्ट हो जाना, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रेडनेस आ जाती है। स्टार्टिंग में क्या होगा कि लॉन्ग स्टैंडिंग के साथ या आप क्लाइंब करते हो स्टेयर्स तो उस वक्त आपको ये पेन होता है, लेकिन उसके बाद लगातार ये पेन रहने लगता है। सिमिलरली कि आपका जॉब या वर्क इस तरह का है कि फिंगर्स या हाथों का काम ज्यादा है, तो आप देखोगे कि सुबह आप उठने के साथ ही फिंगर्स आपकी मुड़ नहीं रही है, अकड़न आ गई है, वहां पे स्वेलिंग हो गई है, या कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसमें रिस्ट में आपको पेन फील होता है और फिंगर्स तक ये पेन जाता है। सिमिलरली टेनिस एल्बो, जिसमें आपके एल्बो में ये पेन जाएगा, नेक को झुका झुका के आपको काम करना है, नेक को होल्ड करके काम करना है कि असेंबली लाइन पे है या फिर ड्राइविंग वगैरह, कंप्यूटर पे आवर्स तक आपको बैठना पड़ता है नेक को होल्ड करके, तो ऐसे में आपकी गर्दन में पेन स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। सो आपके सर्वाइकल स्पाइन में जो आर्थराइटिक चेंजेस आते हैं, नेक में टाइटनेस है, वो पेन आपके शोल्डर से लेके हाथों तक जाएगी। सो ये डिपेंड करेगा आपके काम के हिसाब से, आपके हॉर्मोन्स के हिसाब से। ये अर्ली आर्थराइटिक चेंजेस बॉडी में कई बार स्टार्ट हो जाते हैं कि कहीं पे चोट लगी है, गिर गए हैं, तो उस जॉइंट में आपको सबसे पहले आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। और ऐसे में यहाँ का वेदर आप देखें कि कितने मंथ्स हमें सनलाइट भी नहीं मिलती है, वाइटामिन डी डेफिशिएंसी ये इसमें ऐड ऑन करेगा, ठंडा वेदर है तो वो उसमें ऐड ऑन करता है, तो यहाँ पे काफी सारी चीजें जो है वो आर्थराइटिक प्रोसेस को ट्रिगर कर देगी। और कई बार मरीज भी इस तरह के पेशेंट्स आते हैं कि बैक होम जाते हैं या कोई ट्रॉपिकल कंट्री में जाते हैं, जैसे पेन उनकी गायब हो गई और कनाडा वापस आए, तो उसके साथ विद इन अ वीक 15 डेज उनकी सारी पेन्स जो है वो वापस आ जाती है। सो यहाँ पे होम्योपैथी में वी डू हैव वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर आर्थराइटिस। तो ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो वो जो प्रोसेस आगे बढ़ रही है उसको स्लो डाउन करने में हेल्प करेगी, कि अगर ऑयल कम है तो बॉडी नेचुरली ही उसको प्रोड्यूस करेगी, अगर कार्टिलेज में ब्रेक डाउन स्टार्ट हो गया है तो उसको स्लो डाउन करेगा, कई बार ऑस्टियोफाइट्स या हड्डी बढ़ना जिसको हम कहते हैं तो उसको ये कंट्रोल करता है। और इसके साथ है हमारे पास थेरेपी, मसाज थेरेपी। सो पेन्स हो रहे हैं बॉडी में, आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन, नेक पेन है आपको, या साइटिका की पेन जा रही है, ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, हेडेक या दरन की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वी डू हैव थेरेपी एज वेल। और साथ में ये जो कॉम्बिनेशन होता है इससे आपको काफी बेनिफिट मिल सकता है। सो फील फ्री टू कॉल अस कोई भी एक्यूट क्रोनिक डिजीज के लिए। काव्या होम्यो केयर से आप मेरा कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हैं। ऑल ओवर कैनेडा, यूएसए मेडिकेशन हम मेल करते हैं, एंड कुछ एक इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो होम्योपैथी का कवरेज भी प्रोवाइड करती हैं, तो उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। आजकल कोल्ड फ्लू जुकाम खांसी काफी चल रहा है, सो वन वीक टू वीक्स की मेडिसिन भी आप आके जरूर ले सकते हैं। लोकेशन है हमारी 10 कॉटरेल बुलेवार्ड यूनिट 104 इन ब्रैम्पटन। मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग में 10 AM से शाम को 6 बजे तक क्लिनिक खुला है, एंड फोन नंबर है मेरा 6477602779। थैंक यू सनी जी।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया। 6477602779 काव्या होम्यो केयर मीता जी का डायरेक्ट नंबर है। मीता जी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगले गीत की रिक्वेस्ट है AR रहमान की आवाज में, दिल से का टाइटल ट्रैक।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: जेनेसिस मार्कम पर लग्जरी मिलती है एक एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। लीज कीजिए ब्यूटिफुली डिजाइन्ड 2026 G70 सिर्फ 1.9% से अप टू 39 मंथ्स, या लीज कीजिए 2026 GV70 सिर्फ 2.9% से। बुक योर टेस्ट ड्राइव टुडे। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। जेनेसिस मार्कम, डूइंग लग्जरी योर वे। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।

0: एक और कहानी मेरी जुबानी। असली मित्र एक व्यक्ति था, उसके तीन दोस्त थे। एक ऐसा जिससे वह प्रतिदिन मिलता था, दूसरा ऐसा था जिसे वह प्यार करता था अवश्य पर मिलता था एक दो हफ्ते में, और तीसरा ऐसा था जिसे वह महीने के बाद कभी कभी मिलता था। एक बार इस व्यक्ति पर मुकदमा बन गया। वकील ने कहा, मुकदमा बहुत सख्त है, तो ऐसा गवाह तैयार करो जो कहे कि तुम्हें जानता है और तुम पर लगे आरोप को गलत समझता है। वह व्यक्ति अपने पहले मित्र के पास गया, बोला, एक मुकदमा बन गया है मेरे ऊपर, तुम चलकर मेरे पक्ष में गवाही दो। मित्र ने कहा, देखो भाई, तुम्हारी मेरी मित्रता अवश्य है, लेकिन गवाही देने के लिए मैं तुम्हारे साथ एक पग भी नहीं जा सकता। यह व्यक्ति बड़ा निराश हुआ, दुखी भी हुआ। तभी उसे दूसरे मित्र का विचार आया, उसके पास जाकर गवाही देने के लिए कहा। यह मित्र बोला, मैं तुम्हारे साथ कचहरी के द्वार तक तो चल सकता हूं, लेकिन गवाही नहीं दूंगा। यह फिर दुखी हो गया। फिर उसे अपने तीसरे मित्र का ख्याल आया, जिसे वह महीनों बाद थोड़ी देर के लिए मिला करता था। उसे अपनी बात कही। तीसरे मित्र ने जोश के साथ कहा, मैं चलूंगा तेरे साथ, तेरे पक्ष में गवाही दूंगा, और मेरा दावा है कि यह मुकदमा समाप्त हो जाएगा, तू बरी हो जाएगा। परंतु वह मित्र कौन है? वह है आत्मा। पहला मित्र है धन, संपत्ति, भवन, भूमि, जिन्हें मनुष्य अपना समझता है और जिनके लिए रात दिन हर समय चिंता करता है। दूसरा मित्र है संबंधी, रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, भाई, बहन, जिसके लिए मनुष्य प्रत्येक कष्ट उठाता है। तीसरा मित्र है प्रभु प्रेम और शुभ कर्म, जो प्रभु प्रेम के कारण किए जाते हैं। भीतरी बात, गहरी बात। दोस्त वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, दोस्त वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। दोस्त वो होते हैं जो आपको रोने ही नहीं देते। Stay blessed.
1: एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, एक घर सिर्फ सपनों से नहीं बनता, एक घर बनता है इरादों से, जी जान मेहनत से। अपने इरादों को एक नया मुकाम दें, अपनी मेहनत को अंजाम दें। कॉल करें रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली रियल्टी के राज जोशी को, जो काम करते हैं आपके लिए विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन। 6478661086 राज जोशी, नाम ही काफी है।
2: समर ड्राइव का एक्साइटमेंट बढ़ाएं विद टंड्रा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा। आपके नेक्स्ट एडवेंचर के लिए बिल्ट और फाइनेंसिंग सिर्फ 3.99% से। बिग सिलेक्शन, बिग समर मोमेंटम, टोयोटा करोला भी इन स्टॉक है आपकी रोजाना ड्राइव के लिए। बुक अ टेस्ट ड्राइव टुडे, वी पे टॉप डॉलर फॉर योर ट्रेन। इट्स टाइम टू टोयोटा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा.com। लोकेटेड है 3300 स्टील्स एवेन्यू, ईस्ट मार्कम पर। A proud member of Vane's Auto Group.
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, अलका जी हमारे साथ हैं एंड ओसैप की करेंगे बात। टुडे इज द फाइनल डे। अलका जी, आपका स्वागत है।
3: थैंक यू सो मच सनी फॉर हैविंग मी ऑन द शो, एंड आई कैन सी दैट यू हैव अ वेरी वेरी सोर थ्रोट, बट स्टिल यू आर ऑन द शो, वर्किंग, शो मस्ट गो ऑन।
1: एब्सोल्युटली,
3: हैट्स ऑफ टू यू।
1: थैंक यू अलका जी। चलिए, हैट्स ऑफ टू यू एज वेल, बिकॉज इट इज द लास्ट डे, एंड मैं चाहूंगा कि आप ये फाइनल अर्ज, ये गुहार लगाएं लोगों से, ताकि वो पे अटेंशन करें, व्हाट एग्जैक्टली इज ओसैप एंड इसका फायदा आज क्यों उठाना जरूरी है।
3: जी सनी, ओसैप इज बेसिकली ओंटारियो स्टूडेंट असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसमें ओंटारियो गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है पढ़ने में, आगे अपने करियर को एनहांस करने में, जॉब ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। उसमें ओंटारियो गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल एड देती है। फाइनेंशियल एड कम्स इन टू वेज, लोन एंड ग्रांट। ग्रांट जो सारी की सारी आप रखते हैं, लोन जो आपको कोर्स खत्म होने के 6 महीने बाद 9-9.5 साल की किश्तों में वापस करना होता है, राइट? अगेन, मिसकंसेप्शन है लोगों में कि लोन लेना है जरूरी नहीं होता है, आप खाली ग्रांट भी ले सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू, बट इट्स any help is a help. So this is a great opportunity. Abhi jaise aaj colleges mein hum keh rahe hain ki after 1st August naya academic year shuru hota hai. So us academic year mein grant portion will be for private colleges will be zero. Aur baaki jo colleges hain unme bhi grant portion will be way way less and the loan portion will be अराउंड 75-80%. तो अभी आपके पास ये थोड़े से दिन हैं, आप फायदा उठा लें. कोर्सेज बहुत कम अवेलेबल हैं. हम अभी 30th तक ये सब चलेगा, लेकिन हम क्यों अर्ज कर रहे हैं लोगों को कि जल्दी से जल्दी, जैसे आज का हमने डेडलाइन दिया था कि जल्दी से जल्दी अपनी फाइल लगा दें, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द डॉक्यूमेंट्स टू बी अप्रूव्ड.
1: जी जी बिल्कुल. सो हु इज एलिजिबल टू अप्लाई अलका जी?
3: जी बिल्कुल सनी, आपको या तो पीआर होना जरूरी है या कैनेडियन सिटीजन होना जरूरी है, और इधर यू शुड हैव अ स्टेटस ऑफ अ प्रोटेक्टेड पर्सन. तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. जस्ट गिव मी अ कॉल एट 416-505-2735. अगर आपको एस्टिमेट भी लेना है, अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हैं कि मुझे कितनी ग्रांट मिलेगी, कितना लोन मिलेगा, यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट, तो आप मुझे कॉल करें विद इन हाफ एन आवर टू एन आवर. मैं आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए एंड आई कैन गिव यू एन एस्टिमेट विद इन एन आवर.
1: जी, विदाउट यू चार्जिंग अ पेनी.
3: एग्जैक्टली, विदाउट चार्जिंग अ पेनी.
1: जी, हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस कैन समवन रिसीव दैट्स लिसनिंग टू यू राइट नाउ?
3: जी सनी, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. आपकी 2024 की फैमिली इनकम कितनी थी, आपके डिपेंडेंट बच्चे कितने हैं, आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं, उस कोर्स की फीस कितनी है, उस कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आपके लोन और ग्रांट के अमाउंट को इफेक्ट करती हैं. सो जस्ट गिव मी अ कॉल एंड आई कैन गिव यू एन एस्टिमेट, नो चार्जेस. आपकी फाइल भी अगर लगानी है, आपके सारे प्रोसेस में पूरी हेल्प करेंगे कि फाइल कैसे फिल करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स कब लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 416-505-2735 पर. अगेन आई जस्ट स्ट्रेस ऑन वन थिंग, दिस इज अ नो ऑब्लिगेशन कॉल. मैं आपको कुछ भी चार्ज नहीं कर रही हूँ, जस्ट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मुझे कभी भी कॉल करें.
1: एंड व्हाट काइंड ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल थ्रू योर पार्टनर कॉलेजेस अलका जी?
3: सनी, कोर्सेज बहुत कम रह गए हैं, 3 या 4 कोर्सेज रह गए हैं सिर्फ. अकाउंटिंग इज वन ऑफ देम. वी हैव इंटरनेशनल बिजनेस अवेलेबल राइट नाउ, मेडिकल एस्थेटिक्स एंड आई गेस PSW. बहुत कम कोर्सेज रह गए हैं. जस्ट गिव मी अ कॉल, आई कैन ऑलवेज कंफर्म विद द कॉलेज कौन कौन से कोर्सेज अभी भी अवेलेबल हैं.
1: एंड हु डू यू थिंक शुड रियली पे अटेंशन टू दिस सेगमेंट दैट ये जो इंटरव्यू है राइट नाउ?
3: Anyone and everyone. I always say, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती है, नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होती है. एक बार कॉल करें, एस्टिमेट लें. जो लोग अपने करियर को एनहेंस करना चाहते हैं, अभी किसी और जॉब में स्टक हैं, उनके पास अभी ये है कि मेरे को टाइम नहीं मिलता है या कुछ है, ये सारे कोर्सेज ऑनलाइन हैं. तो जो लेडीज घर पे हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, सभी के सभी कोर्सेज ऑनलाइन हैं हमारे पास. तो आप जरूर इसका फायदा उठाएं. आपको गवर्नमेंट फाइनेंशियली भी हेल्प कर रही है, तो देयर इज, इट्स अ विन विन सिचुएशन. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस. जस्ट गिव मी अ कॉल 416-505-2735.
1: मेनी पीपल फील एप्लीकेशन प्रोसेस कंफ्यूजिंग है, आप किस तरह से अलका जी मदद कर सकती हैं?
3: यस सनी, इट इज ट्रू. एप्लीकेशन प्रोसेस है तो बहुत कंफ्यूजिंग. जब मैंने भी फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फिल करी थी, इवन आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट दैट. बट ऑफ कोर्स नाउ आई हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम सो लॉन्ग, आई विल से आई एम अ प्रो इन दैट.
1: जी बिल्कुल.
3: ऑफ कोर्स आई कैन जस्ट लेट यू नो कि कैसे कैसे आपने एप्लीकेशन फिल करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे आपसे चाहिए. आई विल अपलोड दोज डॉक्यूमेंट्स फॉर यू. अगेन, आई एम नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग फॉर दिस.
1: जी अलका जी, फैमिली इनकम कई बार हाई हो सकती है, हमारी अपनी इनकम हाई हो सकती है, सो टू क्वालिफाई शुड दे स्टिल अप्लाई और नो?
3: जी सनी, बिल्कुल अप्लाई करें. जैसे मैंने बताया था कि देयर आर सो मेनी सर्कमस्टांसेस. मे बी यू हैव डिपेंडेंट चिल्ड्रन, मे बी आप ऐसा कोर्स ले रहे हैं जिसकी ड्यूरेशन ज्यादा है, फीस ज्यादा है. बट देन अगेन सनी, आई से कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, कुछ तो मिल रहा है.
1: बिल्कुल.
3: Any help, any financial help is a help.
1: बिल्कुल. And that too, that something you don't have to return.
3: जी बिल्कुल.
1: जी 416-505-2735. Final words जाने से पहले,
3: सनी, बस मैं यही कहना चाहूंगी लोगों को कि जरूर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं. अगर आप पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, डोंट डिले इट. इफ इट्स नॉट नाउ, नेक्स्ट मंथ अगर आप अप्लाई करने की सोचते हैं, 10 days का मैटर. अगर आप सोचते हैं कि कोई नहीं 10 दिन बाद देखते हैं, फाइल्स लगानी बहुत मुश्किल हो जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, देन यू विल गेट लोन ओनली, ग्रांट्स आपको नहीं मिल पाएंगी. मुझे कॉल करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, 416-505-2735.
1: अलका जी का नंबर है. अलका जी, बहुत बहुत शुक्रिया.
3: थैंक यू सो मच सनी, एंड डू टेक केयर.
1: थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया. 416-505-2735. 27, 35.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, trusted care, consistent service or complete automotive support from first drive to lifetime care. Vane's Auto Group is always there. Vane's Auto Group, Vane's Auto Group, Canada. Visit vanesautogroup.com.
2: Majja malu vadu abba wedding store.
3: North America da sab to vadda Majja malwa doaba wedding store.
4: Yahan se aapko dhaka, chunni, mehndi, jago milni aur barat se doli tak ka sara सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 एंड 10, ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-940।

0: जोशी।
1: डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर कॉन्फिडेंस के साथ इलेक्ट्रिक ड्राइव करें। चूज करें लेक्सस आरजी या ईएस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एंजॉय करें प्रीमियम ईवी एक्सपीरियंस मेड सिंपल। बाय ए फ्री लेवल 2 होम चार्जर, इंस्टॉलेशन कोऑर्डिनेशन और फर्स्ट ईयर ऑफ होम चार्जिंग रीइंबर्स्ड अप टू $1,000। प्लस रिसीव करें वन ऑन वन ईवी डिलीवरी सेशन एट योर होम और $500 क्रेडिट फॉर एनी प्रोटेक्शन पैकेज वैल्यूड एट $2,500। आज ही विजिट करें डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस .com। A proud member of Wint Auto Group.
2: की थानू किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन ले मॉर्टगेज दी लोड़ है, जिवें फर्स्ट और सेकंड मॉर्टगेज, परचेज और रीफाइनेंस या प्राइवेट फंड्स, हर जगह हाथ पैर मार के देख चुके हो।
3: तब फिक्र क्यों कर दे हो? नीलम सिद्धोव कुल है सॉल्यूशन फॉर एवरी सिचुएशन।
2: ये ऑफर कर देने बेस्ट रेट्स, इम्पेयर्ड क्रेडिट या बैंकरप्सी है, नो प्रॉब्लम।
3: इना कोल नहीं, ए बी एंड ट्रस्टेड प्राइवेट लेंडर्स।
2: यू शॉप अराउंड एंड कम बैक टू नीलम।
3: आज ही कॉल करो नीलम सिद्धोव नो
2: 6477398710। License number M200034504.
4: Hi, I'm Realtor Sikhi. Je tusi ghar bechan ja khareedan bare soch rahe ho, ta ek var mainu phone zarur karo. Main tuhanu professional advice deke tuhada ghar list karangi sirf $1,000 vich. Ji haan, bilkul theek sunya. Only $4,000. No hidden fees, no surprises. Call me at 647-408-7066. That is 647-408-7066. Just remember, you say sell and I say sold.
5: Welcome back, friends. Sukhi Kaur ji hamare saath hai with the latest update aur unki amazing listing. 647-408-7066 is the number. Sukhi ji, aapka swagat hai.
6: Thank you so much, Sunny ji. Sabse pehle to aapko and hamare sabhi listeners ko meri taraf se very happy Wednesday. I hope everybody's enjoying their day, their week, and whoever, jinke bhi bachchon ko summer holidays hain, I hope aap bhi enjoy kar rahe honge.
5: Bilkul ji, bilkul.
6: Yehi thoda sa time hota hai jo you can spend with the kids, otherwise they're busy with school, college, or whatnot.
5: Ji, absolutely.
6: हाँ जी सनी जी, कुछ लिस्टिंग सबसे पहले शेयर करना चाहूंगी जो कि एक्सक्लूसिव है. एक्सक्लूसिव मीनिंग आपको ये लिस्टिंग MLS पर नहीं मिलेगी. मार्केट में अवेलेबल होने से पहले अगर आप ये प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, बिडिंग वॉर से बचना चाहते हैं, मल्टीपल ऑफर से बचना चाहते हैं, एक्सेलेंट प्राइस लेना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर लीजिए. सबसे पहले तो हमारे पास इन ब्रैम्पटन गोर एंड मेफील्ड एरिया में डिटैच घर है जो कि ऑलमोस्ट 6,000 स्क्वायर फीट का है. 6,000 स्क्वायर फीट का घर इन ब्रैम्पटन, 5 बेडरूम एंड 5 बाथ आपको मिलेंगे. अंडर 5 years old ये घर है. 4 कार गराज है, ह्यूज बेसमेंट है जिसको आप पोटेंशियली 2

0: मेरे पास 3 एकड़ के लॉट पर इन ब्रैम्पटन गोर एंड क्वीन रोड का एरिया विच इज हाई डिमांडेड एरिया है, मिनट्स टू हाईवे 427, 3 एकड़ के लॉट पर ऑलरेडी 2 घर है जो जो बने हुए हैं. इट्स अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्पेशली अगर आप दो, इफ यू टू ब्रदर्स, योर फैमिली इज गेटिंग बिगर एंड यू डोंट वॉन्ट टू, अगर एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए, क्योंकि लाइक ए सर 3 एकड़ की लैंड है, उसमें 2 घर ऑलरेडी बने हुए हैं रेडी टू मूव इन. मार्केट में ये आपको घर नहीं मिलेगा, इट्स एक्सक्लूसिव. कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए प्लीज गिव मी अ कॉल एट 647-408-7066. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर लुकिंग टू बाय और सेल एनी प्रॉपर्टी, प्लीज गिव मी अ कॉल, क्योंकि एज आई ऑलवेज से हमारे पास सारी सर्विसेज अवेलेबल है. आपको प्री अप्रूव करवाने से लेकर चाबियां जब तक मिल नहीं जाती, यू विल गेट ईच एंड एवरी सर्विस फ्रॉम अस. मॉर्गेज, रियल एस्टेट एंड लॉयर्स, एवरीथिंग इज अंडर वन अम्ब्रेला, ताकि यू डोंट हैव टू रन अराउंड एंड लुक अराउंड. 647-408-7066. आपके पास अगर एज लो एज 5% की भी डाउन पेमेंट है, आई कैन हेल्प यू गेटिंग अ प्रॉपर्टी. $25,000 से $30,000 आपके पास है तो आप घर ले सकते हैं इन कैनेडा. अगेन 647-408-7066.
1: बिल्कुल जी, 647-408-7066 सुखी कौर जी का डायरेक्ट नंबर है. सुखी जी, बहुत बहुत शुक्रिया.
0: थैंक यू जी, हैव अ वंडरफुल डे.
1: यू टू. 647-408-7066. शॉर्ट ब्रेक, आते हैं बहुत ही जल्द वापस.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: हाइब्रिड के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन क्या एक गैस लेक्सस आपके लिए ज्यादा सेंस बनाता है? डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर NX350 और RX350 प्रीमियम पैकेजेस इमीडिएट डिलीवरी के लिए अवेलेबल हैं। और वेलकम बैक लॉयल्टी ऑफर के साथ आप सेव कर सकते हैं थाउजेंड्स। लीज स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $657 पर मंथ फॉर 24 मंथ्स विद एन अमेजिंग 0.4% लीज रेट यूजिंग योर रिफंडेबल डिपॉजिट्स। आज ही विजिट करें DonValleyNorthLexus.com, a proud member of Wings Auto Group.
2: क्या आपकी होम और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल ड्यू है? क्या आपको तलाश है गुड रेट्स की फॉर द राइट कवरेजेस? तो आज ही कॉल करें गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिसागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296। इट्स 289-891-0296। आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग टू कार्स एंड अ होम। Remember, you're in good hands with Allstate.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: कॉन्डो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर 5 साल किसको रुकना है? बन जाइए डेवलपर एंड बिल्डर और बनाइए पैसे डे 1 से। कॉन्टेक्ट कीजिए अतीक खान एंड बिकम अ ब्रांड टू ग्रो योर ओन वेल्थ। 416-666-2745।
3: हिंडे का नेक्स्ट स्टार्ट्स नाउ सेल्स इवेंट चल रहा है डॉन वैली नॉर्थ हिंडे पर। अब सिक्योर करें साल के लोएस्ट रेट्स। हर कस्टमर क्वालिफाई करता है अप टू 1% रेट रिडक्शन के लिए या कैश परचेस पर $500 का बेनिफिट। ऑफर सिर्फ जुलाई 31st तक है। एट डॉन वैली नॉर्थ हुंडई वी स्पीक योर लैंग्वेज। विजिट donvalleynorthhyundai.com या वुडवाइन एवेन्यू एंड डेनिसन स्ट्रीट मार्कम्पर।
4: डॉन वैली नॉर्थ हुंडई,
3: अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
5: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
6: जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। वाकई जिंदगी बहुत ही सुहाना सफर है और कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। एक सुझाव मैं आपको देता हूँ कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस के लिए, जैसे ऑटो, होम, लाइफ एंड कमर्शियल इंश्योरेंस, एक भरोसेमंद नाम पूजा गुप्ता जी को कॉल करें। 6476280040। 6476280040।

0: कम्युनिटी का जाना बचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040, दैट इज 416-451-0040, और विजिट skylakeimmigration.com।
1: साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो प्रेजेंट्स इमिग्रेशन अनलिमिटेड बाय मनन गुप्ता, पावर्ड बाय स्काईलेक इमिग्रेशन।
2: जी हाँ दोस्तों, मनन गुप्ता जी स्काईलेक इमिग्रेशन से हमारे साथ हैं। सवालों और जवाबों का सेगमेंट, आपके सवाल मनन जी के जवाब। 416-451-0040 स्काईलेक इमिग्रेशन। जी मनन जी, प्लीज गो अहेड।
3: थैंक यू वेरी मच सनी जी फॉर हैविंग मी, और प्रोग्राम सुन रहे सभी लिसनर्स और परिवार को बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। और आज के इस खास सेगमेंट इमिग्रेशन लिमिटेड में सबका करते हैं स्वागत, एंड थैंक्स टू ऑल दोज लिसनर्स जो प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस और कंसर्न्स और अपनी फीडबैक हमें टाइम टू टाइम भेजते रहते हैं। जहाँ तक इस सेगमेंट का सवाल है, इसमें आपने अगर पार्टिसिपेट करना है, यू कैन सेंड अस योर जेनरिक क्वेरीज, या अगर कोई केस स्पेसिफिक क्वेरीज हैं तो वी विल नीड टू फॉर्मलाइज यू नो कंसल्टेशन सेपरेटली। लेकिन अगर आपके कोई जनरल सवाल हैं तो वी कैन ऑलवेज आंसर। आपने क्वेश्चन हमें भेजने हैं immigrationsegment@gmail.com के ऊपर। तो आज के सेगमेंट में सनी जी 3-4 क्वेश्चन हमें आए हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कुलदीप गिल जी का क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि please provide some practical insights related to the scoring criteria of Ontario Immigration Nominee Program का जो recent workforce priority scheme आई है। देखिए ये बहुत अभी recent development हो रही है। मैं पहले तो ये clarify कर दूं कि अभी भी Ontario का PNP program में expression of interest का portal नहीं खुला है, लेकिन स्कोरिंग क्राइटेरिया जरूर सरकार ने इस हफ्ते की शुरुआत में यू नो रिलीज किए हैं, और उसमें तकरीबन 130 पॉइंट्स का स्कोरिंग ग्रिड है। अलग अलग कैटेगरीज हैं, किस नॉक टीयर कैटेगरी में आप काम करते हैं, क्या आपकी पिछले 5 सालों के दौरान नोटिस ऑफ असेसमेंट पर अर्निंग्स आपने डिक्लेयर की हैं, किस रीजनल एरिया में आप काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्दर्न ओंटारियो में हैं तो आपको मैक्सिमाइज 15 पॉइंट्स उस चीज़ के मिल सकते हैं। फिर इसी तरह से आपकी लैंग्वेज, आपकी एजुकेशन क्राइटेरिया, आपका स्टेटस इन कनाडा, और साथ ही साथ आवरली वेजेस। सो ये सारी जौन सी क्राइटेरिया है वो कुल मिलाकर 130 पॉइंट्स होंगे, और डेफिनेटली ये कंपेटिटिव है, मेरिट पे सिस्टम होगा और एम्प्लॉयर ड्रिवन है। सो आने वाले दिनों में जैसे जैसे सरकार इसका यू नो खुलासा करेगी, स्टेप बाय स्टेप इसको रिलीज करेगी इन्फॉर्मेशन, वी विल बी द फर्स्ट वन टू शेयर विद ऑल आवर वैल्यूड लिसनर्स। दूसरी जो हमें क्वेरी आई है वो आई है साहिल सूद जी की। वो पूछ रहे हैं कि आई एम करंटली ऑन अ वर्क परमिट इन कैनेडा, इज इट पॉसिबल टू गेन फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस इफ आई एम एबल टू रिमोटली वर्क फॉर अ कंपनी बेस्ड इन इंडिया। देखिए साहिल जी, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट यू नो स्टेप हो सकता है। डेफिनेटली आप काम अगर करते हैं, काम करना अलग चीज है, उस काम के अगेंस्ट स्कोर आप क्लेम करेंगे CRS पोर्टल में कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, तो प्लीज मेक श्योर कर लें कि आपके पास प्रॉपर आर्म्स लेंथ उस कंपनी के साथ रिलेशनशिप है, आप क्या वहां पर प्रॉपरली जेन्युइनली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपके पास टैक्स रिकॉर्ड्स हैं, आपको कौन सुपरवाइज कर रहा है, किस तरह की जॉब प्रोफाइल है। नो डाउट बहुत सारे लोग इस तरह का फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस क्लेम करते हैं जेन्युइनली काम करके, लेकिन यू हैव टू बी वेरी वेरी मेटिकुलस इन बैकअप ऑफ योर डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि किसी भी तरह की अगर आप मिसरिप्रेजेंटेशन करते हैं, या अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस ऐड करके 40 से 50 पॉइंट अपने CRS स्कोर को बूस्ट कर लूंगा, तो वो फिर अपने आप से एक गलतफहमी होगी, क्योंकि IRCC इज बिकमिंग वेरी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन सच क्लेम्स। अगला हमें सवाल आया है सनी जी ज्ञान पटेल जी का। वो कह रहे हैं कि माय TRV यानी कि टेम्पररी रेजिडेंट वीजा विद इन कैनेडा वाज अप्रूव्ड रिसेंटली, लेकिन द पासपोर्ट वाज सेंट आउट फॉर स्टैंपिंग नियरली 4 वीक्स अगो टू ऑटवा, बट इट हैज नॉट येट कम बैक, व्हाट कैन आई डू। देखिए पटेल साहब, आपने TRV आपका अप्रूव हो गया, विच इज गुड थिंग। नॉर्मली 4 से 6 हफ्ते तो देखिए लगते ही हैं अगर आप अपने पासपोर्ट को भेजते हैं थ्रू कोरियर या थ्रू कैनेडा रजिस्टर्ड पोस्ट, तो 4 हफ्ते हुए हैं, तो आई डोंट थिंक देर इज एनीथिंग टू पैनिक राइट नाउ। लेकिन इस चीज का जरूर ख्याल रखें कि इंश्योर कर लीजिएगा कि आपने प्रॉपरली रिटर्न इनवेलप भी अपने पासपोर्ट के साथ भेजे हैं, क्योंकि कई बार ऐसी गलती रह जाती है कि आप पासपोर्ट भेज तो देते हैं लेकिन रिटर्न इनवेलप आप बीच में इंक्लूड नहीं करते। सो मैं समझता हूँ कि अगर आपने भेजा है तो अगले 1-2 हफ्ते वेट कर लीजिए, उसके बाद डेफिनेटली आपका पासपोर्ट जौन सा है वो आपको सिक्योरली स्टैंपिंग के बाद आपके दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाएगा. यू कैन ऑलवेज ट्रैक योर प्रीपेड एनवेलप थ्रू कैनेडा पोस्ट के पोर्टल के जरिए. जी
2: जी. बाकी कोई भी सवाल हो दोस्तों सेगमेंट के बाद आप मनन जी से संपर्क कर सकते हैं 416-451-0040 पर. मनन जी बहुत बहुत शुक्रिया.
3: थैंक यू वेरी मच जी. और immigrationsegment@gmail.com के ऊपर हमारे लिसनर्स कभी भी अपने कंसर्न्स, क्वेश्चंस और फीडबैक हमें भेज सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. टेक केयर, ऑल द बेस्ट.
2: थैंक यू जी. टेक केयर. 416-451-0040 अभिजीत अलका याग्निक की आवाज में खिलाड़ी का ये गीत आपकी रिक्वेस्ट प्ले करने वाले हैं. उसके बाद सुल्तान जी भी होंगे हमारे साथ फ्रॉम ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: कदे क्लाइंट दे ऑफ ग्रिड कैबिन दे लई तुसी लंबर पहुंचाई सी अते अज उही दमदार टर्बोचार्ज्ड इंजन कर दी सब तो प्यारी डिलीवरी ले आ रहा है एक नवा डॉल हाउस टोयोटा टकोमा। हर खास डिलीवरी लई परोसे योग पावर, ए टाइम है टोयोटा दा। लीज करो 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 $120 वीकली तो 36 मंथ्स लई 4.79% APR ते $4900 डाउन दे नाल। हाइब्रिड उपलब्ध है, विजिट shoptoyota.ca जा अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर खोल जाओ।
2: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से।
3: अच्छी याद है, याद है। अच्छा उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से।
2: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो।
4: choleBhature.ca बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे। choleBhature.ca कॉल 9054582448।
5: सर्विंग फ्रॉम 4 डाइन इन लोकेशंस, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन मिसागा एंड 1 बाय वॉन मिल्स।
6: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 6477602779, 6477602779.
7: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
8: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: Genesis Markham par luxury milti hai ek expectation se bhi zyada. Lease kijiye beautifully designed 2026 G70. Sirf 1.9% se up to 39 months. Ya lease kijiye 2026 GV70. Sirf 2.9% se. Book your test drive today. Visit genesismarkham.ca. Located at Woodbine Avenue and John Street, Markham. Genesis Markham. Doing luxury your way. A proud member of Vane's Auto Group.
3: यार दोस्त बिछड़ गए सारे, वो जो कभी शान हुआ करते थे, शान क्या साली जान हुआ करते थे, जिनके साथ होने से महफिल आबाद रहती थी, जिनके साथ अच्छी खासी जिंदगी भी मजे से बर्बाद होती थी, वो दोस्त जो परवाह नहीं करते थे, वो दोस्त जो हमेशा साथ देते थे। अब न जाने कहां बिछड़ गए हैं, मोबाइल के कॉन्टेक्ट लिस्ट में हैं तो सही पर बात नहीं कर।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: समर ड्राइव का एक्साइटमेंट बढ़ाएं विद टंड्रा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा। आपके नेक्स्ट एडवेंचर के लिए बिल्ट और फाइनेंसिंग सिर्फ 3.99% से। बिग सिलेक्शन, बिग समर मोमेंटम, टोयोटा करोला भी इन स्टॉक है आपकी रोजाना ड्राइव के लिए। बुक अ टेस्ट ड्राइव टुडे, वी पे टॉप डॉलर फॉर योर ट्रेन। इट्स टाइम टू टोयोटा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा.com। लोकेटेड है 3300 स्टील्स एवेन्यू, ईस्ट मार्केम पर। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
2: हाय अंजू, कैसी हो? हाउस योर सन डूइंग?
3: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
2: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
4: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 9054573232, क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कैंडा।
5: अक्सर घर खरीदे में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है, ऐसा क्यों? नया इलाका और नया घर, अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं। घर नया ले या पुराना, बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान। फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस, पॉल सहगल 416-940-0624, 416-940-0624 और विजिट पॉलसिक्योरिटी.com। प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन।

0: अपनी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। Brampton Crematorium and Visitation Center and Ajax Crematorium and Visitation Center में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 Brampton Court in Brampton, 905-458-2222 और log on to bcvc.info or 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 or acvc.info.
3: रियल एस्टेट इज नॉट इजी बिजनेस, और जो इजी नहीं उसे इजी बनाते हैं रियल्टर राज जोशी फ्रॉम रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली। घर खरीदना या फिर घर बेचना, फर्स्ट टाइम होम बायर्स या फिर इन्वेस्टर्स, सबकी पसंद का रखते हैं ख्याल। ये है राज जोशी, रियल्टर बेमिसाल। कॉल राज जोशी फ्रॉम रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली रियल्टी 647-866-1086, 647-866-1086। राज जोशी, सिर्फ नाम ही काफी है।
4: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट। फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर। विजिट veinsautogroup.com।
5: Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice.
6: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। और हम पहुंच चुके हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट ऑफ द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिंकूसी इन ब्रैम्पटन। 905-450-2828 इज द नंबर। टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री के सुल्तान, सुल्तान जी हमारे साथ हैं। स्टोर इज ओपन 7 days a week, 11 AM to 7 PM। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की ओर रुख करते हैं, एंड दैट इज द टीवी सेक्शन। वो इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट आई फील इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुल्तान जी आपका स्वागत है।
7: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई। और इम्पोर्टेंट मैसेज आपने इसलिए कहा है या सेक्शन की बात की है क्योंकि टीवीज में बहुत सारे टीवीज ऐसे हैं जो कि इस वक्त डिमांड में हैं, खासतौर पे बिग स्क्रीन टीवी की अगर बात करें या लेटेस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी की बात करें। मिनी एलईडी के साथ अगर लेटेस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी आपको मिले और वो भी डिस्काउंटेड प्राइसेस पे, तो फिर डेफिनेटली दिल करता है कि अपने टीवी को बिग स्क्रीन टीवी के साथ अपग्रेड किया जाए, और वो भी $2300 वाला 85 इंच मिनी एलईडी आपको मिले ओनली 1599 में। तो 1599 भी कस्टमर 6 मंथ में पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है, $700 की सेविंग भी हो गई और 6 मंथ इजी पेमेंट प्लान भी मिल गया। इसी तरह 75 इंच $1200-1300 वाला सिर्फ 899 में मिलेगा, इसमें $400-500 की सेविंग भी हो गई और 899 6 मंथ में पे करेंगे जी। 65 इंच 699 में मिलेगा और 55 इंच ओनली 399 में ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस बोवेड एंड चिंकूजी वाली लोकेशन पे। फिर जब बिग स्क्रीन की बात करते हैं तो 98 इंच, ये भी सैमसंग का 98 इंच है जो कि $3500 वाला 1999 में मिलेगा, इसमें $1500 कस्टमर सेव भी करेंगे और 1999 6 मंथ में पे करेंगे जी। फ्री होम डिलीवरी है, इसके लिए आपको विजिट करना है brampton appliances.com या हमारी वेबसाइट पे या फिर 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828 905-450-2828
6: जी 905-450-2828 ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस पर टीवीज पर अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग डील्स चल रही हैं फायदा उठाइए पहुंच जाइए जल्द से जल्द सुल्तान जी साथ ही साथ टीवीज के साथ साथ हम अप्लायंस लॉन्ड्री सेक्शंस की भी बात करना चाहेंगे जहां पर आपने अमेजिंग डील्स लगाई हैं कुछ रेंटल प्रॉपर्टीज के लिए कई बार पीपल आर लुकिंग आउट फॉर सम बेस्ट डील्स और कई बार ऐसा होता है हम अपने घर के लिए सबसे बेस्ट टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री में चीजें चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि ओवरऑल आप इस पे रोशनी डालें
7: बिल्कुल जी अगर तो बंडल पैकेज लेने हैं किसी के घर की क्लोजिंग आ रही है तो उन्हें तो ऑलमोस्ट $2,000 की सेविंग किचन अप्लायंसेस में होगी क्योंकि $5,000 वाला 36 इंच वाइड फ्रेंच डोर फ्रिज है स्मूथ टॉप इलेक्ट्रिक स्टोव है टॉल टॉप की डिशवाशर है 3 पीस का बंडल पैकेज स्टेनलेस स्टील $29.99 में मिलेगा $2,000 कस्टमर सेव भी करेंगे और $29.99 सिक्स मंथ में पे करेंगे जी कोई इंटरेस्ट नहीं है बंडल पैकेज लेना है जी जिसमें आपको बिल्ट इन कुकटॉप बिल्ट इन वॉल ओवन बिल्ट इन माइक्रोवेव बिल्ट इन डिशवाशर और बिल्ट इन काउंटर डेप्थ फ्रिज चाहिए तो पूरे का पूरा बिल्ट इन किचन $12,000 वाला $6,900 में लेके आप ऑलमोस्ट मोर देन $5,000 की सेविंग करेंगे बिल्ट इन किचन में इसी तरह हमारे पास लॉन्ड्री में जी जहां टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर $1,600-1,700 वाला $1,099 में पेयर मिलेगा आपको वॉशर ड्रायर दोनों $1,099 में वहां फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर वॉशर भी स्टीम और ड्रायर भी स्टीम फीचर के साथ प्लैटिनम सीरीज प्लैटिनम कलर में $2,500 वाला $1,799 में लेके आप $800 फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर पे सेव करेंगे और $1,799 भी सिक्स मंथ में पे करना है कोई इंटरेस्ट नहीं है जी इसके लिए विजिट करें जी 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है ब्रैम्पटन अप्लायंसेस डॉट कॉम हमारी वेबसाइट है जी 905-450-2828 हमारा नंबर है सिंगल पीस फ्रिज लेना है 30 इंच अपराइट फ्रीजर के साथ फ्रिज $1,400 वाला $799 में मिल जाएगा सिंगल पीस वॉशर चाहिए आपको $1,000 वाली $599 में मिल जाएगी सिंगल पीस ड्रायर चाहिए आपको $900 वाला $499 में मिल जाएगा फ्री होम डिलीवरी सिक्स मंथ नो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान है जी पहुंचना है आपको 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड ब्रैम्पटन अप्लायंसेस डॉट कॉम हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें वहां आपको वेयरहाउस क्लियरेंस सेल का आइकॉन मिलेगा जब आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ एक आइटम 40% और कुछ एक 50% डिस्काउंट पे मिलेंगी फॉर एग्जांपल डिशवॉशर चाहिए स्टेनलेस स्टील का $1,000 वाला डिशवॉशर वहां आपको 50% डिस्काउंट पे $499 में मिलेगा ब्रैम्पटन अप्लायंसेस डॉट कॉम 905-450-2828
6: 905-450-2828 सुल्तान जी बहुत बहुत शुक्रिया
7: थैंक यू वेरी मच जी बहुत शुक्रिया
6: जी 905-450-2828

0: बनाइए effortless with the Lexus TX350 at Don Valley North Lexus. Spacious, refined और hard drive के लिए ready. Quick refueling के साथ बिना charging delays के. Welcome back offer और 10 MSDs का advantage लीजिए और lease कीजिए TX350 luxury package for $799 plus taxes per month with a 1.4% lease rate. Only at Don Valley North Lexus. Luxury का experience लीजिए बिना wait के. A proud member of Wayne's Auto Group.
1: This segment is brought to you by Clear Optical by Varun Karna, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, Brampton and Georgetown. Exams के लिए doctors available 7 days a week, 905-457-3232. For name brand sunglasses, always remember Clear Optical by Varun Karna. The segment is also brought to you by Home Life Miracle के superstar realtors, Sarabjit Gill, CP Chatwal for real estate buying, selling investments. एक बार इनसे जरूर संपर्क करें, some amazing properties that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA, Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 या 416-627-4737. And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, जो कि 30+ locations से serve करते हैं 100% pure vegetarian food, जबरदस्त मिठाइयों का दूसरा नाम Rajdhani Sweets and Restaurant.
2: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए. टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार, ये टाइम है टोयोटा का. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स SR फ्रॉम $154 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 3.99% APR विद $5,800 डाउन. हाइब्रिड अवेलेबल. विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
3: वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छा भी, मांग मत मांग मत मांग मत. अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ. तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी. कर शपथ कर शपथ कर शपथ. अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ. ये महान दृश्य है, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है. अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ. अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ.

0: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940.
1: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है. एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा. रिलायबल पावर हर इंपॉर्टेंट डिलीवरी के लिए. ये टाइम है टोयोटा का. लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $120 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.79% APR विद $4,900 डाउन. हाइब्रिड अवेलेबल. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
2: Hi Anju, कैसी हो? How's your son doing?
3: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है. आंखें तो खराब होंगी ही. होमवर्क के टाइम बैटरी गुल.
2: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल.
4: शी इज राइट, चाहे बच्चे हों या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे. ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज. विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन 9054573232. Clear Optical by Varun Kanda.
5: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ. ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਇਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਾਂਗੇ. ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ. ਸ਼ਾਇਦ
6: ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ. ਸਿਰਫ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ESA ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ. ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ higherlicense.ca ਤੇ ਜਾਓ. ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ.
0: जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लेते हैं आपसे इजाजत. अब मुलाकात आपसे होगी कल 12 बजे ऑन CMR 101.3 FM. शो के बाद बातचीत करनी है. नंबर एक ही है 6478631940. टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस लेडीज एंड जेंटलमैन.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm. The Lovey-Dovey Show, driving you home. A melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
2: क्या आप सुन रहे हैं?
3: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
2: रेडियो टोरंटो कनाडा, वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। मैं हूँ शिवानी, आपके साथ, मेरे साथ हैं आमिर, और हम दोनों के साथ आप हैं लवली लिसनर्स जो जुड़े हुए हैं रेडियो टोरंटो कनाडा के इस आफ्टरनून ड्राइव टाइम शो में, जो लेकर आते हैं हम आपके लिए मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम अ ब्रैम्पटन ऑफिस 416-303-3639। और आमिर कहते हैं मंजिलें बहुत हैं, अफसाने बहुत हैं, जिंदगी में इम्तिहान भी आने बहुत हैं, जो मिला नहीं उसका गिला क्या करें दुनिया में, खुश रहने के तो बहाने बहुत हैं,
3: बहुत है ना।
2: तो खुश रहिए और चलिए एक साथ खुशी खुशी ये घंटे भर का शो आपके साथ लेकर आते हैं, बहुत सारे गानों के साथ, बॉलीवुड की गपशप के साथ, शेरो शायरी के साथ, हेल्थ एंड ब्यूटी अपडेट्स के साथ, तमाम हमारे स्पॉन्सर्स के मैसेजेस के साथ और आमिर की ग्रीटिंग्स के साथ।
3: आप सुन रहे हैं अपना मन पसंद रेडियो टोरंटो कनाडा। हवा के दोष पर आप तक पहुंचती हुई ये आवाज आमिर तुफैल की है। कबूल कीजिए मेरा अकीदत भरा अस्सलाम वालेकुम, स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी नमस्कार, और दिल की अथाह गहराइयों से निकलती हुई सत श्री अकाल। मैं रेडियो टोरंटो कनाडा के स्टूडियो 2 से आपका स्वागत करता हूं, आपका खैर मकदम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइज एंड डॉल्स, दिस इज लवी डवी शो एंड टुगेदर we will kiss the airwaves of Toronto this fine afternoon.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। It's 416-303-3639।
4: अगर आप लंबे वक्त से किसी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं और एक नेचुरल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन की तलाश में हैं, तो आइए सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर पर। यहाँ खानदानी परंपरा के अनुसार नब्ज देखकर कई तरह की बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से किया जाता है। इलाज से बहुत सारे लोगों को राहत और फायदा मिला है, चाहे एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, सोराइसिस या फिर किसी अन्य हेल्थ इश्यू की बात हो, बीमारियों का जड़ से इलाज करने में मदद मिलती है। आज ही

0: वैद्य जी, सबसे पहले आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये है कि आजकल मौसम में रोजाना बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, कभी तेज गर्मी, कभी बारिश, कभी ठंडी हवाएं। ऐसे बदलते मौसम में अपने हेल्थ का ध्यान रखने के लिए आप हमारे लिसनर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि आजकल वेदर का बारे में बहुत जरूरी है लोगों को भी समझ में आना है क्या करना क्या मत करना। तो अभी तो वेदर तो थोड़ा सा खराब जैसे चल रहे ना, सभी लोग थोड़ा सा संभाल के रहना पड़ेगा। काम को भी जाना है, बिजनेस को भी जाना है, घर पे रहेगा तो फिर वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, मोर्टगेजेस होता है, बिजनेस करना है, जॉब करना है, तो लेकिन थोड़ा सा संभाल के रहेगा तो भी ठीक है। थोड़ा सा पानी भी थोड़ा सा ज़्यादा पीना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी टाइम पे ज़्यादा पानी पिएगा तो बॉडी भी डिहाइड्रेशन नहीं होता। एटलीस्ट 2-3 लीटर वाटर एवरीडे पीने के लिए कोशिश करना है, वो भी ज्यादा गर्म पानी नहीं पीना है, ज्यादा ठंडी पानी भी नहीं पीना है, थोड़ा नॉर्मल पानी पिएगा तो चलेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। और अब लिसनर्स को ये भी बताएं कि आयुर्वेदा जो है वो वास्तव में कैसे काम करता है, सिर्फ कोई बीमारी का इलाज करता है या फिर शरीर को अंदर से बैलेंस्ड और हेल्दी बनाने पर भी काम करता है?
1: मैं आपको दोबारा से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपने लिजनर्स के लिए बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आयुर्वेदा आजकल का बात नहीं है, ये तो 5000 सालों से ये दुनिया में चल रहे, ये संस्कृति को इंडिया ने लेके आया था ये दुनिया के लिए। तो आयुर्वेदा कैसे काम करता है मीन्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, कोई पेड़ होता है तो पेड़ को ऊपर से हम कट करेगा तो क्या होता है, वो पेड़ फिर भी ग्रोथ हो जाता है। अगर वो पेड़ को नीचे रूट से निकाल दिएगा तो वो प्रॉब्लम जड़ से निकल जाता है, परमानेंट के लिए डिसअपियर होता है। ऐसा आयुर्वेदिक दवाई भी लोगों को शरीर में जाके वो लोगों का ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, पहली बात। दूसरा बात, वो लोगों का पेट में कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहेगा तो उसको निकाल देता है, वो लोगों का यूरिनरी में इन्फेक्शन कुछ रहेगा तो उसको भी ठीक करता है। तो इसीलिए लोगों का बॉडी में आयुर्वेदिक दवाई क्या करता है, लोगों का शरीर में जाके वो लोगों का बॉडी में हार्मोन्स को, सभी लोगों का बॉडी में हार्मोन्स होता है, शायद आप लोगों को भी पता है, लिसनर्स को भी पता है, पित्त वात कफ बोलता है, ये तो हार्मोन्स बोलता है, आयुर्वेदिक भाषा में दोषा बोलता है, ये दोषा को ठीक करता है। तो हार्मोन्स ठीक हो जाएगा तो जो भी प्रॉब्लम रहेगा तो वो प्रॉब्लम जट से निकल जाता है। इसीलिए हम हमारा पेशेंट्स को हमेशा नब्ज देखकर उसका हिसाब से हम दवाई देता है, वो दवाई लोगों को बराबर काम करता है और जो भी प्रॉब्लम परमानेंट के लिए डिसअपीयर हो जाता है।
0: इंटरेस्टिंग। वैद्य जी, अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आयुर्वेदा और हर्बल दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो करने से कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होते। ये पूछूंगी आपसे कि क्या ये दवाइयां हम सेफली लंबे वक्त तक ले सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे?
1: आयुर्वेदिक दवाई लेने से कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई नेचुरली बनाता है। लाइक हम सबको भी पता है, त्रिपला, अश्वगंधा, शतावरी, ब्रह्मी, ऐसा एप से बनाता है ना, इसीलिए नेचुरल है, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, 100% है, सभी लोग भी खा सकते हैं। हमारे पास आस्थमा के लिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए, जॉइंट पेन के लिए, आर्थराइटिस के लिए, नी पेन के लिए, लेडीज पर्सनल प्रॉब्लम के लिए, जेंट्स पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, किडनी स्टोन्स के लिए, हेयर लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए और सारी बीमारी के लिए हमारे पास अच्छा दवाई मिल जाता है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज ज्वाइन करने के लिए। आपका नंबर फिर से बता दूं दोस्तों, डायरेक्ट नंबर नोट करें, केरला वैद्य रत्न पीवी राज जी का नंबर है 6473278111, 6473278111।
2: टॉयलेट जरूर वरतांगे, इसलिए हुणे कॉल करो, असी वादा करदे हां कि तुहाडे घर नूं अग नहीं लगेगी। शायद
3: अपने परिवार दी रक्षा करो, सिर्फ लाइसेंस्ड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ही वरतो अते यकीनी बनाओ कि ओ ईएसए परमिट हासिल करन। होर जानन लई hirelicense.ca ते जाओ। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वल्लों एक सुनेहा।
4: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए। टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार, ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स SR फ्रॉम $154 वीकली फॉर 36 months एट 3.99% APR विद $5,800 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
5: The Lovey Dovey Show, driving you home.

0: Melody Above and Beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
1: रेडियो टोरंटो कनाडा, आप हैं शिवानी और आमिर के साथ. वक्त हो चला है 2:12 और आमिर, हमारे बहुत सारे जो लिसनर्स हैं अभी सुन रहे हैं, दो तीन के कॉल आए हैं. उन्होंने कहा है कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, उनको विश किया जाए. नाम नहीं बताया, तो जब नाम बताएंगे तो हम नाम भी अनाउंस कर देंगे. उनको विश करेंगे वेरी हैप्पी एनिवर्सरी. जिनका आज बर्थडे है उनको वेरी हैप्पी बर्थडे कहेंगे. और हमारे साथ एक स्पेशल मेहमान जुड़ रही हैं, वो कुछ डिस्कस करना चाहती हैं हमारे साथ. अचानक मेरे पास कॉल आया तो आमिर उनका वेलकम करेंगे. वो ये क्लेम कर रही हैं कि वो आपको जानती हैं. जी, अपना नाम बताइए और आपको ऑन एयर वेलकम करेंगे.
2: मैं नाम नहीं बताऊंगी पर कुछ बोलना जरूर चाहती हूँ कि शाम के ढलते सायों में सांसों में घुलती हुई खुशबू और दिलों को गरमाती किसी की याद में लिपटी एक ताजा सोच दिन भर की थकावटों के बाद मुसाफते समेटती और घर की राह दिखाती है घड़ियां. हम सब की जिंदगी का एक दिलरुबा सरमाया है. ये शाम यूं ही हसीन रहे और टोरंटो की मसरूफ सड़कें यूं ही पुर रौनक रहे. लेक उंटारियो से निकलने वाली खुशबूदार और पूर्णम हवाएं हमें यूं ही मुअत्तर रखें. इन्हीं दुआओं के साथ आज राधिका आपका वेलकम करती हैं. हाय आमिर, कैसे हैं आप?
3: अरे राधिका, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं?
2: आमिर, मैं बिल्कुल मैं आपके लिसनर्स को आज एक बताना चाहती हूँ कि मुझे इन लाइनों का यू नो इम्पॉर्टेंस और ये लाइनें मेरी आइडेंटिटी बनी. ये सब आपका देना था, ये आपकी सारी मेहनत थी मुझे मेरे पीछे. और मैं ये क्यों बता रही हूँ कि ऐसा मेंटर मिलना, लिसनर्स अगर आपको आमिर कहीं भी मिलें, ये एक मेंटर नहीं है, ये एक इंस्पिरेशन है, ये एक ऐसी
1: कैपेसिटी में मिले
2: है, ये एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो आपको कभी छोड़ेगा नहीं और आपको एक मुकाम पे लेके जाएगा जहां दुनिया आपको याद रखेगी. और इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आमिर.
3: अरे राधिका, यू आर सो सच अ wonderful women. Aap bahut achhi, one of the best women I have ever come across in my lifetime. Aapki awaaz, aapka andaaz, aapki baat, aapki apnaiyat, khulus, sab bemisal hai aur lajawab hai aur ba kamal hai. Aap hamesha hamesha salamat rahe. Meri bahut si duaein aur nek tamannaein aapke saath hain. Mujhe malum nahi tha ki aaj aapse yun on air baat hogi. It's such a big surprise for me. Bahut
2: you deserve all the happiness in your life. Sorry, मैंने आपको कट किया, पर मैं आपको ये जरूर बताना चाहती हूँ, आपके ऑडियंस आपके लिए जितना भी बेस्ट विशेस भेज रहे हैं आपके लिए उतना कम है. तो मैं सिर्फ ये बताऊंगी, आप जैसी विजडम और जो काइंडनेस कहते हैं ना लोगों में आजकल खत्म हो चुकी है, और कनाडा में ऐसा विजडम और काइंडनेस मिलना इज इम्पॉसिबल. आई एम लकी. शिवानी जी, आप क्या कहती हैं?
1: बिल्कुल राधिका, आई अग्री विद यू, कुडंट अग्री मोर. और मुझे याद है जब आप और आमिर शो किया करते थे पर, और आप कभी आमिर नहीं आप आते थे कभी किसी मसरूफियत की वजह से, और आप शो हैंडल करती थी तो आपके हाथ में बहुत सारे पुलिंदे होते थे पेपर्स के. कुछ नीचे गिर जाते थे, कुछ ऊपर गिर जाते थे, कुछ थोड़े मोड़े से होते थे. आप कहती थी ये सभी मुझे करने हैं क्योंकि आमिर लगातार फोन पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं मुझे. तो
2: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. उस किताब के तो सारे बड़े दीवाने भी थे, वो पूछते थे लिखती क्या आप इसके अंदर. मैंने बोला पूछे मत.
1: आपको ऐसे छुपाती थी जैसे कि छोटा बच्चा टिफिन छुपाता है ना स्कूल में.
2: बिल्कुल बिल्कुल सही. पर शिवानी जी, आप भी इस चीज से बिल्कुल कहते हैं ना, आपको आप अग्री करेंगी कि आमिर जैसा इंसान वन इन अ लाइफ टाइम मिलता है, आपकी लाइफ में आता है, और वो इंसान आपको जीरो से हीरो कैसे बनाता है ना, ये आप जान नहीं सकते.
1: राधिका,
2: जिस तरीके से आमिर प्रमोट करते हैं एंड जिस तरीके से आमिर अपने मतलब जितने भी बिजनेस को अपना मान के करते हैं, और हमेशा परफेक्ट बिजनेस प्रमोट करेंगे, हमेशा हर जांच पड़ताल करके, आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग हैपन टू मी इन कनाडा. तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आमिर आपकी. अगेन
4: ये कितना खूबसूरत उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, शुक्रगुजार,
1: है ना?
4: क्या खूबसूरत उर्दू आप बोलती हैं, हिंदी बोलती हैं, क्या कॉम्बिनेशन है।
1: अभी तो आप मेंटोर हैं, तो ये शुक्रगुजार।
2: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी, बहुत बड़ा ही एक अलग ही वो कहते ना, ये तेरे मेरे इश्क का जो दौर था वो बहुत जबरदस्त था, वो इश्क काम का था आमिर, बहुत ही जबरदस्त वो दौर था हमारा। मैं भी कोई और थी और तू भी कोई और था।
1: मैंने ये लाइन सुनने के लिए आपको ऑन एयर बुलाया था राधिका, दैट यू डिड इट, एंड आई फील प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो एंड टू बी वर्किंग एज अ को होस्ट विद हिम, एंड सो आप बिल्कुल सही कह रही है, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम एंड आई एम लर्निंग एवरी सिंगल डे।
3: म्यूचुअल फीलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया राधिका, सलामत रहो, हमेशा आबाद रहे, बहुत सारी खुशी की, खुशहाली की, मुसरतों और खुशियों की दुआएं आपके लिए
2: जी। थैंक यू आमिर, एंड हैप्पी बर्थडे अगेन शिवानी जी, आपको भी कंग्रेचुलेशंस, एंड मिलते हैं बहुत जल्दी,
3: बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।

0: मम्मा व्हाई डोंट यू गो टू वर्क नाउ?
1: बेटा तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है, एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
2: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
1: क्या वो मदद करेंगे?
2: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई, तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
3: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ, सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
2: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
3: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
4: ख्वाब पूरा हो सकता है, आपका बच्चा भी अब डॉक्टर बन सकता है।
5: अपने बेटे या बेटी को मोस्ट अफोर्डेबल रिकॉग्नाइज्ड ऑल सेंट्स यूनिवर्सिटी डोमिनिका में इनरोल करवाएं,
4: उसे डॉक्टर बनाएं। 20 इयर्स ऑफ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, नो एमकैट रिक्वायर्ड,
5: 90% पास रेट।
4: कॉल नाउ 416-743-9222,
5: 416-743-9222,
4: और विजिट allsaintsuniversity.org। All Saints University से डॉक्टर बनने के बाद आपका बच्चा अमेरिका, कनाडा, यूरोप और किसी भी मुल्क में एज अ डॉक्टर काम कर सकेगा।
6: साहब, जिंदगी में दो ही अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच तो ये है कि आप जरा ढीले पड़ जाएं जिंदगी के पहले हिस्से में, 19-20 साल तक कोई मेहनत ना करें खास, जैसे स्टैंडर्ड का चल रहा है वैसे चलने दीजिए और उसके बाद फिर मेहनत करना शुरू कीजिए, सारी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका यह है कि जिंदगी के पहले 20-25 साल दबा के मेहनत कीजिए, फिर सारी जिंदगी राहत की है, सुकून की है, इत्मीनान की है। हम सब चाहते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, दुनिया की बेहतरीन किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के अमेरिका, कनाडा या यूरोप जैसे किसी मुल्क में, इलाके में, देश में, रीजन में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करे। तो ये बात ध्यान से सुन लीजिए आज, अगर आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम मौका है उसके लिए, एक चांस है डॉक्टर बनने का। ये कैसे बन सकता है, इसी मुद्दे पर बात करेंगे, इसी मामले पर बातचीत होगी। ऑल सेंट्स यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं सुलेमान जी, वेलकम करते हैं सर आपको।
7: थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत
6: सुलेमान, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये ख्वाब, ये ड्रीम, ये सपना सब पेरेंट्स का होता है कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, तो कोई आसान तरीका, सीधा तरीका जिसमें बगैर किसी कोई बड़ा मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट दिए हुए बच्चा डॉक्टर बन पाए, कोई है तरीका ऐसा?
7: या तरीका बहुत आसान है, हमारा यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट्स को हम ले जाते हैं उनके लिए कोई एग्जाम की जरूरत नहीं है। हमारे पास दो तरफ के प्रोग्राम है, एक MD का, एक 5 साल का प्रोग्राम है, एक 4 साल का प्रोग्राम है। 5 साल का प्रोग्राम के लिए हम लेते हैं हाई स्कूल ग्रेजुएट्स जिन्होंने 12 साल का एजुकेशन किया हो और उनका मार्क्स 70% हो, तो उनको कोई एग्जाम की देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू रहेगा, उसे हम स्टूडेंट्स को ले जाते हैं फॉर 5 ईयर MD। और 4 ईयर MD के लिए हम साइंस ग्रेजुएट्स को लेते हैं जिन्होंने मोर देन 70% सिक्योर किया हो उनका एग्रीगेट मार्क्स में।
6: बिल्कुल ठीक। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस नंबर पर राब्ता किया जाए, कहाँ कांटेक्ट किया जाए फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए?
7: ये हमारा नंबर है 416-743-9222।
6: नंबर दोहरा रहे हैं आपके लिए, इसी नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, जरा सा पोटेंशियल अगर आपको दिखता है तो नाउ इज द चांस टू सेंड हिम और हर टू अ मेडिकल स्कूल, और डिग्री के मिलने के बाद अमेरिका हो या कनाडा, यूरोप हो या एशिया, कहीं भी आपका बच्चा एज अ डॉक्टर काम कर पाएगा। ये रहेगा नंबर 416-743-9222, ऑल सेंट्स यूनिवर्सिटी का नंबर है। यहां ब्रैम्पटन, यहां
8: वॉन में ही इनका ऑफिस है, यहाँ जरूर आके मिलिए, बात कीजिए। 416-743-9222। अगली बात मैं ये जानना चाहता हूँ सलमान, हमारे सुनने वालों को ये बताइएगा कि प्री रेक्विजिट्स क्या रहते हैं, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन प्री रेक्विजिट बच्चे के पास होनी चाहिए कि वो डॉक्टर बन पाए।
7: ये जो जैसा बताया 5 ईयर MD के लिए हाई स्कूल ग्रेजुएट्स, उन्हें मैथमेटिक्स और कैलकुलस क्या हो, प्लस इंग्लिश और साइंस सब्जेक्ट्स में केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स या हो।
8: अच्छा, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर ग्रेड्स रहते हैं कि वो कोई ए प्लस ग्रेड हो या कुछ ऐसे?
7: ग्रेड्स अबाउट 70%।
8: अच्छा, अबाउट 70% में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर उन्होंने पढ़ा हुआ है या मैथ्स पढ़ा हुआ है तो वो एलिजिबल हो सकते हैं इसके लिए। तो वो तमाम पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी 10th ग्रेड में हैं या स्कूल के आखिरी साल में हैं, तो हाउ अर्ली दे शुड कांटेक्ट यू, कितनी जल्दी आपसे कांटेक्ट करें वो?
7: हम यूजुअली देखते हैं हाई स्कूल ग्रेजुएट्स, मतलब 12 साल के बाद ही उनके एप्लीकेशन लेते हैं। जैसे आप लोग इंफॉर्मेशन के लिए हम मिल सकते हैं 10th क्लास एज वेल, हम गाइड कर सकते हैं क्या करना है, कितने मार्क्स लेना है, ये सब हम गाइड कर सकते हैं उनको। लेकिन लेते हैं हम आफ्टर 12 इयर्स ऑफ स्कूलिंग।
8: बिल्कुल ठीक। कुछ लोग बड़े शक में पड़ जाते हैं, शुबे में पड़ जाते हैं, डाउट्स बहुत सारे उनको होते हैं, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि पेरेंट्स बच्चे को लेके आए और ऑल सेंट्स यूनिवर्सिटी में यहाँ वॉन में आके आपसे मुलाकात कर सकते हैं? आपके रजिस्ट्रार्स, आपके स्टूडेंट असिस्टेंट्स या काउंसलर्स मौजूद होते हैं वहाँ?
7: यस, बेशक, वी हैव आवर रजिस्ट्रार्स एंड देन डीन्स आर अवेलेबल। तो जब भी आपका कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप खुद आ सकते हैं या आप टेलीफोन कर सकते हैं, जो भी हम टेलीफोन जो दिया था।
8: बिल्कुल ठीक है। मैं आखिरी सवाल आपसे सलमान ये पूछना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी आप हमें कोई टेस्टिमोनियल दिला दीजिए, किसी से बात करवा दीजिए, किसी का बच्चा ऑलरेडी वहां पढ़ रहा हो या पढ़ चुका हो या एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हो, तो उसका भी कोई अरेंजमेंट करा देते हैं आप पूरी तसल्ली के लिए?
7: जरूर, यस, we can give the testimonial, yes.
8: बिल्कुल ठीक है। मैं अपने तमाम सुनने वालों से ये कहना चाहता हूँ, आपका ताल्लुक किसी भी कम्युनिटी से है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, आप अफगानिस्तानी, किसी भी कम्युनिटी से हैं आप, और आपका बच्चा साइंस सब्जेक्ट्स में ज़रा सा बेहतर है और हाई स्कूल ग्रेजुएट है या तो उसकी 12 साल की एजुकेशन है, तो नाउ इज़ द टाइम फॉर योर चाइल्ड, फॉर योर सन और डॉटर टू गो टू मेडिकल स्कूल, मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहां है नंबर, अभी डायल कीजिए, मुलाकात कीजिए। 416-743-9222, 416-743-9222, 4167492। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच।
7: थैंक यू, धन्यवाद।
9: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto Canada, Monday to Friday.
5: चलो एक नज़म लिखते हैं, चलो एक नज़म लिखते हैं, किसी के नाम करते हैं। चलो एक नज़म लिखते हैं, किसी के नाम करते हैं। मगर ये सोचना है अब कि उसमें जिक्र किसका हो, कि उसमें बात किसकी हो, कि उसमें जात किसकी हो। और ये भी फर्ज करते हैं कि जिस पे नज़म लिखते हैं हमें उससे मोहब्बत है, और ये भी फर्ज करते हैं कि जिस पे नज़म लिखते हैं हमें उससे मोहब्बत है। हमारे सारे जज्बों को बस उसकी ही ज़रूरत है। चलो एक काम करते हैं कि हम जो नज़म लिखते हैं तुम्हारे नाम करते हैं, हम जो नज़म लिखते हैं तुम्हारे नाम करते हैं। तुम ही उन्वान हो उसका, तुम्हारा जिक्र है उसमें, तुम्हारी बात है उसमें, तुम्हारी जात है उसमें। चलो एक नज़म लिखते हैं तुम्हारे नाम करते हैं, चलो एक नज़म लिखते हैं तुम्हारे।

0: आप हैं आमिर और शिवानी के साथ 2:33 इज द टाइम और इतना खूबसूरत सा मौसम है आज, तो वेदर भी बहुत प्यारा है। और ऐसे में अगर हम हेल्दी रहते हैं और अगर हम डिजीज फ्री रहते हैं तो जिंदगी जीने का मजा और भी आता है।
1: आ जाता
0: और जिनका आज बर्थडे है उनको तो और भी मजा आ रहा है आज, क्योंकि आज मौसम ने पूरा पूरा गुरु जी आपको वेलकम करेंगे। कैसे हैं आप?
2: नमस्ते नमस्ते शिवानी जी, नमस्ते भैया।
1: नमस्कार गुरु जी, कैसे आप?
2: ठीक है ठीक है। मैं हमारा श्रोतक के लिए एक बात बताना, पहले किसके लिए, किसके लिए? सारा को, सारा को बर्थडे आता है, सारा लोगों को बर्थडे आता है। सारा को आज बर्थडे किसने किसने हो रहा है, वो सारा को हैप्पी बर्थडे। उसमें आज एक स्पेशल गेस्ट को, आज मेरा फ्रेंड एक लोग है उसको स्पेशल, आज मेरा फ्रेंड अमीर भाई है, ये अमीर भाई को आज को बर्थडे है, उसको हैप्पी बर्थडे। भगवान उसको आशीर्वाद देना, लंबा आयुष देना,
1: बहुत बहुत
2: और शरीर को ताकत देना, शरीर में हेल्थ वेल्थ अच्छा होना, उसको आगे आगे बनना, नया नया रेडियो, ओन रेडियो खोलना।
1: शुक्रिया बहुत
2: और हबीर भैया को मेरे तरफ से विशेष 100 साल आप अच्छा रहना है, और शिवानंद जी के साथ आप अच्छा अच्छा अपर ऊपर ऊपर ऊपर अच्छा अच्छा जाना है, और सारा लोगों को मदद करना है आपको। गॉड ब्लेस यू वंस अगेन अमीर भाई, हमारा
1: बहुत बहुत
2: हमारा
1: शुक्रिया।
2: दिल का भैया है आप, मेरा दिल का भैया है। आपके से बहुत लोगों ठीक हो गया, उसको सारा लोग मेरे को बता रहा है आज अमीर भैया को, मेरे तरफ से भी उनको हैप्पी बर्थडे बोलो भैया। वैसा बहुत लोग, कम से कम 25-30 लोग मेरे को बताया।
1: अरे वाह,
2: ओके, आपको वंस अगेन हैप्पी बर्थडे भाई। आप 100 साल अच्छा रहना, सुख से दुख दूर होना, सुख से होना, हेल्थ एंड वेल्थ से होना है।
1: बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया
0: गुरुजी। आमिर अपने आप को 18 साल का बताते हैं और कहते हैं गुरुजी के साथ में रहा तो मैं हमेशा 18 ईयर ओल्ड रहूंगा।
2: उनको उनको कभी भी उनको मन मन 18 साल में रहना, कभी भी जवान पर काम करना।
1: ये बात आपकी गुरुजी बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। मैं सुनने वालों को आज एक बात बताना चाहता हूं। मैं अक्सर कहता हूं कि मैं 27 का हो गया हूं, 28 का हो गया हूं, आज मैं सीरियसली बता ही दूं अपने सुनने वालों को कि मैं आज 30 साल का हो गया हूं। तो 30 साल में, और मुझे यूं लगता है गुरुजी के पास में गया तो उन्होंने मुझे कुछ गोलियां दी। वो गोलियां ऐसी थी, मैंने को तकरीबन 3 साल पहले वो गोलियां खाई और उसके बाद मेरी उम्र रुक गई वहीं के वहीं। और मुझे यूं लगता है कि मैं दीवार में एक मुक्का मारूं तो दीवार गिर जाए, इतनी शक्ति थी, इतनी स्ट्रेंथ थी उन गोलियों,
0: जड़ी बूटियों में स्ट्रेंथ होती है।
1: हाँ, और उस वक्त से लेके अब तक 3 साल हो गए मुझे। मैं जब तक गुरुजी की दी हुई वो गोलियां ना खाऊं तो मैं सोचता हूं कि जिंदगी में कोई कमी सी है।
0: एब्सोल्युटली, वैसे बहुत लोग फील करते हैं।
1: अगर आपको जिंदगी में, आज एक ही मुद्दे पर बात करेंगे गुरुजी से, अगर आपको जिंदगी में शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, और ताकत भी ऐसी कि आप हमेशा यंग महसूस करें, ताकतवर महसूस करें, तो आप गुरुजी के पास जाएं। ऐसी कमाल की गोलियां देते हैं कि आप अगर 60 साल के भी हैं तो आपको लगेगा कि आप 31-32 के ही हैं,
0: क्योंकि आपके पास जब बीमारियां नहीं होंगी तो बॉडी और शरीर हमारा ताकतवर बनता है।
1: गुरुजी से जरूर बात करें, ताकत है इनकी दवाइयों में, शक्ति है इनकी दवाइयों में, कभी सुस्ती नहीं पड़ेगी आपको, कभी आप स्लो महसूस नहीं करेंगे, कभी डाउन महसूस नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आपको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, डाउन फील करते हैं, कंधों में दर्द सा रहता है, थके थके हुए से रहते हैं, सुबह उठते हैं यूं लगता है जैसे सारी रात काम ही करते रहे हैं, यानी इतना थक जाते हैं,
0: नींद पूरी नहीं होती, दैट इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। गुरुजी
1: आप बहुत कमाल का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोग हमारे पास आते हैं, हमें बताते हैं जी गुरुजी के पास गए थे, किसी को हाई ब्लड प्रेशर था, किसी को लो ब्लड प्रेशर था, कोई डायबिटिक था, कोई कमजोरी महसूस करता था, एवरीबडी इज हैप्पी,
0: किसी का घर सुना था गुरुजी की वजह से, घर आबाद हुआ,
1: आबाद हुआ, बिल्कुल। बहुत कमाल के आदमी हैं, गुरुजी से बात जरूर करें, बहुत बहुत बहुत पुराने आयुर्वेद है, 7वीं पीढ़ी है आयुर्वेदा में, ये नंबर मिला है,
2: नौ पीढ़ी,
1: यस, 4347 4384 3399। गुरु जी से बात करें, लो महसूस करते हैं, डाउन महसूस करते हैं आप, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, रात को नींद नहीं आती है, चाहे बीवी से लड़ाई की वजह से ना आती हो, लेकिन कोई भी वजह हो यहां नंबर मिलाएं गुरु जी का, 4374383399। खुद भी रखें, दोस्तों को भी दें, रिश्तेदारों को भी
0: जी। और आमिर ये जरूर बताएंगे, गुरु जी का कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि गुरु जी ये सारी चीजें सेवा भाव से करते हैं। 3 दिन गुरु जी स्कारब्रो में होते हैं, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, यानी आज के बाद अगले 4 दिन गुरु जी आपको ब्रैम्पटन में मिलेंगे। सारे के सारे मिसिसागा, ब्रैम्पटन और अराउंड सिटीज के जो लोग हैं वो गुरु जी की सेवा ले सकते हैं। और गुरु जी चलते चलते कुछ ऐड करना चाहेंगे।
2: यस यस जी, क्या है, हम ये काम हम नव जनरेशन से कर रहा है, ये सारा सारा के सारा हर्बल से कर रहा है। ये हर्बल से सारा मैं मेरा टीम के साथ हिमालय पर्वतों का ऊपर, विंध्य पर्वतों का ऊपर एंड नल्लमल्ला फॉरेस्ट को अंदर जाके ये सारा जड़ी बूटियां लेकर आके उससे हम जड़ी बूटिया से दवा बना के लोगों को दे रहा है। ये सारा असली असली असली हमारे हर्बल से बनाता है, उससे साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। सारा बीमार को वो जाता है, जॉइंट पेन, सायटिका पेन एंड कमर के दर्द, लोअर बैक पेन एंड शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर, नमनेस सुन जाता है, टिंगलिंग हो जाता है, पैरों में क्रैम्पिंग हो जाता है, ताकत कम हो जाता है। और उसके सारा लोग हमारे पास आ गया, सारा लोग हमारा आमिर भैया बहन जी का बात सुन के आ गए, शिवरण जी का बात सुन के आगे ठीक हो रहा है। हमारा लोगों को ये ही बताता है, सारा लोगों को खुशी से हैप्पी से जो वो रोग दूर से होना है, सारा को अच्छा होना है, खुशी प्रॉब्लम नहीं होना, प्रॉब्लम हुए तो हर्बल ट्रीटमेंट कर दो,
1: हर्बल बिल्कुल ठीक,
2: कोई भी हर्बल ट्रीटमेंट कर दो, कोई भी नहीं तो मेरे पास आ जाओ, मैं बिल्कुल कंसल्टेशन फ्री है, 3 दिन स्कारबोरो में, 4 दिन ब्रैम्पटन में रहता है।
1: बिल्कुल सही, यहाँ नंबर है 4374383399, 437-438-3399। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच।
2: थैंक यू पंजी, थैंक यू बहन जी।
3: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ। ਫੋਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦਿ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
1: और साहब बात करें ग्रांट्स की और लोन्स की, इस वक्त अगर हुकूमत आपको $1 भी दे तो ना मत बोलिए, ले लीजिए। जो गवर्नमेंट देती है वो आपका सबसे पहला हक है, क्योंकि अगर मैं मिसाल देता हूं, आपकी तरफ मान लीजिए $10,000 टैक्स निकलता है, क्या गवर्नमेंट कभी छोड़ेगी वो 10,000? कभी नहीं छोड़ेगी। तो इसलिए अगर गवर्नमेंट से आप पैसा ले सकते हैं तो ले लीजिए, एक लम्हे की भी देर मत कीजिए। साथ निभा रहे हैं नागपाल, वेलकम करते हैं आपको।
4: हेलो
1: जी नागपाल जी, वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में।
4: हाँ, थैंक यू वेरी मच, सभी को सलाम,
1: बहुत बहुत शुक्रिया। नागपाल, आज मैं जरा डिटेल में आपसे जानना चाहूंगा, क्या प्रोसेस रहता है, कितना पैसा मिल सकता है, कितने लोगों को मिल सकता है, एक ही घर में अगर 10 लोग रहते हैं तो क्या 10 के 10 ही इनरोल करा के 10 के 10 ही ले सकते हैं ग्रांट, क्या तरीकाकार है?
4: हाँ जी, सो हमारी कंपनी का नाम है यूनी ग्लोबल एडवाइजरी, 8 साल हो गए हमें इस बिजनेस में, एजुकेशन कंसल्टिंग में, बहुत लोगों को मदद कर चुके हैं, बाल सफेद हो चुके हैं, शुरू नहीं कर रहे काम, प्रॉपर ऑफिस है मिसिसागा में, हर एंटायर डेरी पे 7 बंदे काम कर रहे हैं। कोई फंडिंग की मतलब फंडिंग वाले काम से लोग डरते हैं, डरना भी चाहिए वैसी भी बात है, लेकिन पहले मैं अपने पे इस्तेमाल कर चुका हूँ और बीवी पे इस्तेमाल कर चुका हूँ, फिर इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो मतलब कोई कुंडी नहीं है। 2018 में मैं भी कर चुका हूँ इसको, राइट, अब इतने साल हो गए हैं, अब हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं इसमें। आप तालीम हासिल करें, हुकूमत तालीम की फीस दे रही है आपको, कॉलेज की फीस आपकी जेब से नहीं जा रही, हुकूमत दे रही है अलग से आपको, अलग से 30 से 100,000 की फंडिंग डायरेक्ट आपके खाते में हुकूमत डालती है, डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली साइज, बच्चे ज्यादा है, इनकम कम कम कम है आपकी नोटिस ऑफ असेसमेंट पे, तो आपको ज्यादा फायदा है। देखिए चाइल्ड बेनिफिट में अगर तब आता आपको अच्छा, जब आपकी इनकम कम होती है नोटिस और असेसमेंट पे, राइट। सेम सिमिलर चीज यहाँ पे है, कोई चाबी नहीं है, कॉल करें ऑफिस आए।
1: बिल्कुल ठीक, कॉल कीजिए।
5: अगर आप लंबे वक्त से किसी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं और एक नेचुरल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन की तलाश में हैं, तो आइए सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर पर। यहाँ खानदानी परंपरा के अनुसार नब्ज देखकर कई तरह की बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से किया जाता है। इलाज से बहुत सारे लोगों को राहत और फायदा मिला है, चाहे एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम्स, गैस, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस, सोराइसिस या फिर किसी अन्य हेल्थ इश्यू की बात हो, बीमारियों का जड़ से इलाज करने में मदद मिलती है। आज ही कॉल करें वैद्य रत्न पीवी राज को, लोकेटेड इन ब्रैम्पटन, 6473278111, 6473278111।
6: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
7: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
8: और साहब एक बार फिर से शामिल करते हैं नागपाल जी को। राब्ता इनसे मुनकता हो गया था, बातचीत में थोड़ा खलल आया, दोबारा शामिल करेंगे। जी नागपाल, वेलकम अगैन। नागपाल आप हमारा साथ निभा रहे हैं। जी नागपाल जी, हम बात कर रहे थे उन लोगों के लिए जो ग्रांट अप्लाई करना चाहते हैं, जो सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस ग्रांट के लिए।
4: हाँ जी, आप सिटीजन है, प्रोटेक्टेड पर्सन है, ओंटारियो में कहीं भी किसी भी सिटी में रहते हैं, मार्कम, स्कारब्रो, कहीं भी रहते हैं, आपकी इनकम 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे कम है, लेस देन $70,000 है, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, हाउसवाइफ, अनएम्प्लॉयड है, तालीम हासिल करें, अप्लाई करें, ग्रांट्स आज मिल रही है, एक हफ्ते के बाद ग्रांट्स गवर्नमेंट बंद कर रही है, हमारे हाथ में नहीं है, अभी एक्शन लीजिए। आपकी आस पड़ोस वाले सारे ले चुके, आपको बता नहीं रहे, वो अच्छी चीज नहीं बताते, लोग किसी का भला हो जाएगा, तो इसलिए कॉल करें, असेसमेंट कराए, 30 से 100,000 फंडिंग मेरे नहीं अपने अकाउंट में डायरेक्ट गवर्नमेंट से हासिल करें।
8: अच्छा, अगर ग्रांट मिल जाती है तो ग्रांट जो मिल गई आपको उसकी कोई गाड़ी शाड़ी खरीद सकते हैं, बैक होम कोई इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे घर की रेनोवेशन करा सकते हैं, उससे मोर्टगेज दे सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर यूज ही कर सकते हैं।
4: गवर्नमेंट आपको दे रही लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं भी कुछ भी काम करें आप उस पैसे से। हमारे जो अंकल आंटी हैं, जो हमारे मेन क्लाइंट्स हैं, 50 ईयर्स के 75 ईयर्स के क्लाइंट्स हैं, राइट, 75 साल 50 60, कोई एज लिमिट नहीं है इसमें, गवर्नमेंट के प्रोग्राम में एज की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जब हमारे अंकल आंटी की फंडिंग आती है, अपने बच्चों को दे देते हैं, तो बोलते हैं बच्चे खर्च कर दिए, राइट, तो आप उसे कहीं भी पैसे कैसे भी खर्च कर सकते हैं। तालीम हासिल करें, हुकूमती फंडिंग, तालीम की आपकी फंडिंग जरिए आपको हुकूमत डायरेक्ट आपके खाते में, फंडिंग के दो पार्ट्स हैं, ग्रांट जो पैसा वापस नहीं करना, और लाइक लोन जो कि ऑप्शनल है, 0% पे है। अब फैमिली साइज जितना ज़्यादा उतनी फंडिंग ज़्यादा, 30 से 100,000 की बात कर रहे हैं हम, 30 से 100,000 की बात नहीं कर रहे हम।
8: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। यहाँ नागपाल जी का नंबर है, इनसे बात करें, 10-12-15 लोग बैठे हैं, काम कर रहे हैं, आपको ग्रांट और लोन दिलवा रहे हैं। ग्रांट की बात करें वो एक अलग चैप्टर है। मैं तो ये कहूंगा कि आज के टाइम पे बगैर इंटरेस्ट के पैसा यूज करने के लिए मिल जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये नंबर मिला है 4375. It's 4372643175. कुछ लोग बड़े शक में पड़ जाते हैं कि जी पता नहीं ग्रांट कहाँ आएगी, कैसे आएगी, क्या प्रोसेस रहेगा, किसके अकाउंट में आएगी. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रोसेस क्या रहता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ते हैं और कितना टाइम लग जाता है पैसे आने में.
4: तो पहली बात तो फंडिंग के नाम से आप लोग डरिए मत, क्योंकि हम सिर्फ एजुकेशन फंडिंग में डील करते हैं. हम बैंकों को पागल बनाने का काम नहीं करते कागज एडिट करके, ठीक है. तो साफ काम है, साफ तरीके से कर रहे हैं. आप लोग साफ काम गलत तरीके से गलत लोगों से कराते हैं, बाद में फिर सबको गंदा ही कहते हैं. यहाँ पे कोई कागज एडिट नहीं हो रहे आपके, आपका NOA, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट और आपका खुद का मैरिज सर्टिफिकेट, ये कागज लगते हैं. और कोई कागज नहीं लगते आपके इनकम ये वो, ठीक है, कुछ नहीं लगता आपका इसमें. गवर्नमेंट आपको एजुकेशन की फंडिंग दे रही, कौन दे रहा है, गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट
8: ये जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो मैरिज के बाद अब बड़ी अच्छी जगह यही काम आया दोबारा है.
4: मैं आप मानोगे नहीं, जब सिंगल लोग फोन करते हैं मुझे कहते हैं सर आपकी सिर्फ आपको सिर्फ लोन आएगा, ग्रांट से फीस निकलेगी. तो वो खुद कहते हैं शादी का बेनिफिट आज पता लगा है. तो हमने बोला शादी का नहीं, बच्चों का ज्यादा बेनिफिट है. क्यों? फैमिली अप टू 100,000 की फंडिंग आती है, 50,000 तो उसमें से ग्रांट है. 100,000 में से फैमिली फाइव को 50,000 ग्रांट का पैसा वापिस नहीं करना सर. रेस्ट 50,000 0% पे लोन है, 1.5 साल बाद भी 2.5% साल का ब्याज है. 50,000 का आपने 15 साल में 55,000 उठाना है, मतलब $5,000 ब्याज है सिर्फ, 2.5% साल का ब्याज. कितना कम होता है ये. पीछे ना रहे, हमारा लाइक आपका फायदा हाथी जितना है, हमारा फायदा चीटी जितना है. फंडिंग आपके खाते में आ रही
8: है, आपका फायदा है. आप अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं वो कितने रखते हैं, आपकी फीस वगैरह क्या है और वो कब देनी होती है.
4: जैसा मैं कह रहा हूँ साफ काम है, साफ तरीके से कर रहे हैं, कोई पेपर एडिट नहीं होता, कोई कमीशन नहीं, कोई एजेंटी नहीं है. जो इस काम में लोग और जितने वो एजेंटी लेते हैं कमीशन लेते हैं, भाई साहब साफ काम में भी पैसे मार लेते हैं मोटे. हम तो सही तरीके से ST से 8 साल से काम कर रहे हैं, कोई चाबी नहीं है इसके अंदर. हमारी फीस है 199 या 499 काम होने के बाद. आज अभी मेरे असिस्टेंट का फोन आया, मैं बाहर था, अभी 6 बंदों का अप्रूवल आ चुका है आज के दिन, जिन्होंने
8: मेरे
4: खाते में फंडिंग टू करके गिर चुके ठा ठा करके. तो इसलिए अब हमारी फीस आएगी 200 या 500 डिपेंडिंग ऑन कोर्स. फुली ऑनलाइन कोर्स है, कहीं नहीं जाना आपने, आसान से है, असाइनमेंट्स हैं, एग्जामिनेशन है ही नहीं. घर में बैठे हैं, बच्चे संभाल रहे हैं. लेडीज हमारे क्लाइंट्स बने, जो रह गए वो बने, क्योंकि अगर हमें अगर 100 लोग सुन रहे हैं अभी तो उसमें से 30 तो एनरोल हो ही चुके हैं. तो जो रह गए हैं पीछे ना रहे, गवर्नमेंट ग्रांट्स बंद कर रही है.
8: बिल्कुल ठीक, ये नंबर है, ये मिलाइए, द सूनर द बेटर. जितनी जल्दी नंबर मिला लेंगे उतनी जल्दी आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, महीने डेढ़ महीने में ग्रांट आपके अकाउंट में आ जाएगी, लोन भी आ जाएगा. 4372643175 नंबर अगेन 4372643175. 437-264-3175. नागपाल बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच.
9: लवी डवी सॉन्ग ऑफ द डे इज ब्रॉट टू यू बाय रूहानी कॉलेज. आंखों में बसा है डॉक्टर बनने का सपना या सोच रहे हैं मसाज थेरेपिस्ट का शानदार करियर हो अपना, तो बस आपको है रूहानी कॉलेज ही चुनना. बेहतरीन पढ़ाई से शानदार कमाई वाले करियर के सफर में आपका हम सफर रूहानी कॉलेज. रूहानी कॉलेज, यहाँ सपने सच में सच होते हैं. 905-731-2555 905-731-2555 रूहानी कॉलेज.

0: थ्री टोरंटो कनाडा। और दोस्तों डी डे बिल्कुल नजदीक आने वाला है। 29 अगस्त से क्लासेस शुरू हो रही हैं डिजिटल मीडिया के कोर्स की, जो कि 1 महीने का कोर्स है। और बड़े कन्वीनियंट टाइम पर, बड़े कन्वीनियंट डेज में ये रखा गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड कर पाए, फैमिली के ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स अटेंड कर पाए। क्वालिफिकेशन तो सिर्फ इतनी है कि कंप्यूटर को आपको खोलना आना चाहिए, कंप्यूटर ऑन करना आना चाहिए, और बस ऑन कर लेंगे तो उसके बाद जो सारा का सारा काम है आपको क्लासेस में सिखाया जाएगा, A to Z। अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आप क्रिएटिविटी की एक्सट्रीम केस पे जाके आप अपने बिजनेस को नया लुक देना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, सो दिस इज इट। और उसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आमिर हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर, फिर से एक बार बताना चाहेंगे हमारे लिस्टर्स को आप?
1: मैं आपको बता दूं कि कनाडा में पहली बार इतना यूजफुल, इतना कंप्रेस्ड, इतना एक्सटेंसिव कोर्स होने जा रहा है, जिसमें हम बेसिक से शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से, और आपको कंटेंट प्रोड्यूसर बना देते हैं। हम आपको ऑडियो प्रोडक्शन सिखाते हैं, वीडियो प्रोडक्शन सिखाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शिवानी, ये बहुत बड़ा स्किल है, जो लोग मीडिया से रेलिवेंट है उन्हें पता है, उन्हें इल्म है, एडिटिंग। इट्स अ लाइफ लॉन्ग स्किल, सारी जिंदगी का स्किल है, बहुत बड़ा स्किल है, रेलिवेंट स्किल है। आप इंस्टाग्राम करना चाहते हैं, आप यूट्यूब करना चाहते हैं, आप टिकटॉक करना चाहते हैं, आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं, उसके लिए अगर आपको एडिटिंग नहीं आती तो आप जीरो हैं।
0: एक लाइन में ऐड करना चाहूंगी आमिर, एडिटिंग कितनी जरूरी होती है कि बेस्ट से बेस्ट प्रोजेक्ट को आप एक तरीके से मैच कर सकते हैं अगर एडिटिंग अच्छी नहीं हो।
1: नहीं है, सही
0: हमारे अगर हम अपने हिंदी सिनेमा की बात करें, इंडियन सिनेमा की बात करें, तो जो ग्रेट शोमैन राज कपूर, कौन नहीं जानता उन्हें, वो फिल्मों के माध्यम से ग्रेट शोमैन जाने गए, लेकिन कितने ही सालों तक वो एडिटर रहे, जिससे कि उनको आइडिया था कि फिल्में एडिट करके कैसे अच्छी बनाई जाए।
1: वेरी नाइस।
0: कितनी जरूरी होती है एडिटिंग, और ये आप पूरी प्रोफेशनली और कंप्लीट सिखाते हैं?
1: बिल्कुल कंप्लीट एडिटिंग सिखाएंगे आपको, ऑडियो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग। और सिर्फ अगर आपको एडिटिंग आ गई तो मार्केट में ऐसे लोग हैं शिवानी, $100 per hour से शुरू होता है अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में एडिटर का काम। और ये पता है कितने कितने तक जाता है? यू विल बी शॉक्ड नाउ, $2,000 an hour
0: Don't tell me.
1: फिल्मों को एडिट करने के लिए, जो फिल्म एडिटर है आजकल के दौर में, बॉलीवुड के हॉलीवुड के मेन स्ट्रीम के बड़े एरियाज में, दे चार्ज अप टू $1,500 to $2,000 an hour डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस एंड द पोर्टफोलियो। तो यहां से अगर आप शुरू कर लें, एडिटिंग आपको इतनी सिखा देंगे कि आप एक कमाल के एडिटर बन सकते हैं। हम आपको गुर सिखाएंगे, हुनर सिखाएंगे, स्किल सिखाएंगे, और सिर्फ 40 घंटे का कोर्स है, Saturday 1 till 6, Sunday 1 till 6। आप रिटायर्ड हैं, आप यंग हैं, आप ओल्ड हैं, आप मिडिल एज्ड हैं, आप प्रोफेशनल हैं, हमने बहुत से रियल स्टेट प्रोफेशनल्स को, मोर्टगेज प्रोफेशनल्स को, इंश्योरेंस वालों को बाकायदा ट्रेन किया है। अब वो अपनी वीडियो खुद ही बनाते हैं और खुद ही डिजिटल मीडिया पे चढ़ाते हैं, उनका मार्केटिंग का बजट ही जीरो हो गया, यानी दे डोंट हैव टू स्पेंड एनीथिंग ऑन मार्केटिंग नाउ। ये फायदा इस कोर्स का। नंबर मिलाइए, एनरोल कीजिए, 416-303-3639। नंबर आपको दोबारा बता रहे हैं, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। प्रोडक्शन सिखाएंगे, कैमरा सिखाएंगे, डॉली ऑपरेशन सिखाएंगे, गिम्बल, ट्राइपॉड्स, क्रेन्स, स्लाइडर्स कैसे यूज होते हैं प्रोडक्शन में, इनका क्या काम है, इंडोर प्रोडक्शन क्या होती है, आउटडोर क्या होती है, लाइटिंग सेटअप क्या होता है, 3-point lighting क्या होती है, एडिटिंग, कलर कुरेक्शन सब सिखाएंगे आपको। यहां रहेगा नंबर 416-303-3639। इट्स 416-303-3639। स्टे ट्यून, दिस इज लवी डवी शो।
0: और इसी के साथ आमिर, वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, कल थर्सडे को होती है आपसे मुलाकात। रखिएगा अपना बेहद ख्याल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आमिर, एक बार फिर से आपको वेरी हैप्पी बर्थडे, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज, और सारे लिस्टनर्स की तरफ से आपको अ वेरी हैप्पी बर्थडे। 416-303-3639। हैव अ ग्रेट डे।
1: इस ख्याल के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि जहां रहिए खुशबू की तरह रहिए, जो जहां तक जाती है अपने होने का एहसास दिलाती है, लोगों को अच्छा फील कराती है। आग की चिंगारियों की तरह मत बनिए, कांटों की तरह मत बनिए, वीरान झाड़ियों की तरह मत बनिए जो लोगों को भटका देती है, लोगों को जला देती है, लोगों को झुलसा देती है। खुशबू की तरह रहिए और फैल जाइए। अपना ध्यान रखिए। रेडियो टोरंटो कनाडा के ब्रैम्पटन स्टूडियो से आमिर तोफैल और शिवानी को इजाजत दीजिए। हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ द डे अहेड एंड हे यू, आई लव यू।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The opinions stated by the various contributors to Sean Express are not to be considered as endorsed by Sean Express or CMR. They represent the opinions of the individual or business in question. All information given on this radio show is for education and entertainment purpose only. Moreover, the health tips given on this radio show should be cleared with a physician or nutritionist. We make no guarantee about the accuracy of information presented on this show.
3: Attention please, Sean Express, Masiki Rail Gari, CMRP Station, 101.3 FM par aa chuki hai.
4: Jal mein sunane aayi, subah manane aayi, chatpate gossip ke saath masti lutane aayi. Aayi Sean Express, masti ki rail gari, aayi Sean Express, masti ki rail gari.
5: Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी,
6: एक ड्राइव इन मस्ती शो जिसमें है आज के जमाने के टॉप सॉन्ग्स, ताजा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप्स जो आपकी ड्राइव को बनाएंगे पावर ड्राइव. Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी, ड्राइव टाइम शो विद शालिनी,
5: ब्रॉट टू यू बाय Sean Media.
7: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों. मैं शालिनी आप लोगों का वेलकम करती हूँ मस्ती की रेलगाड़ी पर. कहते हैं दोस्तों, जो आज का दिन है ना, बड़ा ख़ास है. जो बीत गया वो एक सबक था और जो आने वाला है वो एक नया मौका है. ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत ना दूसरों से आगे निकलना नहीं है, बल्कि हर दिन खुद से बेहतर बनना है. चलते रहिए मुस्कुराते हुए हर डगर पर, चलते रहिए मुस्कुराते हुए हर डगर पर, उम्मीद का दिया जलाए रखिए अपने सफ़र पर. वक्त बदलते देर नहीं लगती दोस्तों, पर भरोसा बनाए रखिए अपने हुनर पर. और अगर किसी वजह से आपका मन थोड़ा भारी है तो उसको अब लाइट करने की जिम्मेदारी हमारी है. अगले कुछ पल होंगे अच्छे संगीत के, अच्छी बातों के, अच्छी खबरों के, ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्स के. होगी खास मेहमानों से मुलाकात, फिल्मी बातें, आपके फेवरेट सुपरहिट सॉन्ग्स और आपका साथ शालिनी के साथ. डायरेक्ट नंबर टू रीच अस ड्यूरिंग और आफ्टर द शो, 416-569-7812. चलते हैं आज की ताजा लोकल खबरों की तरफ. Sean Express News Bulletin brought to you by Sean Media. टोरंटो के हॉस्पिटल फॉर सिक चिल्ड्रन यानी सिक किड से जुड़ी एक बेहद गंभीर खबर सामने आई है. ऑन्टारियो में डॉक्टर्स को रेगुलेट करने वाली संस्था कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ ऑन्टारियो ने डॉक्टर डिलन डिसानियाके का मेडिकल लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया. ये कार्रवाई उनके चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज और चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन मटीरियल से जुड़े आरोपों में गिरफ्तारी के बाद की गई है. फिलहाल उन्हें मेडिकल प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं है और मामले की जांच जारी है. ग्रेटर टोरंटो एरिया में दो लोगों पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के गंभीर आरोप लगे हैं. पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों के संबंध कुख्यात क्रिमिनल गैंग MS-13 से बताए जा रहे हैं. प्रोजेक्ट मर्मिड नाम की इन्वेस्टिगेशन के दौरान खुलासा हुआ कि एक आरोपी जेल में रहते हुए भी अनऑथराइज्ड सेलफोन के जरिए पीड़िता के संपर्क में था. टोरंटो सिटी अब ग्रोसरी स्टोर्स में सर्वेलियंस प्राइसिंग पर रोक लगाने की तैयारी कर रहा है. इस सिस्टम में रिटेलर्स ग्राहकों की शॉपिंग हैबिट्स और पर्सनल डेटा का इस्तेमाल करके अलग अलग लोगों से एक ही सामान के अलग अलग दाम वसूल करते हैं. एक्सपर्ट का कहना है इससे प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं. अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो सभी कस्टमर्स के लिए एक ही प्रोडक्ट की एक ही जैसी कीमत तय करने की दिशा में बड़ा कदम माना जाएगा. स्टैट्स कनाडा की नई रिपोर्ट के मुताबिक टोरंटो और पूरे ओंटारियो में पिछले साल क्राइम रेट और क्राइम सिवियरिटी इंडेक्स दोनों में गिरावट दर्ज की गई है। विशेष रूप से ब्रेक एंड एंटर यानी घरों में चोरी की घटनाएं लगातार तीसरे साल कम हुई हैं और ऑफिशियल्स का कहना है पब्लिक सेफ्टी के लिहाज से एक बड़ी पॉजिटिव इंडिकेशन है। टोरंटो के कॉन्डो मार्केट में धीरे धीरे सुधार के संकेत मिल रहे हैं। नई बिल्ड रिपोर्ट के मुताबिक जून महीने में जीटीए में 273 कॉन्डोज बिके, जो पिछले साल से थोड़े ज्यादा हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक्सपेंडेड एचएसटी रिबेट से बायर्स का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा है। हालांकि कॉन्डो सेल्स अब भी पिछले 10 साल के एवरेज से करीबन 85% कम है। आज का वेदर अपडेट। आज टोरंटो में रहेगा मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड्स, हाई ऑफ 21 डिग्रीज एंड लोज ऑफ 17 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसम सुहावना रहेगा और पिछले दिनों की तुलना में आउटडोर एक्टिविटीज के लिए बेहतर दिन रहने की उम्मीद है। सुनते रहिए मस्ती की रेलगाड़ी 4 बजे तक ऑन CMRFM 101.3। गुड आफ्टरनून। आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: टाइम। जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें। इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: www.winlifetime.com is the website.

0: run to you and your listeners.
1: थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे राफी जी. तो आपका बहुत लंबा करियर रहा है ट्रेडिंग की दुनिया में और आपने शायद अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से भी ट्रेडिंग की होगी. दैट्स वाई आपको कहा जाता है एक परफेक्ट ट्रेडर हैं आप. आई नो आप नहीं मानते, आपको हमेशा लगता है कि कल का दिन शायद आज से बेहतर होगा, कुछ और सीखने को मिलेगा. दैट इज अ ग्रेट इंडिकेशन ऑफ अ ग्रेट आर्टिस्ट. तो लेकिन फिर भी मैं अगर आपसे पूछूं विन लाइफ टाइम में आने के बाद आपने कैसे एक्सपीरियंस किया, आपकी कहानी सुनते हैं. व्हाट डिड यू फील सो डिफरेंट अबाउट विन लाइफ टाइम?
0: जी एग्जैक्टली 5 years ago इसी तरह का इंटरव्यू था और मिस्टर डैनियल ने और 410 पे मैंने ये इंटरव्यू सुना था.
1: अच्छा.
0: ट्रेडिंग 15 साल से हो रही थी ऑन एंड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, लेकिन मैंने फिर आप ही का इंटरव्यू सुना और फिर विन लाइफ टाइम में एज ए स्टूडेंट गया. थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज था तो लाइफ जरा इजी थी, लेकिन एक दफा फिर आई जस्ट फेल इन लव विद द इंस्टीट्यूट और आज मैं उनको रिप्रेजेंट करके और कंपनी को चला के एंड आई एम लीडिंग द वे.
1: क्या बात है, वंडरफुल. सो यू आर अ परफेक्ट एग्जांपल. कैसे जैसे हम लोगों से कहते हैं ना कि इंटरव्यू सुनिए और सही स्टेप लीजिए, तो आपने बिल्कुल सही स्टेप लिया एंड यू लुक सो यू नो कंटेंटेड राइट नाउ. तो ऐसे ही दोस्तों राफी जी की जिंदगी से आप सीखिए. तो आप भी जो इंटरव्यू सुन रहे हैं जल्दी से फोन लगाइए, इस नंबर को डायल कीजिए और अपनी जिंदगी बेहतर बनाइए 9052061008. अब आपके पास बहुत सारे हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स आते हैं राफी जी, इन एंड अराउंड सिटी, अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब जैसा आप इस्तेमाल करते हैं वर्ड, तो पूरे दुनिया से लोग आते हैं. तो जब आपके पास कोई स्टूडेंट आता है तो आपको देखकर पहली नजर में पता चल जाता होगा कि ये पर्सन ट्रेडर एक सही हो सकता है कि नहीं. तो कौन कौन सी क्वालिटीज आप देखते हैं एक स्टूडेंट में?
0: जी स्टेटिस्टिकली सबसे पहले तो हमारे पास जो डेटा है 5 साल का, माइसेल्फ के वुमेन आउट परफॉर्म मेन बाय अ बिग नंबर बिकॉज वुमेन दे kind of tend to make decisions rational, proper करती हैं. और उसके बाद तो वो especially older audience above 40 does better.
1: Okay.
0: ताकि उनके पास वो younger audience जैसा वो dopamine नहीं होती, ताकि वो they can have cool down. तो generally सारे ही make in कर लेते हैं. सिर्फ जो नहीं कर पाते वो ये हैं जिनमें थोड़ा greed का element हो या discipline की थोड़ी कमी है, पर otherwise most people make it no problem.
1: Wonderful. तो अब ये बताएं राफी जी की कितनी जल्दी उन्हें success का टेस्ट मिलता है जब वो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, और हम बात कर रहे हैं एकदम डूएबल सक्सेस, कोई एकदम से एग्जॉर्बिटेंटली हाई मनी की बात नहीं करें, अगर हम डूएबल लाइक फेयरली गुड अमाउंट की बात करें तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक?
0: See, couple of $100 a day within a month आपको अंडरस्टैंड हो जाता है. सो अब पहले आपकी क्लासेज होती हैं वीकेंड पे और उसके बाद फिर इन पर्सन या ऑनलाइन फ्लोर पे किसी मेंटर के साथ बिठा दिया जाता है. सो विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स यू शुड बी ऑन योर वे टू मेकिंग रीजनेबल मनी पार्ट टाइम एंड देन sky is the beginning, you know.
1: Wonderful, great. तो well, राफी जी यहाँ पर मैं नंबर अनाउंस कर दूं, अपने लिसनर से कहें इस नंबर को डायल करें और सैटरडे होने वाले दोपहर 1 बजे जो हार्ट ऑफ मिसिसागा में है सेमिनार अटेंड करने के लिए डायल करें और अपनी फ्री सीट अभी राइट अवे बुक करें. गो एंड चेक आउट, गो एंड मीट विद राफी जी, आस्क ऑल टन्स ऑफ क्वेश्चंस एंड आई एम श्योर यू विल टेक द राइट डिसीजन. 9052061008 9052061008 winlifetime.com. Thank you so much, Rafi ji. All the very best. Take care.
0: Thank you, ji. Take care.
1: Okay, ji. Sean Express. Simply good. Retro style. Old classics. ये सेगमेंट आप तक पहुंचा रहे हैं यश विंडोज एंड डोर्स. दोस्तों अगर आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स रीजनेबल प्राइस में, तो यश विंडोज एंड डोर्स सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ऑन्टारियो. खुद ही विंडोज एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और उनकी एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम ही प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है. नो मिडलमैन, नो कॉम्प्रोमाइज, सीधे फैक्ट्री से आपकी प्रॉपर्टी तक. स्टाइल, लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, सब कुछ माइंड ब्लोइंग. स्टाइल, सेफ्टी, सेविंग एक साथ. और अब सुनिए बड़ी खबर, फ्रेंचाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं. ज्वाइन द ग्रोइंग टीम ऑफ यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600. दैट्स 416-732-3600.

0: मस्ती की रेलगाड़ी पर आप लोगों का फिर से स्वागत है सीएमआर एफएम 101.3। और दोस्तों, मस्ती के साथ साथ पढ़ाई और काम भी चलता रहता है, यही मजेदार बात है। क्योंकि जिंदगी के जैसे अलग अलग पहलू होते हैं ना, ऐसे ही मस्ती की रेलगाड़ी के भी अलग अलग डिब्बे हैं। कभी हम पढ़ाई की बात करते हैं, कभी काम की, कभी मस्ती की, कभी एंटरटेनमेंट की, कभी डील्स की, कभी ऑफर्स की, सो वगैरह वगैरह। चलिए अब थोड़े सीरियस हो जाते हैं। और अपने बच्चों के लिए अगर आप चाहते हैं एक अच्छा करियर, तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि बच्चे की फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग रहे। तो अनिल कुमार खंडेलवाल, ये बहुत ही रेनाउंड नेम है हमारी कम्युनिटी का। एट द सेम टाइम ऑनलाइन हजारों वीडियोज हैं इनके, यूट्यूब पे हजारों वीडियोज हैं और हजारों लाखों लोग इनको फॉलो भी कर रहे हैं। और यहां पर भी बहुत सारे बच्चे हैं तो अपनी जिंदगी बेहतर बना रहे हैं, स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर। समर में बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं और अच्छी बात यह है कि डिस्काउंट मिल रहा है आपको मस्ती की रेलगाड़ी का नाम लेने पर। और सबसे पहले मैं यहां पर नंबर अनाउंस कर दूं अनिल कुमार जी का, 6479792791। अनिल कुमार जी नमस्कार, आपका वेलकम है।
1: नमस्कार, नमस्कार सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। जैसे आपने कहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, समर हॉलीडेज हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। इत्मीनान से आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, फाउंडेशंस बच्चों के स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे कि सितंबर में जब वो स्कूल खुले तो वो शुरू से ही अच्छे नंबर पाएं, अच्छा इंप्रेशन टीचर्स पे जमाएं और आगे तक इसको कंटिन्यू करें और अच्छे यूनिवर्सिटी में जहाँ चाहते हैं वो एडमिशन लें।
0: वेरी नाइस। तो अनिल कुमार जी, किस तरह से क्लासेस होती हैं आपकी? वीकली क्लासेस होती हैं या ट्वाइस इन अ वीक बच्चे अटेंड करते हैं? जनरल किस तरह का स्केड्यूल रहता है?
1: जनरली देखिए, अब इस समय आधा समर हॉलीडेज निकल चुके हैं। हम रिकमेंड करेंगे कि जो बच्चे हमें अब ज्वाइन कर रहे हैं वो ट्वाइस अ वीक ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। तो कम से कम एक 50% से ज्यादा कोर्स मैथ का कंप्लीट करा सकते हैं बच्चों को, जिससे कि उनको अच्छी फाउंडेशन मिले। ऑनलाइन क्लासेस होंगी, जैसे आपने कहा 10% डिस्काउंट होगा जो बच्चे आपके थ्रू हमारे पास आ रहे हैं।
0: वेरी नाइस। तो इसमें कौन कौन से ग्रेड्स की आप मदद कर सकते हैं अनिल कुमार जी?
1: ग्रेड 3 से लेके ग्रेड 12 तक के बच्चे हम लेते हैं।
0: ओह वाओ।
1: जो मिडिल जूनियर स्कूल के हैं उनके अगर फाउंडेशन शुरू से ही अच्छे बन जाएं तो आगे जाके वो बहुत ही अच्छा करते हैं। ग्रेड 11-12 में मैंने देखा है बच्चे काफी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, खासतौर से जिन्होंने आईबी प्रोग्राम्स या एपी प्रोग्राम्स लिए हैं, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन करिकुलम थोड़ा टफ हो जाता है।
0: सही बात।
1: तो और ये रश टाइम है, उनके मार्क्स इस समय यूनिवर्सिटी में काउंट होने हैं, तो हम किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते इस लेवल पे। तो अगर हम उन्हें थोड़ी सी गाइडेंस दे दें, ट्रेनिंग दे दें, फाउंडेशन क्लियर कर दें, तो जो उनका इरादा था आईवी और एपी कोर्स लेने का वो पूरा हो सकता है, हम उसे साकार बना सकते हैं। तो आप ये मौका ना जाने दें अपने हाथों से।
0: वंडरफुल अनिल कुमार जी। तो मैं चाहूंगी यहाँ पर आपका नंबर फिर से अनाउंस करूं, 6479792791। दोस्तों राइट अवे कॉल करें जी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। कुछ और कहना चाहेंगे? देन गो अहेड।
1: मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग बगैर सोचे समय और ना खराब करें, मेरे क्लासेस ज्वाइन कराएं बच्चों से। और ऑथेंटिसिटी ये है कि जो हमारे यूट्यूब चैनल है वो देख लें,
0: बिल्कुल
1: गूगल के रिव्यू देख लें, तो आपको आइडिया लग जाएगा। 400,000 सब्सक्राइबर्स हैं, किताबें मैंने लिखी हैं जो यूट्यूब चैनल पे चल रही हैं। तो आप आज किताबें अमेजोन पे हैं मेरी 6।
0: अच्छा।
1: तो आप कॉल करें। हाँ, 6 किताबें मेरी अमेजोन में पब्लिश हो चुकी हैं, इंक्लूडिंग कैलकुलस की किताब जो कि 2 महीने पहले निकली है।
0: जी जी।
1: तो 6479792791 पे कॉल करें।
0: 6479792791। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे फिर मुलाकात होती है। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।
1: थैंक यू, ऑल द बेस्ट
0: जी। और वेल दोस्तों, यहाँ पर हम ऐड करते चले देओल ट्रैवल के लेटेस्ट डील्स आ चुकी हैं। वन वे सितंबर के महीने में एक बहुत ही स्पेशल फेयर है एडमिंटन टू अमृतसर स्टार्टिंग फ्रॉम $1,070। और इसके अलावा एक राउंड ट्रिप लगा है सितंबर टू अक्टूबर स्टार्टिंग फ्रॉम $1,850 एडमिंटन टू अमृतसर। लिमिटेड सीट्स हैं, आप राइट अवे बुक करें। वर्ल्ड में कहीं भी जाना हो एक बार जरूर बात करें देओल ट्रैवल, एटोबिको एंड ब्रैम्पटन, टू लोकेशंस टू सर्व यू, 905-588-5100 एंड 905-588-4200, 588-5100 एंड 588-4200। आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
2: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इंपॉर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $120 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.79% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
0: Great investment opportunities available. Oshawa mein 4 bedrooms and 4 washrooms ka town home. Brampton mein Chinguzi aur Wanless ke paas 3 bedrooms ka semi-detached home with 1 bedroom ki basement apartment with separate entrance. And dusra ghar 5 bedrooms ka detached home with 3 bedrooms ki legal basement with separate entrance. All the properties are rented. For more information, call 647-309-5100. 647-309-5100.
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: अगर आप लंबे वक्त से किसी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं और एक नेचुरल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन की तलाश में हैं, तो आइए सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर पर। यहाँ खानदानी परंपरा के अनुसार नब्ज देखकर कई तरह की बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से किया जाता है। इलाज से बहुत सारे लोगों को राहत और फायदा मिला है, चाहे एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम्स, गैस, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस, सोराइसिस या फिर किसी अन्य हेल्थ इश्यू की बात हो, बीमारियों का जड़ से इलाज करने में मदद मिलती है। आज ही कॉल करें वैद्य रत्न पीवी राज को, लोकेटेड इन ब्रैम्पटन, 6473278111, 6473278111।
2: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ। ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स। संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232,
1: 416-890-3232। ध्यान से सुनिए, आपके लिए एक अच्छी खबर है। गवर्नमेंट आपको स्टडी करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड कर रही है, जो ग्रांट और लोन के कॉम्बिनेशन में मिलेगी। अगर आप पीआर या कनेडियन सिटीजन हैं, आपकी मिनिमम एजुकेशन ग्रेड 12 है, नो बैंक्रप्सी और क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। नो क्रेडिट चेक, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आप ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं। ग्रांट और लोन का कॉम्बिनेशन 31 जुलाई तक अवेलेबल है। देर ना करें, आज ही कॉल करें 416-315-2020, दैट्स 416-315-2020।
3: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
4: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स।
3: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइन और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ।
4: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन।
3: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल।
1: हैशटैग होम्स एंड राहुल कश्यप आपके लिए लेकर आए हैं ब्रैम्पटन एंड कैलेडन बॉर्डर पर एट मेफील्ड एंड गोर फ्री होल्ड टाउन्स फ्रॉम मिड 700s, सेमीज फ्रॉम मिड 800s एंड डिटैच्ड होम्स फ्रॉम मिड 900s। मास्टर प्लान कम्युनिटी ऑफ 2500 होम्स विद क्रिकेट पिच, टेनिस, बास्केटबॉल एंड पिकल बॉल कोर्ट्स, डॉग पार्क एंड किड्स स्प्लैश पैड्स एज नेबरहुड अमेनिटीज। ओनली 10% डिपॉजिट ओवर 365 डेज एंड क्लोजिंग लेटर 2027 टू अर्ली 2028. To book your lots, call Rahul Kashyap 647-993-4844, 647-993-4844.
5: Another Don Clean with the Don Ducks.
6: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
7: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
6: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
7: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
6: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
7: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
6: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
5: Dawn Platinum, the better grease getter.
8: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियाँ इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808।
9: भाई मैनू कहना भी पैना है, तुहानू सुनना भी पैना है। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
10: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
11: ਫॉर ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। Kanda Optical, the name you can trust.
12: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
13: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
12: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
14: TD Mosaic Festival is back for 21st year, July 31st and August 1st at Celebration Square, Mississauga, the biggest South Asian artist lineup of the year. Sufi Queen Sanam Marvi from Pakistan, Indian Idol Season 14 winner Vaibhav Gupta from India, Danny to Dublin from Vancouver, Shalom Xavier's Fusion, Ali Kazmi, Bollywood Dance School, Canada, Jadu Entertainment, Rising Star Finalists, and the 2026 Star. Popular South Asian restaurants and food trucks, Vendors Bazaar, Visual Arts, Media Arts, Free Children Arts and Balloon Making Workshops, Children's Mardi Gras Parade with Marching Band. Completely free admission for the whole family. For more information, visit mosaicfest.com.
1: Sean Express, Gano ki sweet dish. वेल दोस्तों, एक बार फिर से आपका वेलकम करती है शालिनी मस्ती की रेलगाड़ी पर, और गाने की बहुत ही ज़्यादा स्वीट डिश है विच आई एब्सोल्युटली लव। और आज जो है बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिन्हें सुनकर मानो जैसे वक्त ठहर जाता है। एक एक इनका जो सुर है ना, वो दिल को छू जाता है। हर बारिश में रूहानी एहसास हमें होता है। और आज हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगिंग के एक ऐसे महान सिंगर की बात करेंगे जिनकी गायकी ने दुनिया भर में भारतीय संगीत का जो परचम है वो लहरा दिया। जी हाँ, हम याद करेंगे आज महान शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान जी को। आज मना रहे हैं वो अपना बर्थडे 1 जुलाई 1968 को। उत्तर प्रदेश के बदायूं में इनका जन्म हुआ था और प्रसिद्ध रामपुर सहसवान घराना से ये ताल्लुक रखते थे। और बड़े ही कम उम्र में इन्होंने देश के बड़े बहुत बड़े बड़े म्यूजिक जो कॉन्सर्ट्स थे उन्होंने गाना शुरू कर दिया। उनकी ख्याल गायकी, तराना, ठुमरी और भजन हर एक शैली में गजब की पकड़ थी। तो उनको ट्रिब्यूट देते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से गाने के साथ। और ये गाना लिया है हमने फ्रॉम द फिल्म जब वी मेट। इसकी चंद लाइनें मैं अटेम्प्ट करना चाहूँगी क्योंकि इतने महान गायक ने गाना गाया है तो ऐसे गानों को अटेम्प्ट करने में भी ज़रा डर लगता है, लेकिन डेफिनेटली चंद लाइनें मेरी तरफ से आप लोगों की नज़र। खैर, बाहर बरसात तो नहीं हो रही लेकिन मौसम काफ़ी सुहावना है, तो दिस गाना इज़ एब्सोल्युटली अप्रोप्रिएट फॉर दिस वेदर।

0: हैशटैग होम्स एंड राहुल कश्यप आपके लिए लेकर आए हैं ब्रैम्पटन एंड कैलेडन बॉर्डर पर एट मेफील्ड एंड गोर फ्री होल्ड टाउन्स फ्रॉम मिड 700s, सेमीज फ्रॉम मिड 800s एंड डिटैच्ड होम्स फ्रॉम मिड 900s. मास्टर प्लान कम्युनिटी ऑफ 2500 होम्स विद क्रिकेट पिच, टेनिस, बास्केटबॉल एंड पिकल बॉल कोर्ट्स, डॉग पार्क एंड किड्स स्प्लैश पैड्स एज नेबरहुड अमेनिटीज. ओनली 10% डिपॉजिट ओवर 365 डेज एंड क्लोजिंग लेटर 2027 टू अर्ली 2028. To book your lots, call Rahul Kashyap 647-993-4844. 647-993-4844.
1: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए. टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार, ये टाइम है टोयोटा का. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स SR फ्रॉम $154 वीकली फॉर 36 months एट 3.99% APR विद $5,800 डाउन. हाइब्रिड अवेलेबल. विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today. We'll be right back.

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Nation. Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपरविजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम, संजीव पुरी।
3: संजीव शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है।
2: यू विल गेट फुल रिफंड इफ सुपरविजा इज डिक्लाइंड।
3: इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232-890-3232।
4: अगर आप लंबे वक्त से किसी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं और एक नेचुरल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन की तलाश में हैं, तो आइए सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर पर। यहाँ खानदानी परंपरा के अनुसार नब्ज देखकर कई तरह की बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से किया जाता है। इलाज से बहुत सारे लोगों को राहत और फायदा मिला है, चाहे एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम्स, गैस, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस, सोराइसिस या फिर किसी अन्य हेल्थ इश्यू की बात हो, बीमारियों का जड़ से इलाज करने में मदद मिलती है। आज ही कॉल करें वैद्य रत्न पीवी राज को, लोकेटेड इन ब्रैम्पटन, 6473278111, 6473278111। ध्यान से सुनिए, आपके लिए एक अच्छी खबर है। गवर्नमेंट आपको स्टडी करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड कर रही है, जो ग्रांट और लोन के कॉम्बिनेशन में मिलेगी। अगर आप PR या कनेडियन सिटीजन हैं, आपकी मिनिमम एजुकेशन ग्रेड 12 है, नो बैंक्रप्सी और क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। नो क्रेडिट चेक, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आप ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं। ग्रांट और लोन का कॉम्बिनेशन 31 जुलाई तक अवेलेबल है। देर ना करें, आज ही कॉल करें 416-315-2020, that's 416-315-2020.
5: TD Mosaic Festival is back for 21st year, July 31st and August 1st at Celebration Square, Mississauga, the biggest South Asian artist lineup of the year. Sufi Queen Sanam Marvi from Pakistan, Indian Idol Season 14 winner Vaibhav Gupta from India, Delhi to Dublin from Vancouver, Shalom Xavier's Fusion, Ali Kazmi, Bollywood Dance School Canada, Jadoo Entertainment, Rising Star Finalists, and the 2026 Star. Popular South Asian restaurants and food trucks, Vendors Bazaar, Visual Arts, Media Arts, Free Children Arts and Balloon Making Workshops, Children's Mardi Gras Parade with Marching Band. Completely free admission for the whole family. For more information, visit mosaicfest.com.
6: Another Dawn Clean with the Dawn Ducks.
7: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
8: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
7: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
8: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
7: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
8: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
7: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
6: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी लार्जेस्ट ऑनिंग सप्लायर हैं कनाडा वाइड। घर या बिजनेस के लिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी, रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स अगर आपको चाहिए तो आज ही कांटेक्ट कीजिए। ब्रैम्पटन का बड़ा ट्रस्टेड नाम है रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी। फ्री बारबेक्यू मिल रहा है विद एनी कैनोपी और ऑनिंग इंस्टॉल्ड। टॉप क्वालिटी मटीरियल्स, स्टाइलिश मॉडर्न डिजाइंस, कंपेटिटिव प्राइसिंग। चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, हर सॉल्यूशन मिलता है बड़े प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन के साथ। 24 रीगन रोड, ब्रैम्पटन। कॉल कीजिए 416-831-4790, 416-831-4790।
9: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
3: वेलकम बैक दोस्तों, मस्ती की रेलगाड़ी पर आपका फिर से शालिनी वेलकम करती है। एंड गेस हु वी हैव विद अस फाइनली, मुझे लगता है कि पूरे टोरंटो में ना मोस्ट वांटेड मैन ऑफ टोरंटो की तस्वीरें लग गई हैं, क्योंकि राहुल जी इतने बिजी हैं कि बस वो नहीं मिल पाता उनको वक्त, लेकिन दिल से आप लोगों को बहुत मिस करते हैं। आई एम श्योर आप लोग भी मिस करते होंगे, क्योंकि आपके लिए जो डील्स लेकर आते हैं ना, तो वो डील्स लाने में राहुल जी को पूरा 1 वीक का वक्त लगता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आज जो एक ऑफर है ना, जो डील है, मैं मतलब अपने आप को रोक नहीं पा रही, क्योंकि ये जो डील है 0% पे मिल रही है, और कोई बेकार डील नहीं है, ये एक गोल्ड माइन है जो आपको 0% पे मिलेगी। क्या है उसके लिए आप ध्यान से सुनिएगा हमारा शो। फिलहाल बता दूं, #homes के ब्रोकर ऑफ रेकर्ड हैं राहुल कश्यप जी, हु इज विद अस इन स्टूडियो। नंबर बता दूं जिस पर आपको कॉल करना है, टेक्स्ट करना है, 6479934844 6479934844। राहुल जी, वी आर अगेन कलर कोऑर्डिनेटेड,
10: वी डोंट प्लान इट, बट आई थिंक ये हो जाता है, सो
3: थैंक यू सो मच।
10: आई थिंक नेक्स्ट टाइम मेबी वी शुड प्लान इट फॉर श्योर।
3: तो बहुत ही अच्छा, आज का मौसम भी बाहर अच्छा है, इतनी गर्मी के बाद थोड़ी राहत है। और आपके पास भी मुझे पता है कुछ खबर है रियल एस्टेट के हवाले से, कि कुछ रिलीफ काफी बड़ा है।
10: जो आज इवन कुछ ही घंटे पहले एक रिपोर्ट आई है ब्लूमबर्ग में, BNN ब्लूमबर्ग में इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है कि जो कॉन्डो मार्केट है, राइट, इट्स स्टार्टिंग टू टर्न अ बिट ऑफ अ कॉर्नर। तो थोड़ा एक रिलीफ जो कॉन्डो मार्केट को चाहिए, स्पेशली GTA के अंदर, टोरंटो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, यू नो, वहां पे वो थोड़ा रिलीफ आया है। उसके दो तीन रीजंस ये भी हैं, बायर्स आर शोइंग मोर कॉन्फिडेंस, देयर आर सम अमेजिंग डील्स इन द मार्केट दैट वी कीप ब्रिंगिंग इन द मार्केट एज वेल। और उसी के साथ साथ जो अभी जो नई रिपोर्ट आई है अबाउट 273 condominium apartments, that includes your low to high rise units,
3: I see,
10: stacked townhomes, they were sold across GTA in the month of June.
3: Okay.
10: So 273 units in condominium market, right?
3: Amazing.
10: That's a big number. And the reason why it's a big number, because it's a moderate increase from June of 2025.
3: Achha. Kya baat hai?
10: Abhi bhi this number is about 85% less.
3: Ji.
10: Right? So if you look at a 10-year average, उस हिसाब से ये अभी 85% below that average है,
3: ठीक है,
10: जो होना चाहिए. So that kind of shows there is still a lot of potential.
3: जी.
10: But now seeing the way the condo market is turning around, I think this is still a very, very good opportunity. और जैसे आपने एक opportunity की बात करी है, we're going to talk about it at the end of the show.
3: यानी दिल्ली दूर है, लेकिन इतनी दूर भी नहीं. हम थोड़े-थोड़े उसके करीब आते जा रहे हैं.
10: बिल्कुल, बिल्कुल. And the other thing we have to realize, right? We keep saying starting of the year, भी यही बात होती थी कि what's going to happen in the market this year. It has been a challenging market for a lot of, especially sellers. A lot of agents are also finding it difficult for their clients. But I think when it comes to the buyers, chahe aap first time home buyers hain, ya you're looking, you know, as a second, third home, even as an investment property.
3: Yes.
10: There are a lot of opportunities coming up.
3: Okay.
10: We're also bringing in something fantastic, which we're going to briefly touch on so that people can realize there's still a lot of money to be made.
3: Oh, wow.
10: Right?
3: Beautiful.
10: But that being said, अभी ये जो हम थोड़ी पॉजिटिविटी देख रहे हैं उसका एक मेजर रीजन है द HST रीबेट बेनिफिट।
3: ठीक है,
10: तो अब वो जो बेनिफिट हो रहा है HST का, दैट इफ यू आर फर्स्ट टाइम होम बायर और इवन अ रेगुलर बायर, इफ यू बाइंग इनटू अ न्यू बिल्ड,
3: राइट,
10: चाहे वो मूव इन रेडी इन्वेंटरी हो बिल्डर की या प्री कंस्ट्रक्शन के अंदर बाय करते हैं विद इन द टाइम फ्रेम दैट्स अलाउड बाय द गवर्नमेंट नाउ, दैट्स अंटिल मार्च ऑफ 2027। सो वो एक टाइमलाइन पीरियड है। तो अभी भी जो हमारे लिसनर्स हैं या क्लाइंट्स हैं, वी कीप गेटिंग कॉल्स फ्रॉम देम, दे आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट whether this is the right time or not. I personally believe we still have about 3 to 4 months. I think about a quarter and a half.
3: Achha.
10: जहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी deals मिलने वाली हैं.
3: Okay, very nice.
10: So 3 to 4 months की वो window थी, because उसके बाद क्या होगा? Deals are still going to be there.
3: बिल्कुल.
10: They're going to be, so right now we make a great deals, then it's going to become good deals.
3: Yes.
10: So that's the difference, right? अगर आप, let's say for example, 5-10,000 भी आपका price बढ़ गया, for example, उस deal के ऊपर. In my opinion, I don't think that's a good, that's a great deal anymore.
3: That's right.
10: That's a good deal, right?
3: Bilkul.
10: You're still getting relatively lower than the market price.
3: Yes.
10: But if today you have means and you have the requirement that you can take take that position and you can go and buy, I would say definitely think about it.
3: बिल्कुल, इंतजार ना करें, बहुत लंबा इंतजार करते ना कुछ लोग की
11: कल देखेंगे, कल थोड़ा और बेटर हो जाए, तो वो जो लालच होता है ना कि थोड़ा और थोड़े और के चक्कर में जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलता. क्योंकि इस वक्त मुझे जो लग रहा है राहुल जी, ये जो डील्स हैं ये मतलब मुझे नहीं लगता मैंने रियल एस्टेट में अभी से पहले कभी सुनी हुई होंगी, द डील्स दैट वी टॉक अबाउट.
10: एग्जैक्टली. एंड अगेन आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 10 इयर्स. सो इवन 10 साल के जो मेरे छोटा सा करियर है उसके अंदर भी इफ आई लुक बैक एट इट आई हैव नेवर सीन दीस प्राइस पॉइंट्स और दीस काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस, चाहे वो क्लाइंट्स के साथ हों, सेलर्स के साथ हों, बिल्डर्स के साथ हों. एंड द रीजन व्हाई वी आर फाइंडिंग दिस इज बिकॉज द मार्केट दैट वी आर इन टुडे, राइट? एंड आई विल गिव यू वन नंबर दैट्स गोना काइंड ऑफ एन आई ओपनर.
11: ओके.
10: राइट नाउ द न्यू होम इन्वेंटरी दैट्स राइजिंग, इट्स up to 18,888 units in the month of June.
11: Seriously?
10: That's the inventory level of That's new homes, right? Achha. New home supply. 18,888. Uh-huh. Just may say 12,579 are your condominium apartments. That includes your condos, stack town homes, mid-rise, high-rise, all that combined. That's okay. about almost 12,579 units.
11: Wow.
10: And 6,300 plus single family homes.
11: Interesting. Right?
10: So this is the numbers.
11: Yeah.
10: Now that represents about 36 months of inventory.
11: Okay.
10: That's very high.
11: Right.
10: Right. This is the reason why I say this is at the time. Agar ye inventory thodi kam hone lagi, this 36 month supply starts going down.
11: Bilkul.
10: There may be still opportunities, obviously, because opportunities are always going to be there. Bilkul. Chahe wo high market thi, low market thi, tab bhi opportunities thi logon ke paas. Lekin agar ye number thode kam hone lage, you're going to start seeing the great deals becoming good deals, and then eventually, you know, balance things itself out.
11: That's right. Yeah. Absolutely. Very interesting. To well, dosto, ye supply aur demand ke beech jo ye hai na rassa kashi, wo hamesha chalti रहती है. तो जब तक सप्लाई ज्यादा है तब तक आप उसका फायदा उठा लें. कहीं डिमांड ज्यादा हो गई और सप्लाई थोड़ी सी कम रह गई तो सिचुएशन बिकम्स यू नो लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट टू अफोर्ड. तो राइट नाउ जो राहुल जी के पास जो स्टफ है, जो आपको बताएंगे जो डील्स हैं, अब हम उनको अनरैप करने जा रहे हैं एक के बाद एक. तो जैसा बताया कि रियल एस्टेट इज शोइंग पॉजिटिव साइंस, सो लेट्स टेक एडवांटेज ऑफ इट. नंबर है 6479934844. आप हमें लाइव देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया चैनल पर भी. अ वेरी गुड आफ्टरनून once again to all the viewers.
10: Jee, bilkul. One of the projects that we're going to talk about that we're bringing in now, this is coming up in Ottawa.
11: Okay.
10: Aur iska bahut hi jald launch hone wala hai. These are going to be stack town homes.
11: Theek hai.
10: And they're starting from high $200,000.
11: My goodness, seriously?
10: That's right. Wow. High 200,000 se aapko ye Ottawa mein milne wale hain. And again,
11: nice.
10: Up to 3 bedrooms, up to 2 bathrooms. Dedicated one-car parking will be included.
11: Really?
10: These are your two-story. They're not your single-story towns either.
11: Achha.
10: Even though you stack them, but they're going to be two-story towns.
11: Great.
10: And they're going to have units with the windows all throughout. So it's not going to feel like, aap, you know, claustrophobic. Nahin hoga aapko, right? And a very low maintenance fee.
11: Achha.
10: And right now we're still working on the numbers. But I can tell you, even if you're buying this as investment property, again, number is high 200,000.
11: Okay.
10: Right?
11: Theek hai.
10: With the rental rates that are going there for something like this, you're looking at about $2,200 to $2,400 rental a month.
11: Amazing. That's great.
10: Now do your math, guys. Even with variable rates or fixed rates, you're looking at a positive cash flow.
11: Since day one. Wow.
10: So this is something that we're bringing in. Again, extended deposit structure hone wala iska. These are the townhomes that you should consider.
11: Kya
10: if,
11: baat hai?
10: A, you're living in Ottawa. We're going to get it for you.
11: That's right.
10: If you're looking to buy as an investment, you should definitely consider it. We have sold a lot in this neighborhood earlier as well.
11: Okay.
10: This is an opportunity. This price point, I never thought I'm going to see this. We have seen more than this price.
11: बिल्कुल.
10: Right?
11: और ये तो कॉन्डोज की प्राइस हम बात करते हैं कि अगर बहुत ही ज्यादा कहीं से कोई डील मिल भी गई तो कोई स्टूडियो अपार्टमेंट है छोटा सा और वो भी प्राइम एरिया में नहीं है, वो आपको मे बी 3-3.5 में मिल जाए. बट टू एंड हाफ
10: आई मीन लेस देन 300,000
11: में टाउन होम मिलना.
10: Yeah.
11: Exceptionally good deal.
10: So first time home buyers, this checks off, right? If you're even as an investor, like I said, agar aap investment ke hisab se bhi dekh rahe hain, you want a positive cash flow investment, I don't think I can find you a better deal right now.
11: Jo
10: aapko 3 lakh ke niche milne wali hai in a very very prime neighborhood. High rental yield wahan pe hone wala hai.
11: Kya baat hai?
10: 2200 se 2300 ki wahan pe average hai aaj ki date mein. So even if you do the math,
11: 6-7 lakh ka aap condo loge to itne mein
10: rental chahta hai. Negative cash flow nikalta hai uske andar. So now do your math. Everybody is very smart.
11: Sahi baat.
10: Google pe jaye, just put in the number. If you're buying it for less than $300,000, and I'm saying, when I say less than $300,000, it is less than $300,000.
11: Wonderful.
10: So you consider that amount.
11: Yes.
10: एंड उसके ऊपर आप डाउन पेमेंट रखें, चाहे आप 10 रखें या 20% रखें, डू योर मैथ एंड यू विल फिगर दिस आउट कि अगर आपको $2,200-$2,300 मिलने वाला है इसके ऊपर,
11: वेरी नाइस,
10: दैट्स वेयर यू स्टैंड. सो इन्वेस्टर्स, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू कंसीडर.
11: ब्यूटीफुल.
10: फर्स्ट टाइम होम बायर्स, there's an opportunity to consider anyways, because again, extended deposit structure hoga, low deposit structure hoga iske upar, aur agar 3 lakh ke niche aapko unit milne wala hai, and if the Ottawa region is your area,
11: bilkul,
10: you should definitely consider this as well.
11: Wonderful, wonderful, great. So 647-993-4844 hai number, 647-993-4844, and we save the best for the last, or in fact best of the best offer hai कोर डाउन टाउन एरिया में. और ऑफर ऐसा है जो मुझे तो बिलीव हुआ नहीं जब राहुल जी ने कहा, मैंने कहा नहीं आज मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ. तो राहुल जी ने कहा मजाक नहीं, ये सीरियस बात है.
10: जी एब्सोल्युटली, इट इज अ सीरियस थिंग, बिकॉज़ डाउनटाउन कोर, व्हेन वी टॉक अबाउट इट, दिस इज द हार्ट, एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट, वॉकिंग डिस्टेंस टू एवरीथिंग, रेस्टोरेंट्स, नेम इट, यू नो, रॉजर्स सेंटर, सीएन टावर, स्कोशिबैंक, एवरीथिंग इज वॉकिंग डिस्टेंस.
11: वंडरफुल.
10: दिस इज अबाउट अ 2 year old बिल्डिंग, टू बेडरूम टू वॉशरूम का यूनिट है यहाँ पे.
11: अच्छा.
10: एंड दिस ऑफर इज ओनली फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स.
11: ठीक है.
10: And buyers that are not being represented by anybody else. We're not trying to solicit anybody that's already under representation. This is strictly for people who are not represented by any other agents.
11: Okay.
10: First time home buyers only. And this offer is, you can get this condo for zero down.
11: Zero down in the heart of downtown.
10: In the heart of Toronto, yeah.
11: Heart of downtown may zero down. Amazing.
10: That's it.
11: Rhymes.
10: So it's a 2-bedroom unit.
11: Okay.
10: We can show you the unit, have a look at it. And like I said, you can buy this unit with zero down.
11: Wow.
10: Now, how that's going to work out, all you have to do is give us a call.
11: Beautiful. It's going to be as easy as that.
10: It's as easy as that, yeah. Even this deal, when I looked at it, I'm like, I wish I was a first-time home buyer. So shayad main khud hi le leta. But unfortunately, I'm not a first-time home buyer, so it's not in my range. But again, if you're a first-time home buyer, I think this is a fantastic opportunity.
11: That's great.
10: Aap downtown ke kol mein, 2-bedroom, 2-washroom, relatively brand new unit, like 200 purana unit hai. So aap usme lena chahte hain, and it's a very high-end building.
11: Wow.
10: And it's a very known building as well.
11: Achha.
10: Those are the few hints I can give. Baki,
11: you need to call.
10: When our listeners will give us a call, then we'll figure this out and we'll let them know for sure. Yeah.
11: 647-993-4844 par dosto call kar lein. Downtown Toronto mein zero down pe agar aap kuch khareedna chahte hain, Ottawa mein lena chahte hain town home under 300,000, jahan par aapke rentals aapko milenge 2,500 per month. So you cannot go wrong with these investments. 647-993-4844 hai number. Rahul ji, anything else would you like to add?
10: That's it, Shalini, for this week. But again, we're working very hard on bringing some amazing opportunities.
11: Okay.
10: Abhi jaise main last week ek bari bataya tha, Brampton mein, we're bringing something very, very amazing in
11: Achha.
10: A phenomenal price point. So I'll just give a brief hint right now.
11: Okay.
10: Townhomes in Brampton, starting in the 600,000 range.
11: Seriously?
10: That's coming up very soon. Stay tuned for that.
11: Very nice.
10: That's all I can tell you today. But there is a lot more in the pipeline. We're also going to be launching townhomes that are coming up in Markham.
11: Take
10: it. So we're bringing that opportunity as well next week. We're also bringing some condominium opportunities as well.
11: Take it.
10: These are going to be move-in ready inventory. And they're going to be priced anywhere between high 200,000. Going all the way up to 600,000.
11: Wow.
10: And it's going to be a deal that's never been heard before.
11: Beautiful. तो वेल दोस्तों, अब आप बस तैयार हो जाइए, अपनी सीट की बेल्ट्स बांध लीजिए टाइटली, क्योंकि आप जो है अपने इन्वेस्टमेंट के साथ यू आर गोइंग टू फ्लाई हाई इन स्काई, क्योंकि ऐसे ही आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगा. सो वेल, नंबर नोट करें, 647-993-4844, 647-993-4844. राहुल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी.
10: जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच,
11: टेक केयर, ऑल द बेस्ट. तो वेल दोस्तों, अब आपको अलविदा कहने का वक्त आ चुका है, और ये वादा रहा कि कल फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे मस्ती की रेलगाड़ी पर. शो के बाद डायरेक्ट नंबर 416-569-7812, 416-569-7812, और मस्कारा के साथ छोड़े जाते हैं सुपर हिट ट्रैक मस्ती की रेलगाड़ी पर. नमस्कार.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: रेडियो वॉइस एक ऐसा रेडियो शो जो सुने आपकी बात,
3: जो हो आपके दिल के करीब,
2: जो मनाए आपके त्योहार,
3: रखे चुटकुले तैयार,
2: जहाँ पर मिले आपके सवालों के जवाब,
3: जहाँ मचे शायरी की धूम,
2: जो दे खबरें अप टू डेट
3: और दे ढेरों इनाम।
2: आपका अपना रेडियो शो रेडियो वॉइस
3: जतिन के संग
2: ऑन CMR 101.3 FM। ट्यून इन मंडे टू फ्राइडे और लॉग ऑन टू CMR.FM।
4: The views and information shared by the guests and their ads are their own and shall not be construed as advice from Radio Voice hosts. We make no recommendations or endorsements for radio show programs, products or experiences mentioned on air. Personal views expressed by the guests, ads, interviews will always be presented as such. No liability, explicit or implied, shall be extended to Radio Voice or the show hosts whose words and or opinions appear on the show.

0: बात है, उलझन में लग रही हो?
1: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
0: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009।
1: डॉक्टर नील गज्जर, 735 ट्वीन एवेन्यू स्वीट 16 मिसिसागा, कॉल 289-401-0009।

0: incentives, complimentary breakfast and lunch 26 July 2026 को होने जा रहा है.
1: बहुत सारे incentives जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं है.
0: लिमिटेड सीट्स हैं, आज ही रजिस्टर कीजिए विद न्यू जेन रियल्टी एक्सपर्ट 6472994757 6472994757 teamsabarwal.com.
2: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश. खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट. 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 9054586808.
3: Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
4: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
3: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
5: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
6: वक्त जो है वो बदल चुका था. रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था. ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं. और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का ताता शुरू हुआ उससे पूरे FM रेडियो का समीकरण ही बदल गया. एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545.

0: डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, फैमिली डेंटिस्ट, केयरिंग फॉर ऑल योर डेंटल नीड्स, एक्सेप्ट कर रहे हैं पेशेंट्स जिनके पास CDCP यानी कि कैनेडियन डेंटल केयर प्लान है। अगर आपने ये प्लान रिसीव नहीं किया है और आप एलिजिबल है तो इस प्लान में एनरोल होने के लिए विजिट करें CDCP वेबसाइट। CDCP की वेबसाइट विजिट करके एनरोल हो जाइए और कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट का। बेंद्र भाइयों, आपकी अपॉइंटमेंट अभी से बुक करवा ले 905-564-2021, 905-564-2021, डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, आपके फैमिली डेंटिस्ट।
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Just specialized in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
5: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
6: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
7: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम,
8: संजीव। शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है। इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232।
9: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इम्पोर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $120 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.79% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
10: प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 416-660-8545।

0: क्या आप शेरों, हाथियों और चीतों को बिल्कुल करीब से देखना चाहते हैं? तो पहुंचिए अफ्रीकन लायन सफारी बिंदर भाइयों कनाडा के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ एडवेंचर पर। पहुंचना होगा 1386 कूपर रोड कैम्ब्रिज। आज ही टिकट बुक करें lionsafari.com पर। ये हिड वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।
1: रेड्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान ना

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi, high end da saman mile sasta.
2: डोसा खाने का मन है तो चलिए गुरु लक्ष्मी 7070 सेंट बारबरा बुलेवर्ड यूनिट नंबर 44-50 मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को लंच 12-3, डिनर 5-10। थर्सडे से संडे लंच 12-3, डिनर 5-10। वेनसडे को बंद लेकिन लॉन्ग वीकेंड्स पर खुले रहेंगे। कॉल करें 905-795-2299, 905-795-2299 या विजिट करें gurulakshmi.com। गुरु लक्ष्मी, स्वाद सेवा और साउथ इंडिया का असली तड़का।
3: पहला घर खरीदना है या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, इस सेमिनार में होंगे मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, लीगल एक्सपर्ट्स एंड पीके सबरवाल। एंजॉय एक्सक्लूसिव इंसेंटिव्स, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट एंड लंच 26 जुलाई 2026 को होने जा रहा है।
4: बहुत सारे इंसेंटिव्स जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं है।
3: लिमिटेड सीट्स हैं, आज ही रजिस्टर कीजिए विद न्यू जेन रियल्टी एक्सपर्ट 647-299-4757, 647-299-4757, teamsabarwal.com।

0: bye.
1: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
2: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
1: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
3: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
4: प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर। एडवर्टाइजिंग, इंटरव्यूज, टॉक शोज, इन तीन स्तंभों के लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।

0: Imagine over 1,000 exotic birds and animals roaming wild. Come face to face with lions and nature's most amazing creatures, all closer than you'd ever imagined. African Lion Safari, Canada's original safari adventure. African
1: Lion Safari. Get closer and begin your adventure today at lionsafari.com.
2: Say what? पहला घर खरीदना है या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, इस सेमिनार में होंगे मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, लीगल एक्सपर्ट्स एंड पीके सबरवाल. एंजॉय एक्सक्लूसिव इंसेंटिव्स, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट एंड लंच. 26 जुलाई 2026 को होने जा रहा है.
3: बहुत सारे इंसेंटिव्स जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं है.
2: लिमिटेड सीट्स हैं, आज ही रजिस्टर कीजिए विद न्यू जेन रियल्टी एक्सपर्ट. 6472994757, 6472994757, teamsabarwal.com.
4: Real estate ka koi sawal, Team Sabarwal.
5: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232, 416-890-3232.
6: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
7: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
8: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर.
9: यहाँ से आपको ठाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा. 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 और 10, ब्रैम्पटन. टेलीफोन 905-799-9400.
10: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर.
11: Another Don Clean with the Don Ducks.
12: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
13: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
12: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
13: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
12: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
13: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
12: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
11: Dawn Platinum, the better grease getter.
14: वक्त जो है वो बदल चुका था. रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना, पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था. ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे, पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं. और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का ताता शुरू हुआ, उससे पूरे एफएम रेडियो का समीकरण ही बदल गया. एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545.

0: डोसा खाने का मन है तो चलिए गुरु लक्ष्मी, 7070 सेंट बारबरा बुलेवर्ड, यूनिट नंबर 44-50, मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को लंच 12-3, डिनर 5-10। थर्सडे से संडे लंच 12-3, डिनर 5-10। वेनसडे को बंद लेकिन लॉन्ग वीकेंड्स पर खुले रहेंगे। कॉल करें 905-795-2299, 905-795-2299, या विजिट करें gurulakshmi.com। गुरु लक्ष्मी, स्वाद सेवा और साउथ इंडियन का असली तड़का।
1: रेड्स फर्नीचर का यह मैसेज जरा ध्यान ना।

0: Meet Rohit Dayasman at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi, high end da saman mile sasta.
2: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए. टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार. ये टाइम है टोयोटा का. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स SR फ्रॉम $154 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 3.99% APR विद $5,800 डाउन. हाइब्रिड अवेलेबल. विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
3: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
4: उलझन ही तो है. एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है. समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो. बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है. और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए. ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009.
4: Dr. Neil Gajar, 735 Tween Avenue, Suite 16, Mississauga. Call 289-401-0009.
5: Say wow! अपना पहला घर खरीदना है या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है? इस सेमिनार में होंगे मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, लीगल एक्सपर्ट्स एंड पीके सबरवाल. एंजॉय एक्सक्लूसिव इंसेंटिव्स, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट एंड लंच. 26 जुलाई 2026 को होने जा रहा है.
6: बहुत सारे इंसेंटिव्स जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं है.
5: लिमिटेड सीट्स हैं, आज ही रजिस्टर कीजिए विद न्यू जेन रियल्टी एक्सपर्ट. 647-299-4757 647-299-4757 teamsabarwal.com.
7: Real estate ka koi sawal, Team Sabarwal.
8: Pratishtha, Parampara aur Anushasan, in teen stambhon ke alawa रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 416-660-8545.

And here we meet again on the day which is dedicated to that part of our body जिसकी अक्सर हम सुनते ही नहीं. और फिर ऐसे में बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें कह के ताना मार देते हैं कि दिमाग में इसके ना भूसा भरा है. Yes, I'm talking about our brains, दिमाग, जो किसी का अपने हिसाब से ना चले ना तो लोग लानत मार देते हैं दिमाग पर ही, किसका तो दिमाग ही खराब है, दिमाग खाली है. अब यूं तो हम सबके पास देखो ना एक ठो ही ब्रेन होता है, पर काज ही कई कर जाता है. कोई ज्यादा लेक्चर दे दे तो कभी सब्जी सब पक जाता है, खा नहीं सकते, बात अलग है. कोई बोर कर दे तो दही सा जम जाता है, कोई पी जाता है, कोई दिमाग खा जाता है, कोई बिजली सा चमका भी जाता है, समथिंग इंटरेस्टिंग पॉप्स अप, या कई बार फुस भी कर जाता है दिमाग को, है ना. और अगर ये खेलने पे आ जाए तो कहीं तो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता जाता है और कहीं राजनीति कर महाभारत भी करा सकता है, है ना. सो ऑन दिस वर्ल्ड ब्रेन डे टुडे, दिस इज स्वाति एंड हैरी ऑन फनी नुक्कड़ सीएमआर 101.3 एफएम पर सेइंग कि यू तो आज का दिन इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ब्रेन, इसकी हेल्थ, इससे रिलेटेड बीमारियां, इसके फैक्ट्स जाने, क्योंकि दिमाग ठिकाने है तो जिंदगी की नैया किनारे है, ये तो हम सभी मानेंगे, है ना. अच्छा, जब पूछते हैं कि अक्ल बड़ी या भैंस अक्सर, तो मैं देखती हूँ कि अक्सर उसमें अक्ल ही जीत जाती है हमेशा, पर भैंस को भी मुझे लगता है अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम भी तो जरूरी है भाई, है ना. बाकी दिल और दिमाग में जब भी जंग छिड़ी है, फॉर इमोशनल फूल्स लाइक मी, लाइक मे बी यू, जीत हमेशा दिल की हुई है. फिर पछताते रहे या उस पे फक्र करते रहें, वो बात बात की है.

0: family travel ko banaye effortless with the Lexus TX350 at Don Valley North Lexus. Spacious, refined, aur har drive ke liye ready. Quick refueling ke saath, bina charging delays ke. Welcome back offer, aur 10 MSDs ka advantage lijiye, aur lease kijiye TX350 luxury package for $799 plus taxes per month with a 1.4% lease rate. Only at Don Valley North Lexus. Luxury ka experience lijiye, bina wait ke. A proud member of Wint Auto Group.
1: ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना। अब ऐसे में सोचिए, अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके $400 से $500 की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू $2,029, तो कितना अच्छा हो, है ना। यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 6474535353।
2: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट। फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर। विजिट वेन्सऑटोग्रुप.com।

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवर्टाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इंपॉर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $120 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.79% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
2: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
2: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
4: अब फायदा उठाएं जून के हॉट हॉट रेट्स का विद अमित खुराना। 3 years fixed 4.19%, 5 years fixed 4.24%, 5 years variable 3.55%। साथ ही मिले $5,100 तक का हॉट हॉट कैशबैक भी, और इतना ही नहीं एक गिफ्ट कार्ड भी अप टू $1,500। है ना आइसिंग ऑन द टॉप। कॉल अमित खुराना एट 6473412785, 6473412785, और विजिट amitkhurana.com।
5: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
6: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
7: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
6: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
7: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
6: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
7: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
6: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
5: Dawn Platinum, the better grease getter.
8: कदे क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप दे मुश्किल रस्तियां ते ट्रेलर टो कीता सी, ते आज उही कमाल दी टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोवर नू दोस्त दे कर ले जान लई है। टोयोटा टंड्रा, वड़े मोमेंट्स होन जा निकियां मूवमेंट्स, हर हॉल दे लई दमदार। ए टाइम है टोयोटा दा। लीज करो 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स SR $154 वीकली तो 36 मंथ्स लई 3.99% APR ते $5,800 डाउन दे नाल। हाइब्रिड उपलब्ध है। विजिट shoptoyota.ca जा आज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर को।
0: Follow us on Facebook. Filmi Nukkad, it's the free time.

दैट वाज सोना महापात्रा की मेनली आवाज थी, नैना प्यारा सा गाना आपने सुना ऑन फिल्मी नुक्कड़। स्वाति और कमल के साथ आप जुड़े हुए हैं, दैट वाज फ्रॉम खूबसूरत। फिल्म तो फ्लॉप रही थी पर ये गाना बहुत ही प्यारा लगता है और अच्छे से वेदर में तो और भी अच्छा लगता है। एंड साथ में आवाज थी अरमान मलिक की, बहुत ही यंग सिंगर हैं, टैलेंटेड हैं और आजकल इंडस्ट्री में काफी धूम मचा रखी है। प्राइवेट एल्बम्स के गाने भी इनकी जो आते हैं वो भी इनके नाम से ही चल जाते हैं, आवाज ही बहुत प्यारी है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी भाई अरमान मलिक के ही कंपोज गाने गाते हैं, इनको और भी गाने मिलते हैं और ये अच्छे से गाते हैं और ये इस वाले गाने के लिए भी अवार्ड वगैरह के लिए नॉमिनेट हुए थे, बट नोटिस इस गाने से ही हुए थे जो आपने आवाज साथ में ही सुनी। कहते हैं अरमान मलिक और अरमान मलिक ये जो दोनों भाई हैं और अच्छा खासा यंग यू नो कंपोजर एंड सिंगर का डियो है ये, अच्छा खासा ये घर में एनी लाइक एनी सिबलिंग अच्छा खासा लड़ते हुए भी नजर आते हैं। ये इतनी लड़ाई हो जाती है कि कई बार वो अरमान मलिक इनसे बोलते हैं कि जाओ मैं अब तुम्हें यू नो गाना गवाऊंगा ही नहीं अपने म्यूजिक पे, और ये भी स्टूडियो से लड़ लड़ के निकल जाते हैं, किसी के में भी गालूंगा तुम्हारे म्यूजिक में नहीं गाऊंगा, और फिर वो अंदर से लॉक भी कर लेते हैं कि बस अंदर आ ही मत जाना। लेकिन फाइनली यू नो जैसे कि अभी सारे सिबलिंग्स के साथ कहा जाता है कि तुम्हारे लिए सबसे लड़ लेते हैं और तुम्हारे साथ ही सबसे ज्यादा लड़ते हैं, वही बहुत ही प्यारा सा ये एक इनकी भी एक कहानी है। और दोनों भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं इंडस्ट्री में, मेरे ख्याल से बहुत ही प्यारे प्यारे गाने आते हैं इनके। अरमान मलिक का बर्थडे भी है, सोशल मीडिया पे चारों तरफ इनके लिए बर्थडे विशेस पोर होती जा रही हैं, तो मैंने सोचा मैं भी छोटी सी बात करके इनका एक गाना बजा दूं। मुझे बहुत सारे गाने इनके बहुत अच्छे लगते हैं, काफी प्ले करती भी हूं मैं फिल्मी नुक्कड़ पर, एंड दिस वन इज अगेन वन ऑफ माय वेरी फेवरेट्स, आई प्ले इट अ लॉट एंड वंस अगेन आई गॉट अ चांस, बहाना मिल गया सौ आसमान पार जाने का संगीत के साथ।

0: समर ड्राइव का एक्साइटमेंट बढ़ाए विद टंड्रा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा। आपके नेक्स्ट एडवेंचर के लिए बिल्ट और फाइनेंसिंग सिर्फ 3.99% से। बिग सिलेक्शन, बिग समर मोमेंटम, टोयोटा करोला भी इन स्टॉक है आपकी रोजाना ड्राइव के लिए। बुक अ टेस्ट ड्राइव टुडे, वी पे टॉप डॉलर फॉर योर ट्रिप। इट्स टाइम टू टोयोटा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा.com। लोकेटेड है 3300 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट मार्कम पर। Proud member of Vane's Auto Group.
1: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
2: राइट 6477602779 इज द नंबर। मीता ओझा जी से आप बात कर सकते हैं इस नंबर पर। काव्या होम्यो केयर ये है ब्रैम्पटन में, पर आप अगर किसी वजह से ब्रैम्पटन तक नहीं आ सकते, इस क्लिनिक तक नहीं पहुंच सकते उनके होम्यो केयर तक, तो भी आपका ट्रीटमेंट नहीं रुकना चाहिए, है ना। तो उसके लिए पूरा बंदोबस्त रहता है भैया। आप उनसे फ़ोन पे भी कंसल्टेशन ले सकते हैं, दवाइयाँ आपके घर पे पहुंच सकती हैं, तो आने जाने का कोई बहाना नहीं है। आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, आपको सुविधा पूरी मिलेगी। और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज भी कवर करती हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, तो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से पता भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर कुछ बचत भी होगी, है ना। बाकी सबसे अच्छी चीज़ क्या रहती है कि आपका ट्रीटमेंट की गारंटी होगी और एक अच्छी सी हेल्दी लाइफ की तरफ आप कदम बढ़ा सकते हैं, ये बात तय है। तो मीता जी से आपके क्विकली बात कराते हैं इस हेल्थ सेगमेंट में फ्रॉम काव्या होम्यो केयर। मीता जी वेलकम।
3: थैंक यू स्वाति जी, गुड इवनिंग एवरीवन, एंड सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो।
2: बिल्कुल ठीक मीता जी। जिस तरीके की वेदर कंडीशंस रहती हैं, अब जैसे कई बार हवा में कहते हैं कुछ है, कई बार पानी में कहते हैं कुछ है, और कई बार आजकल जैसे समर्स होते हैं, इंसेक्ट्स अराउंड रहते हैं किसी न किसी फॉर्म में या तरह के, एक चीज देखी जाती है, और कई बार फूड एलर्जीज भी होती हैं मुझे लगता है, वजह मुझे नहीं पता ये होती हैं या कुछ और भी हो सकती हैं जिनका जिक्र मैंने नहीं किया, पर रैशेस कई बार स्किन में देखने को मिलते हैं, हाइव्स जिन्हें हम कई बार कह देते हैं, या किसी और तरीके के लाल लाल तरह के, और उसमें इचिंग भी होती है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि ये जो होते हैं इट कैन बी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, आप किस तरीके के ज्यादा देखती हैं यहाँ पर इन कैनेडा एंड टोरंटो, और क्या उनका ट्रीटमेंट होम्योपैथी में है?
3: हाँ जी स्वाति जी, सो कई बार ये जो आप कह रहे हो कि हाइव्स हैं या स्किन पे रैशेस होते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, लेकिन आजकल समर में आप देखो कि कभी कभार हाइकिंग के लिए आप गए हो, कहीं पे इंसेक्ट बाइट हो गया, मॉस्किटो बाइट हो गया, या फिर हनी बी का स्टिंग ले लें, वास्प का स्टिंग ले लें, तो उसके साथ क्या होगा कि कुछ भी ऐसे आपको काट गया कोई इंसेक्ट, तो आपको वहां पे एक टाइम तो हो जाता है ऐसे कि बम्प बन गया, बर्निंग हुई, हीट हुई, दो तीन चार दिन में वो सही हो जाता है, कहने के वीक के अंदर अंदर वो सही होगा, लेकिन उसके बाद आपको वहां पे ईची और रैशेस होना स्टार्ट हो जाता है और फिर ये बॉडी में फैलता जाता है। सो खास करके किसी भी तरह के ये इंसेक्ट बाइट के बाद या मॉस्किटो बाइट हुआ था उसके बाद आपको ये एक्जिमा सा बॉडी में डेवलप होता है, रैशेस होने लगते हैं और फिर लगातार वो पूरी बॉडी में चलते रहते हैं, ईची है, ड्राई स्किन हो जाना, स्किन निकलती रहती है वहां पे या बम्प्स बन जाते हैं। तो ये तो एक बात तो हुई कि उसके स्टिंग के साथ आपकी बॉडी में जो एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस किया, तो उसके साथ आपको धीरे धीरे करके ये एलर्जिक एक्जिमा की तरह या एलर्जिक डर्मेटाइटिस की तरह वहां पे एक्जिमा सा निकल आया। लेकिन जो हाइव्स होते हैं जिसको हम छपाकी या तपफड़ कहते हैं, अर्टिकेरिया कहा जाता है, तो ये क्या होता है कि स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, वहां पे आपको ईची होती है और जैसे ही आप स्क्रैच करते हैं तो वहां पे बम्प सा बन जाता है और ये बम्प में फिर ईची होती रहती है, हीट निकल रही है या बर्निंग सी फील होती है और कई बार बड़े वहां पे तपफड़ बन जाते हो, जैसे जैसे आप खुजलाते जाते हो वो बम्प बड़ा सा होता जाता है और कई बार डिनर प्लेट जितने बड़े ये हाइव्स हो जाते हैं। और जहां पे आप जहां पे आप ईची करते हो तो वहां पे लाइंस बन जाती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, तो ये भी एक तरह के हाइव्स ही हैं। अब ये हाइव्स आप देखते हो कि वो 3 से 4 दिन तक रुकते हैं, बाद में वो सही हो जाते हैं, लेकिन कभी भी वो वापस आ जाएंगे। लेकिन जब ये हाइव्स या अर्टिकेरिया 6 वीक्स या उससे ज्यादा टाइम से सही नहीं हो रहा है, तो फिर इसको क्रोनिक ऑटो इम्यून अर्टिकेरिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें कभी भी आपकी बॉडी पे ये हाइव्स निकल आते हैं। अब कुछ लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि शाम के टाइम काम से आप घर पे जाते हो तो उस वक्त जाके ये होता है, कुछ लोगों को सुबह उठने के साथ ये हो जाता है, कई बार नाइट टाइम में ये होता है। सो मोस्टली ये हाइव्स जो है वो कोई खाने की चीज की एलर्जी करके, कि आपको नट्स करके एलर्जी है, कोई सीट्रस फ्रूट खा लिया तो उससे आपको एलर्जी हो गई। एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है कि डस्ट से एलर्जी है या डैंडीलायन वगैरह से एलर्जी है, कंस्ट्रक्शन में आप काम करते हैं, डस्टी है सारा कुछ, तो ऐसे में ये हो जाता है। कुछ एक टाइम जैसे अल्कोहल के साथ भी ये हो गया, तो जो ऑटो इम्यून अर्टिकेरिया कहते हैं ना, कई बार इसका कारण पता नहीं चलता है लेकिन आप फील करते हैं कि हीट एक्सपोजर हुआ। अब ये कोई एलर्जी टेस्ट में तो आएगा नहीं कि एकदम से हीट फील हुई आपको कि सन एक्सपोजर हुआ उसके साथ हाइव्स आ गए, या एक्सरसाइज करने गए थे, जिम गए थे तो उस वक्त आपको हाइव्स आ जाना। किसी भी पार्ट पे प्रेशर आ रहा है तो उस हिस्से में आपको ये तपफड़ बन जाते हैं, हाइव्स निकल आते हैं। क्लोथ्स आपके रब होते हैं तो वहां पे हो जाना, तो ये सारी चीजें आप एलर्जी टेस्ट भी कराते हो उसमें भी नहीं आता है कुछ भी, लेकिन फिर भी ये तपफड़ आपको हाइव्स हो रहे हैं। तो डर्मेटोग्रेसिज्म नाम की कंडीशन आती है जिसको स्किन राइटिंग कहते हैं। इसमें आप देखोगे ना कि जिस शेप में आप अपने नेल से वो लाइन बनाते हो, फिंगर से लाइन बनाते हो, तो उस शेप में आप कुछ लिख भी पाते हो अपनी स्किन के ऊपर, वो पूरा एरिया उतना हिस्सा जो है वो स्वॉलन हो जाएगा। तो ये हाँ, सो ये जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के हाइव्स या अर्टिकेरिया कह लो या एलर्जिक डर्मेटाइटिस कह लो, ये सारी कंडीशन होती है। अब इसमें ये जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है इट कैन हेल्प, एंड आप देखोगे कि स्टार्ट करने के साथ विद इन अ मंथ ज्यादातर केसेस में आपको इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ एक टाइम आप लेते हो जिस करके क्या होगा कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनेगा, तो ये रिएक्शन देना कम करके स्टॉप करेगा और फिर आपको लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ मिलेगी। सो फील फ्री टू कॉल अस अगर आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, इसके अलावा एक्जिमा है, सोरायसिस, लाइकन प्लेनस है, या ईची रैशेस निकल रहे हैं, धूप में बाहर गए उसके साथ सनबर्न हो रहे हैं, या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, या एक्जिमा बढ़ रहा है, या किसी भी तरह के एक्यूट क्रोनिक डिजीज के लिए काव्या होम्यो केयर से आप मेरा कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हैं।
2: वेरी नाइस। तो मुझे ये समझ में आया कि स्किन के जो प्रॉब्लम्स हैं, रैशेस या जो भी आपके कई बार खुजली वाले होते हैं, वो कई तरीके के हो सकते हैं, बट अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है स्किन से रिलेटेड, होम्योपैथी में ट्रीटमेंट है, एंड स्पेशली एट काव्या होम्यो केयर तो ट्रीटमेंट जरूर उपलब्ध है। आप एक बार मीता जी से अपॉइंटमेंट बना के मिलें, क्लिनिक तक नहीं आ सकते, फोन पे बात करें पर मिलें और उसका ट्रीटमेंट टाइमली शुरू करें, जिससे कि वो बहुत बड़ी समस्या आपके लिए ना बने। और जैसे कि मीता जी ने कहा, इसका ट्रीटमेंट डेफिनेटली उपलब्ध है, आपको बस अपॉइंटमेंट लेके बात करनी है। नंबर टू कॉल 6477602779, नोट नहीं कर पाए मुझसे ले सकते हैं, या यू कैन ऑल्सो विजिट वेबसाइट kavyahomeocare.com। थैंक यू मीता जी, आपसे फिर कनेक्ट करते हैं जल्दी ही, गुड लक।
3: जी स्वाति, थैंक यू सो मच स्वाति जी।
0: It's time to Toyota at Markville Toyota. Corolla L lease कीजिए from $84 weekly for 60 months with zero down. या Corolla Cross L front wheel drive lease कीजिए from $98 weekly for 60 months with zero down. और अब Tundra 4x4 Crewmax Limited Nightshade lease कीजिए from $208 weekly for 60 months. Great offers सिर्फ Markville Toyota पर. More details के लिए visit करें Markville.com. Markville Toyota, a proud member of Vane's Auto Group.

0: to advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: कदे क्लाइंट दे ऑफ ग्रिड कैबिन दे लई तुसी लंबर पहुंचाई सी अते अज उही दमदार टर्बोचार्ज्ड इंजन कर दी सब तो प्यारी डिलीवरी ले आ रहा है एक नवा डॉल हाउस टोयोटा टकोमा हर खास डिलीवरी लई परोसे योग पावर एह टाइम है टोयोटा दा लीज करो 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 $120 वीकली तो 36 मंथ्स लई 4.79% APR ते $4900 डाउन दे नाल हाइब्रिड उपलब्ध है विजिट shoptoyota.ca जा अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर खोल जाओ.
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
3: पहला घर खरीदना है या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, इस सेमिनार में होंगे मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, लीगल एक्सपर्ट्स एंड पीके सबरवाल। एंजॉय एक्सक्लूसिव इंसेंटिव्स, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट एंड लंच 26 जुलाई 2026 को होने जा रहा है।
4: बहुत सारे इंसेंटिव्स जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं है।
3: लिमिटेड सीट्स हैं, आज ही रजिस्टर कीजिए विद न्यू जेन रियल्टी एक्सपर्ट 6472994757 6472994757 teamsabarwal.com।
5: Real estate का कोई सवाल, टीम सबरवाल।
6: Another Don Clean with the Don Ducks.
7: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
8: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
7: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
8: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
7: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
8: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
7: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
6: Dawn Platinum, the better grease getter.
9: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था, और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए। टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार, ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स SR फ्रॉम $154 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 3.99% APR विद $5,800 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल, विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
10: Your feet with Peppy Knocker Beats.

क्यों हमें सभी को ना खुद से एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम इन लाइफ ये सवाल हम लोग पूछ ही लेते हैं मोर द गीकी वंस क्योंकि उनसे तो बहुत सारे लोग ही ये कह देते हैं आप ऐसे क्यों. हाल ही में एक डे निकला था जब मैं ये सब पढ़ रही थी नेशनल एम्ब्रेस योर गीकीनेस डे बोले तो गीक्स के बारे में कि आज की डेट में जिसको क्रिएटिविटी और पैशन से हम लोग एसोसिएट कर लेते हैं और करना भी चाहिए. एक टाइम था इन विक्टोरियन एज कहते हैं जब उन्हें सर्कस के जोकर की तरह ट्रीट किया जाता था. नॉट गुड दो बट दैट how it was like a freak and fool you know odd ones ki tarah but ye realize karne mein duniya ko waqt laga ki there is a little bit you know of geekiness in all of us we just need to accept it embrace it and celebrate it phir chahe koi kuch bhi kehta rahe hai na. Gaana lined up next is the same.

0: जेनेसिस मार्कम पर लग्जरी मिलती है एक एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। लीज कीजिए ब्यूटिफुली डिजाइन्ड 2026 G70 सिर्फ 1.9% से अप टू 39 मंथ्स, या लीज कीजिए 2026 GV70 सिर्फ 2.9% से। बुक योर टेस्ट ड्राइव टुडे। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Vane's Auto Group.
1: All right, filmy nukkad, CMR 101.3 FM पर यू आर विद स्वाति एंड पायस्विनी, एंड हमारे साथ जुड़ गए हैं वो जिनसे अगर आपकी बात मैं करा दूं तो आपको एक चीज तो तय मिलेगी, क्या? Well, फ्यूचर के लिए एक राइट डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू करियर। आप हो, आपके घर में कोई अपने हो, आपकी वाइफ, आपकी बहन, आपके भाई, कोई भी जो सोचते हैं कि करियर में कुछ बदलाव लाया जाए जिससे कि करियर एक सर्टिनिटी की तरफ बढ़े, इनकम सर्टिनिटी की तरफ आए और फ्यूचर सेट हो जाए, फैमिली का भी और अपना भी, तो उसके लिए रूहानी कॉलेज में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। सिर्फ कोर्सेज नहीं करवाते, कोर्सेज ऐसे सिखाते हैं कि आपकी वो कोर्स खत्म करते ही, रादर कुछ कोर्सेज तो ऐसे हैं जो खत्म होने से पहले ही जॉब लग ही जाती है, आपको पहले से असाइनमेंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, बाद में धक्के नहीं खाने पड़ते और साथ में पास होने की गारंटी होती है। ऐसा नहीं है कि कोर्स करा दिया अब आप अपने अपने भरोसे करो, पढ़ो और पास करो। वहाँ पे जिस तरीके से आपको एजुकेट किया जाता है, जिस तरीके से सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं गारंटी है कि आप पास करेंगे ही करेंगे। यूं ही उनका 100% रिजल्ट नहीं होता। अब वो कोर्स कौन से हैं जिनमें ये गारंटी है पास होने की भी और अच्छी इनकम की भी, अच्छे फ्यूचर की भी, वो हम रूहानी कॉलेज से जुड़े हमारे साथ ओम जी उनसे पूछ लेते हैं। ओम जी, वेलकम।
2: थैंक यू जी। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे हमारे पास कोर्सेज हैं, तो आज हम बात करना चाहेंगे कि जो हमारा प्री मेडिकल का कोर्स है, जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे डॉक्टर बने, सो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि देखो एक नॉर्मल रूट से जाते हैं तो अब बच्चा प्लस टू करता है, ट्वेल्थ ग्रेड के बाद में 4 साल उनको लग जाता है अपना ग्रेजुएशन करते हैं, फिर एमकेट करते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इस चीज को इस चीज को हमने कम करते हुए 4 साल पहले ही सिर्फ 12th ग्रेड के बाद में 1 साल हमारे पास कोर्स करना होता है, और फिर उसके बाद में उनका जो हमारे जो एसोसिएट पार्टनर कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस, वहां पर उनके ग्रांटेड एडमिशन होते हैं। तो वहां पे ये लोग मतलब कि डॉक्टर बनने का जो 100% है वो हो जाता है, कि उसमें एक अनसर्टिनिटी नहीं रहती कि क्या होगा नहीं होगा। सो वो चीज बिल्कुल ही एकदम पीस ऑफ माइंड होता है कि जब रूहानी कॉलेज चले गए हम, तो यहाँ से हमारा बच्चा आगे के जो और जो उनका डायरेक्शन है, जो आगे का सारा कुछ कंप्लीट करके वो डॉक्टर बन के ही निकलेगा आगे से आगे।
1: ये मुझे लगता है बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है, कंटेंटमेंट होता है और एक रिलीफ होता है जब आपको पता है कि जब जो जिस चीज की पढ़ाई करनी शुरू कर दी है अब वो बन के ही निकलेंगे डॉक्टर। वरना कई बार क्या होता है, एग्जाम दिया, पास हुए नहीं हुए, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, वो जो कंसर्टेनिटी रहती है ना, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता वो बहुत बड़ी चीज होती है और बीच बीच में आपको कई बार डीमोटिवेट, डीमोलराइज भी करती रहती है। तो यहाँ पर एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है ओम जी, जब आप बताते हैं कि प्री मेट कोर्सेज के जरिए आपको ये गारंटी है कि जो प्री मेट की पढ़ाई रूहानी से करी जा रही है, वहां पे जो भी कॉलेजेस का एक अनुबंध कहते हैं आप, रहता है रूहानी के साथ, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं और वहां पे आपको पक्का पता है कि आपका बच्चा जाएगा, वो डॉक्टर बन के ही निकलेगा। एंड टाइम सेव इज मनी सेव, एंड बात सिर्फ पैसे की नहीं है, जब आप टाइमली अपना करियर में सेट होते हैं इसका मतलब ये भी होता है कि टाइमली आपकी जिंदगी की बाकी जो माइलस्टोन्स होते हैं वो भी समय से आते हैं, और उसी को हम कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं ना, अपनी जिंदगी में हर काम समय से होता रहे तो क्या ही बात है। तो रूहानी कॉलेज उसमें आपकी हर तरह से देखें मदद करता है। रूहानी कॉलेज में ओम जी एक चीज और बताएं, ये प्री मैट के जो कोर्सेज होते हैं, अगर कोई अपने बच्चों के लिए आपसे बात करना चाहे इस वक्त, बैचेस इसके कब कब शुरू होते हैं?
2: बैचेस देखो हमारे स्टार्ट होने वाले हैं अभी इस महीने, और जो हमारे पिछले बैचेज हैं ऑलरेडी सितंबर में जैसे एडमिशन चालू हो जाएंगे, तो उनका एडमिशन ग्रांटेड हो चुका है और बस उनको एक स्मूथ ट्रांजिशन होगा कि यहाँ से अपना मेडिकल कॉलेज में अपना जर्नी स्टार्ट हो जाएंगे उनकी।
1: ओह वाह, वेरी नाइस। और कहाँ, जैसे आपके जो कॉलेजेस होते हैं मेडिकल के लिए, ये कहाँ कहाँ है मोस्टली?
2: कई जगहों पे, यूएस में भी है और अपना कैरेबियन में कई सारे कंट्रीज में है। तो पूरा डिटेल्स जैसे हम पेरेंट्स को देखते हैं, उनसे बातें करते हैं कि कहाँ पर उनके लिए ज़्यादा सुटेबल है। और इसमें और अच्छी बात है कि हम लोग हर जगह पे जा करके वहाँ पे खुद ही हर चीज़ को क्लासरूम में गए हुए हैं, वहाँ पे रहने का कैसा है, सेफ्टी कैसी है, एजुकेशन कैसा है, पासिंग रेट कितना है, सक्सेस कितना है, सब कुछ हम लोग एनालाइज करके पेरेंट्स को पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसके बेस पे हम एडवाइज करते हैं कि आप यहाँ पे जाओ, जैसा भी उनको अच्छा लगता है। जी,
1: वेरी नाइस। तो आपने पूरा एक होमवर्क कर रखा होता है, उस होमवर्क का फिर फायदा पेरेंट्स उठाते हैं, देन इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर देम टू डिसाइड फर्दर फॉर देयर चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच ओम जी फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन एंड हेल्प इन मेकिंग यू नो समवन्स फ्यूचर व्हेन इट कम्स टू बिकमिंग अ मेडिकल डॉक्टर। आपको बहुत सारे डॉक्टर्स आपके फ्यूचर में मेरे ख्याल से ओम जी ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे अरे हम आप ही के रस्ते दिखाए हुए हैं और देखिए हम बनके तैयार हैं। वेरी नाइस।
2: आप एक बार प्लीज। जी जी जी जी। वैसे दूसरे जो प्रोग्राम्स हैं हमारे, तो कहीं भी चले जाओ तो हमारे कॉलेज के लोग मिलेंगे।
1: ये अच्छा है कि हर जगह रूहानी कॉलेज के आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे जो अच्छा सा काम कर रहे हैं। तो आपको रेफरेंस यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप स्टूडेंट से आप रूहानी कॉलेज में ही पता करें, आपको कहीं ना कहीं इनके स्टूडेंट्स मिल ही जाएंगे और आपको रेफरेंस वहां से भी मिल जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक करी। तो ओम जी एक बार नंबर बताएं, लोकेशन बताएं प्लीज।
2: जी जी बिल्कुल, हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 9057312555 और ये बिल्कुल ब्रैम्पटन के सेंटर में है, 239 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट 21।
1: जी बिल्कुल, क्वीन स्ट्रीट ईस्ट कैनेडी और क्वीन का इंटरसेक्शन है। वॉकिंग है अगर आप बस से भी कम्यूट करते हैं, क्योंकि मैं खुद गई हुई हूँ, इट्स वेरी यू नो एट अ वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम दैट इंटरसेक्शन। और नंबर अगेन 9057312555। यू कैन ऑल्सो विजिट ruhanicollege.com, दैट इज ruhanicollege.com। थैंक यू ओम जी, आपसे फिर कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट वीक। गुड लक।
0: Hyundai का Next Starts Now सेल्स इवेंट चल रहा है डॉन वैली नॉर्थ Hyundai पर। अब सिक्योर करें साल के लोएस्ट रेट्स। हर कस्टमर क्वालिफाई करता है अप टू 1% रेट रिडक्शन के लिए या कैश परचेस पर $500 का बेनिफिट। ऑफर सिर्फ जुलाई 31st तक है। एट डॉन वैली नॉर्थ Hyundai, वी स्पीक योर लैंग्वेज। विजिट donvalleynorthhyundai.com या Woodbine Avenue and Denison Street, Markham पर। Don Valley North Hyundai, doing business your way. A proud member of Wayne's Auto Group.

Well, that was from Simba. Cop Universe एक create हो गया था सिंघम फिल्म से. रोहित शेट्टी की सिंघम थी, अजय देवगन की सिंघम थी, और उसके बाद जो Cop Universe create हुआ, सिंघम रिटर्न्स आई, वो भी सुपर हिट रही. एंड देन सिम्बा आई, वो भी सुपर हिट. वेल, फिल्म फुल ऑन कमर्शियल सिनेमा थी. सिंघम को बहुत ही प्यारी सी एक पोस्ट अजय देवगन की आज मैं रीड कर रही थी रिगार्डिंग दिस, कि जिनमें जहाँ पे उन्होंने ये पोस्ट जो है वो डेडिकेट करी है टू द पुलिस ऑफिसर्स. और एक साथ में बहुत ही अच्छा सा उन्होंने ये भी लिखा है कि फिल्म नहीं है, एक जज्बा है, एक इमोशन है, एक सलाम है उस पुलिस फोर्स के नाम जो अपनी परवाह किए बिना ईमानदारी और सच्ची निष्ठा से अपने काम इस देश की सेवा में कर रहे हैं. तो वेल, बाजीराव सिंघम वॉज अ कैरेक्टर जो अभी तक लोगों के जहन में रहता है विद हिज अटा माजी सटकली वाली लाइन. काफी फिल्मी डायलॉग थे इसके जो कि लोग काफी बोलते हैं. बिल्कुल टोटली फिल्मी फिल्म थी ये, और गाने अच्छे थे, सारा एक्शन तो धमाल था ही इसका. रोहित शेट्टी का देखें ना, अजय देवगन को जहाँ गोलमाल सीरीज जैसी में फुल ऑन कॉमेडी में यूज़ किया इन्होंने, सिंघम जैसी फिल्मों में फुल ऑन एक्शन के लिए भी एकदम कॉन्ट्रास्ट में यूज़ किया है. वेल, सिंघम के सेलिब्रेट करते हुए एक गाना सिंघम से तो बनता है, दिस वन इज साथिया. प्यार सा गाना श्रेया घोषाल की आवाज़ में. और फिल्म यूनिवर्स, थैंक यू.

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: समर ड्राइव का एक्साइटमेंट बढ़ाएं विद टंड्रा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा। आपके नेक्स्ट एडवेंचर के लिए बिल्ट और फाइनेंसिंग सिर्फ 3.99% से। बिग सिलेक्शन, बिग समर मोमेंटम, टोयोटा करोला भी इन स्टॉक है आपकी रोजाना ड्राइव के लिए। बुक अ टेस्ट ड्राइव टुडे, वी पे टॉप डॉलर फॉर योर ट्रेड। इट्स टाइम टू टोयोटा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा.com। लोकेटेड है 3300 स्टील्स एवेन्यू, ईस्ट मार्कम पर। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
2: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888। दैट्स 9054608888।
2: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
4: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑल स्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353।
5: And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz
6: 6474535353.
7: Wow, Mom, Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
8: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
7: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
9: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
10: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट। फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर। विजिट वेन्स ऑटो ग्रुप.com।
11: Exclusively picked. Look.

0: डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर कॉन्फिडेंस के साथ इलेक्ट्रिक ड्राइव करें। चूज करें लेक्सस आरजी या ईएस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एंजॉय करें प्रीमियम ईवी एक्सपीरियंस मेड सिंपल। बाय ए फ्री लेवल 2 होम चार्जर, इंस्टॉलेशन कोऑर्डिनेशन और फर्स्ट ईयर ऑफ होम चार्जिंग रीइंबर्स्ड अप टू $1,000। प्लस रिसीव करें वन ऑन वन ईवी डिलीवरी सेशन एट योर होम और $500 क्रेडिट फॉर एनी प्रोटेक्शन पैकेज वैल्यूड एट $2,500। आज ही विजिट करें डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस .com। A proud member of Wayne's Auto Group.
1: अच्छा, जैसे कि मैं बताती भी आ रही हूँ कि एक बहुत ही उम्दा सा फिर से फ्रिंज फेस्टिवल हो रहा है। अगर आप थिएटर्स का शौक रखते हैं या आपने पहले कभी नहीं देखा, आपको पता ही नहीं आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो मैं गारंटी देती हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार एक्सप्लोर करें। आप हर बार मुझसे पूछेंगे स्वाति नेक्स्ट टाइम कब हो रहा है, तो मिसिसागा में मल्टी लिंगुअल फ्रिंज फेस्टिवल हो रहा है और उसमें क्या क्या होगा, कब होगा और उसके लिए कहते हैं ना कि लॉन्च में एक पार्टी हो रही है, और लॉन्च पार्टी में या लॉन्च इवेंट में क्या क्या होगा, मैं सोचा आपकी बात करा देती हूँ सीधे नीरज जी से और आप पता करें कि आपको जाना है या नहीं जाना है, और जाना है तो कहाँ जाना है और क्यों जाना है। नीरज जी, वेलकम।
2: जी स्वाति, कैसे हैं आप? एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही ऑन एयर। आई होप यू एंड योर लिसनर्स आर डूइंग फाइन।
1: जी बिल्कुल, मुझे लगता है आपकी आवाज इतनी जोरदार है कि मेरे लिसनर्स आपको बखूबी पहचान जाते होंगे अब जब भी आप आते हैं, और ये भी जान जाते होंगे कि भाई थिएटर से एक इंसान आ रहा है इतनी बड़ी आवाज लिए। आप तो वर्कशॉप्स भी लेते हैं अच्छी अच्छी, तो कुछ तो थिएटर के मामले में अच्छा सा अनाउंसमेंट आने ही वाला है, तो क्या है इस बार?
2: जी थैंक यू हमारी तारीफ हमारे प्रशंसा के लिए। और ये बात सही है, हम जब भी आते हैं तो कुछ थिएटर से जुड़ा आपको बताने के लिए आते हैं। और जैसा कि आपको पता है, जैसा कि हम पिछली बार हम साथ थे जब हमारा पिछला फेस्टिवल हुआ था, SSTF सावित्री शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, तो तब मैं आखिरी बार आपके लिस्टनर्स के सामने आया था, मतलब इनडायरेक्टली सुनाई दिया था उन्हें। तो इस बार हम अपने जो एनुअल 3 फेस्टिवल होते हैं उनमें से जो दूसरा फेस्टिवल है विच इज कॉल्ड मिसिसागा मल्टीलिंगुअल फ्रिंज फेस्टिवल, तो ये फ्रिंज फेस्टिवल का कॉन्सेप्ट है, तो उससे इंस्पायर्ड है हम लोग। तो ये 10 से 23 अगस्त के बीच हो रहा है आप ही के शहर, हमारे शहर मिसिसागा में। तो उससे पहले एक किक ऑफ इवेंट है, जैसे कर्टन रेजर होता है कई बार, तो हम आपको झलकियां ग्लिम्प्स दिखाते हैं कि क्या आने वाला है, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारे जो 12 प्लेज हैं, 12 डिफरेंट प्लेज हैं, एक पहले जो हमारा वीक है पहला वेन्यू, उस पर 6 प्लेज हैं और फिर दूसरे 6 प्लेज दूसरे वेन्यू पे हैं, तो ये सारी टीम्स आके पिचिंग करेंगी। तो एक ऐसा इवेंट होगा जहां पे जो लोग फेस्टिवल को देखना चाहते हैं उसके बारे में जान सकते हैं कि कौन सा प्ले है, इसकी क्या स्टोरी है, हमें ये प्ले क्यों देखना चाहिए। तो ये लॉन्च
1: बेसिकली इसको मैं ऐसे समझ सकती हूँ कि एक ऐसे इवेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं इस वक्त जो फ्रेंच फेस्टिवल शुरू होने से पहले है एक तरीके से, या उसके बिल्कुल पहला दिन समझ लें उसका, या बिल्कुल पहले, और जिसमें कि लोग आएंगे, फ्री इवेंट है और लोग आएंगे और वो ये पता कर पाएंगे, क्योंकि वो मिल पाएंगे सब थिएटर के आर्टिस्ट और जो भी प्लेज हो रहे हैं उनसे कि ये 12 प्लेस कौन कौन से हैं, क्या है इनमें, हम किस प्ले की टिकट लें, सारों की लें या कुछ एक की लें या कुछ थोड़ों सो की लें, क्योंकि उनको आइडिया लगेगा, वो कलाकारों से भी मिल पाएंगे और प्लेस के बारे में एक आइडिया जनरेट कर पाएंगे।
2: नहीं नहीं, आप सारों की लें जी, एक की क्यों, दो की क्यों, किसी के साथ ऐसे ना इंसाफी ना करें।

0: वेबसाइट का नाम मैं आपको बता देता हूँ, हमारी पेरेंट वेबसाइट है सावित्री.ca, SAWITRI.ca, ये हमारी पेरेंट वेबसाइट है, इस पे सारे लिंक हैं। और जो दूसरी डेडिकेटेड वेबसाइट है वो mississaugafringe.ca, mississaugafringe.ca, तो उस पर आप जाके डिटेल ले सकते हैं। कई चीजें मैं अभी यहाँ बताने लगूंगा तो बहुत लंबा खींच जाएगा। किक ऑफ के बारे में आपने पूछा है तो मैं फटाक से बता देता हूँ कि 6:30 शुरू होगा इवेंट। ये होगा इस कमिंग फ्राइडे 24 जुलाई 6:30 से 9:30 के बीच, स्मॉल आर्म्स इंस्पेक्शन बिल्डिंग। और ये बिल्डिंग अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रखती है। ये बिल्डिंग जब कनाडा ने द्वितीय विश्व युद्ध में जब भाग लिया था तो यहाँ पे म्यूनिशंस, जिसे हम जो युद्ध का सामान होता है, यहाँ पे असेंबल किया जाता था। लेडीज का बहुत बड़ा हाथ रहा था उस समय इस वॉर में जब कनाडा ने इसे ज्वाइन किया था। तो इस बिल्डिंग के बारे में भी जान सकते हैं। बिल्डिंग को कन्वर्ट किया गया कल्चरल हब में, तो आप आए, जो लोग जानते हैं जगह को बहुत बढ़िया, जो नहीं जानते हैं आए देखें। और एक उस दिन हम 6:30 बजे शुरुआत करेंगे, मीट एंड ग्रीट होगा, फिर पार्टिसिपेंट्स की परेड होगी। एक लिटरल जैसे हम अपने भारतीय संदर्भ में कहें तो एक बारात सी निकलती है। तो एक स्कॉटिश बैंड, जी हाँ स्कॉटिश बैंड होगा, वो उन्हें लीड करेगा, उसके पीछे सारे बाराती होंगे, वो जो कि परफॉर्मर्स है वो अपने अपने लेके पोस्टर्स लिए आपको थ्रू पूरा चक्कर काटेंगे इस पूरे बिल्डिंग का, और जो ऑडियंस आती है उसको बताएंगे। फिर उसके बाद उनकी पिचिंग होगी, फिर क्रिसेंडो बैंड है वो प्ले होगा 2 बार, और इसी तरह का मस्ती का माहौल होगा। वहां पे कैश बार है, म्यूजिक, डांस एंड नेटवर्किंग का सबको पूरा भरपूर अवसर मिलेगा।
1: मेरे लिए तो बड़ी आइडियल प्लेस है, इतने सारे आर्टिस्ट होंगे अराउंड, व्हाट अ वाइब आई वुड से। और जैसे आपने बताया कि बैंड है, उनकी परेड है, वो कितने पूरे सेलिब्रेशन का आप किक ऑफ इवेंट, इसको सही आपने नाम दिया है कि किक ऑफ इवेंट है, तो वो जो एक उमंग होती है उसकी शुरुआत उसी दिन से हो जाएगी। और ये चीज बहुत अच्छी है कि सारे प्लेस के बारे में, जो 12 के 12 प्लेस हैं, उनके आर्टिस्ट से मिलने का मौका मिलेगा, वरना नहीं हो मिल पाता कई बार, और प्लेस के बारे में पहले से जानने का मौका मिलेगा कि किस बारे में क्या प्ले है, तो मन बनाने के लिए आसानी हो जाती है। अच्छा एक चीज बताइए, फ्रिंज फेस्टिवल है क्या, मतलब व्हाई इट इज कॉल्ड फ्रिंज फेस्टिवल, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट?
0: जो नॉर्मल फेस्टिवल होते हैं, देखिए उसमें हम क्या कहते हैं, क्यूरेट करते हैं कि ये प्ले करेंगे, ये लोग करेंगे, इन्वाइट करते हैं, तो ये नॉन क्यूरेटेड नॉन ज्यूरीड होता है। इसमें इसका जो एक कॉन्सेप्ट है कि एक लॉटरी होती है, तो जो कोई इसमें करना चाहता पार्टिसिपेट वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और हम एक लॉटरी सिस्टम के थ्रू चूज करते हैं। और इसकी दूसरी बात ये है जो कि सावित्री का मैंडेट है कि हम लोकल टैलेंट को बढ़ावा देते हैं। बाहर से आर्टिस्ट लाते हैं लोग, विच इज वेरी वेलकम, लेकिन हमारा जो मुख्य ध्येय मोटो है वो ये कि लोकल टैलेंट को बढ़ावा दिया जाए, चाहे वो एक्टर्स हो, राइटर्स हो, या थिएटर से जुड़े दूसरे लोग हो, डांसर्स हो। तो इस तरह से हम फ्रिंज फेस्टिवल में उन लोगों को बुलाते हैं जो यहीं के हैं और अपने कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं। फ्रिंज फेस्टिवल की एक बात और है कि जो भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती है, जो भी टिकट काउंटर से कलेक्शन होती है, वो पूरी की पूरी उन आर्टिस्ट को जाती है ताकि हम उनको सपोर्ट कर सकें। और इसीलिए हम लोगों को कहते हैं कि अपने शहर के GTA के टैलेंट को आके देखें और उन्हें बढ़ावा दें। और अगर आप इसके इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो एडिनबरा फ्रिंज फेस्टिवल पेरेंट फेस्टिवल है जो स्कॉटलैंड में है, वहां पे इसकी शुरुआत हुई थी 1947 में, तो वहां से ये फैलता ये पूरे विश्व में फैल चुका है।
1: ओके वेरी नाइस। तो मुझे सबसे अच्छी चीज इसमें मेरा टेक अवे ये रहा, आपने जितना बताया कि फ्रिंज फेस्टिवल्स जो हैं ये हम सभी को अटेंड करने चाहिए, टिकट खरीद के अटेंड करने चाहिए, जिससे कि हम लोकल आर्टिस्ट को और आर्ट को यहाँ पे प्रमोट भी कर पाए। कहते ना सबको अपना अपना बिट देना जरूर चाहिए, तभी आर्ट जिंदा रह पाएगी। अच्छा फिर से एक बार वेबसाइट बताएं नीरज जी, ये कहाँ से हम इसकी और जानकारी ले सकते हैं, रजिस्टर कराना है या नहीं, क्योंकि ये फ्री इवेंट है, कहाँ पे रजिस्टर करा सकते हैं इस इवेंट के लिए, इफ वी प्लान टू कम?
0: नहीं मैं उसी पे आ रहा था, मैं फिर से आपको बता दूं, ये इवेंट फ्री है लेकिन रजिस्ट्रेशन जरूरी है ताकि बिल्डिंग में जितनी जगह है उसमें हम आप लोगों को अकोमोडेट कर पाएंगे, यानी कई बार लोग ज्यादा हो जाते हैं, तो जस्ट फॉर द हेड काउंट। पार्किंग फ्री है, कोई टेंशन नहीं पार्किंग की, इवेंट फ्री है, बस रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। रजिस्ट्रेशन आप कहाँ कर सकते हैं, हमारी जो वेबसाइट है सावित्री.ca, SAWITRI.ca, और दूसरी वेबसाइट है mississaugafringe.ca, सारी डिटेल वहां पे मिल जाएगी आपको। कमिंग फ्राइडे 24 जुलाई 6:30 से 9:30 शाम के स्मॉल आर्म्स इंस्पेक्शन बिल्डिंग, ये लेक शोर रोड पे है। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कॉल कर सकते हैं, एक नंबर है 6476407999। अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी भी चीज से रिलेटेड इस फेस्टिवल के, तो आप हमें

0: कॉल कर सकते हैं, आपकी हर समस्या को हम दूर करने का प्रयास करेंगे।
1: चले नंबर मैं फिर से बता देती हूँ, 6476407999। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। 6476407999 ये नंबर है। नंबर नोट नहीं कर पाए मुझसे ले सकते हैं, मेरे पास नोटेड है, मैं दे पाऊंगी जरूर से। तो आप नीरज जी से डायरेक्ट बात करके भी सवाल कर सकते हैं, पर ये फ्री इवेंट है, रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। ये फ्राइडे को है, शाम को 6:30 से 9:30 बजे, इसमें जाएं, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हैपनिंग इवेंट एंड आई विल ट्राई टू कम देयर एज वेल। हम सब वहां मिलके मस्ती करेंगे। नीरज जी थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। मैं फ्रेंच फेस्टिवल के बारे में आपसे जरूर लेती रहूंगी अपडेट्स नाउ एंड देन।
0: जी ट्राई नहीं, आपको आना है और आपको हर हाल में आना है।
1: बिल्कुल, मैं बस अब यही सोच रही हूँ कि हर हाल में तो नहीं, अच्छे हाल में आऊंगी, मुस्कुराते हाल में।
0: तो अगर आपके पास समय हो और आपकी अगर अनुमति हो तो हमारे कुछ सपोर्टर हैं, क्या उनका नाम ले सकते हैं? या
1: प्लीज गो अहेड, प्लीज आई वुड लव टू नो कि कौन कौन है जो आर्ट को यहाँ सपोर्ट करते हैं।
0: जी हमारे साथ एक महानुभाव जुड़े हैं जो कि रियल एस्टेट सेक्टर से हैं, तो उन्होंने, वो हमारे गोल्ड स्पॉन्सर बने हैं, ना सिर्फ एक अच्छे इंसान हैं, वो आर्ट्स को प्रमोट करने वाले, उनका नाम है तरुण मेहता। तो उन्होंने हमें अपना साथ दिया है। तो वो लोग जो अपना, जो नए लोग आते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है शुरू में, किससे बात करें, कहाँ करें, क्या ना करें, तो उनके पास पूरी एक टीम है जो रियल एस्टेट की आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, उससे जुड़ी समस्या हो, उसको आपको डील करेंगे। कई बार क्या कहते हैं ना, एक कॉल बहुत होती है, एक कॉल से कई दरवाजे खुलते हैं, क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट, मॉर्गेज, इंश्योरेंस, पार्टनर्स की भरोसेमंद एक्सपीरियंस टीम है। तो उनसे आप जुड़ सकते हैं और वो आपको वहाँ हमारे जो इवेंट है वहाँ पर भी मिलेंगे। आप आए, उनसे बात करें, और एक बहुत ही अच्छे सज्जन पुरुष है, और उनसे मिलके आप अपनी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी दिक्कत हो आप उनसे मिल सकते हैं। तो हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जहां कहीं भी वो सुन रहे हैं। तरुण मेहता जी, अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 416-816-9277।
1: परफेक्ट, थैंक यू सो मच नीरज जी फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन एंड गुड लक फॉर द फ्राइडे इवेंट।
0: जी जी थैंक यू, आपने मुझे अवसर दिया और जो हमारे साथ हैं उनको आपने दुनिया तक नाम पहुंचाने, उनके बारे में बताने का अवसर दिया, तो थैंक यू फॉर दैट। और अभी जैसे जैसे फेस्टिवल आगे बढ़ेगा हम आपके पास आएंगे और इन्फॉर्मेशन देंगे, और उम्मीद करते हैं कि इस फेस्टिवल को पूरे जीटीए के लोग देखें और इसे एक सुपर हिट इवेंट बनाएं।
1: बिल्कुल, आई रियली होप सो एंड माय प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू,
0: थैंक यू स्वाति, थैंक यू।
2: It's time to Toyota at Markville Toyota. Corolla L lease kijiye from $84 weekly for 60 months with zero down. Ya Corolla Cross L front wheel drive lease kijiye from $98 weekly for 60 months with zero down. Or up Tundra 4x4 Crew Max Limited Nightshade lease kijiye from $208 weekly for 60 months. Great offers, sirf Markville Toyota per. More details ke liye visit kare markville.com. Markville Toyota, a proud member of Vane's Auto Group.

0: हाइब्रिड के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन क्या एक गैस लेक्सस आपके लिए ज्यादा सेंस बनाता है? डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर NX350 और RX350 प्रीमियम पैकेजेस इमीडिएट डिलीवरी के लिए अवेलेबल हैं। और वेलकम बैक लॉयल्टी ऑफर के साथ आप सेव कर सकते हैं थाउजेंड्स। लीज स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $657 पर मंथ फॉर 24 मंथ्स विद एन अमेजिंग 0.4% लीज रेट यूजिंग योर रिफंडेबल डिपॉजिट्स। आज ही विजिट करें DonValleyNorthLexus.com, a proud member of Wings Auto Group.
1: कल का दिन निकला है वो जिसके पीछे हमें मम्मी से अभी भी ताना सुनना पड़ जाता है कि बस रोटी तुम्हारे अलग में नहीं चलती, अंट शंट बोले तो जंक, ये कितना भी खिलवा लो भरे पेट पे जगह निकल आती है इनके तो, अगर सामने जंक फूड हो तो। A day that gives us an excuse कि भाई डांट लो पर आज खाने दो, वो दिन कल ही निकला है। आप गिल्ट फ्री होकर जंक फूड पेल लो, ऐसा कर सकते हो। एक दिन हेल्थ को थोड़ा साइड में रखो और जो जीभ और मन कहे उसकी सुन लो, एंड उस बदनाम जंक फूड को इज्जत से इज्जत दे लो। यू नो व्हाट, मैं कई बार सोचती हूँ कि लाइफ में ना किसी की हम रिस्पेक्ट करते हैं बहुत, और कहीं बस ढेर सारा प्यार होता है रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी नुकसान वो हमें देता है। और हेल्दी फूड इज लाइक वो रिस्पेक्ट वाला थिंक, आई रिस्पेक्ट यू मैन, एंड जंक फूड इज लाइक आई लव यू यार। एंड ऐसा प्यार अंधा ही नहीं, सोच समझ से भी भरे होता है ना। सो भाई, जो हमारी लाइफ में दोनों हमसे ले लेता है, रिस्पेक्ट और लव बोथ, वो एक्चुअली हमारा कंफर्ट जोन होता है। फूड में जैसे कि मेरे लिए तो दाल चावल, और रिश्तों में सबके पास कोई ना कोई तो ऐसा कंफर्ट होता है। आपका कौन है कंफर्ट वाला रिश्ता, बताओ तो जरा। स्टूडियो का नंबर 416593-0055।
2: सीजन 4, सब्सक्राइब नाउ।

0: Advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 PM, your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इंपॉर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $120 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.79% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
3: फायदा उठाएं जून के हॉट ऑट रेट्स का विद अमित खुराना। 3 years fixed 4.19%, 5 years fixed 4.24%, 5 years variable 3.55%. साथ ही मिले $5,100 तक का हॉट ऑट कैश बैक भी, और इतना ही नहीं एक गिफ्ट कार्ड भी अप टू $1,500। है ना आइसिंग ऑन द टॉप। कॉल अमित खुराना एट 6473412785, 6473412785, और विजिट amitkhurana.com.
4: Another Dawn Clean with the Dawn Dux.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
7: कदे क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप दे मुश्किल रस्तियां ते ट्रेलर टो कीता सी, ते आज उही कमाल दी टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोवर नू दोस्त दे कर ले जान लई है। टोयोटा टंड्रा, वड़े मोमेंट्स होन या निकियां मूवमेंट्स, हर हॉल दे लई दमदार एह टाइम है टोयोटा दा। लीज करो 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स SR $154 वीकली तो 36 मंथ्स लई 3.99% APR ते $5,800 डाउन दे नाल। हाइब्रिड उपलब्ध है। विजिट shoptoyota.ca या आज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर को।
8: रेट्रो इन मेट्रो, नुक्कड़ क्लासिक्स।

Well, that was Jatin Lalit ki Melody from 90s ki Basha. Kehne ko to ye detective type film bhi thi, jahan Shahrukh Khan ki puri jasoosi agency thi, ek with all quirky characters jaise ki Johnny Lever and jasoos mates. Matlab mujhe kai baar lagta hai ki more the merrier. ठीक ही होता है, क्योंकि अब देखो ना, जग्गा जासूस फिल्म को आज के दिन रिलीज हुई थी, और जब ये हुई थी ना तो क्वाइट हाई एक्सपेक्टेशंस थी फिल्म से कि एक तो इसमें रणबीर कैटरीना है, क्वाइट अ हॉट कपल थे उस वक्त वो, एंड अनुराग बासु की फिल्म थी जो उससे पहले जस्ट हिट मीठी सी बर्फी देख चुके थे रणबीर कपूर के साथ ही. एंड अलग बात फिल्म में ये भी थी कि डायलॉग्स जो थे ना फिल्म के वो क्वाइट म्यूजिकल थे, बोले तो बोल बोल कर नहीं गा गा कर बोले गए थे. फिल्म में 29 गाने थे पूरे, और उस तरह से इट वॉज क्वाइट क्रिएटिव म्यूजिकली आई मस्ट से. पर एडिटिंग ना वो काफी जल्दबाजी में की गई थी इस फिल्म की, और ये एक्सपेरिमेंट जनता को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? Well, आप देखो, नहीं देखी तो पता चल जाएगा. जग्गा जासूस वॉज लाइक गलती से मिस्टेक हो गया. एंड यस, इस गाने में एक सेंटा क्लॉस भी आपको देखेंगे अगर गाना आपको याद हो तो. अब पूछो तो वो सेंटा क्लॉस कौन है?

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: कदे क्लाइंट दे ऑफ ग्रिड कैबिन दे लई तुसी लंबर पहुंचाई सी, अते अज ओही दमदार टर्बोचार्ज्ड इंजन घर दी सब तो प्यारी डिलीवरी ले आ रहा है। एक नवा डॉल हाउस टोयोटा टकोमा, हर खास डिलीवरी लई भरोसे योग पावर। एह टाइम है टोयोटा दा। लीज करो 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 $120 वीकली तो 36 मंथ्स लई 4.79% APR ते $4900 डाउन दे नाल। हाइब्रिड उपलब्ध है। विजिट shoptoyota.ca जा अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर खोल जाओ।
2: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353। And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 647-453-5353.
3: अपना पहला घर खरीदना है या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है? इस सेमिनार में होंगे मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, लीगल एक्सपर्ट्स एंड PK सबरवाल। एंजॉय एक्सक्लूसिव इंसेंटिव्स, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट एंड लंच 26 जुलाई 2026 को होने जा रहा है।
4: बहुत सारे इंसेंटिव्स जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं है।
3: लिमिटेड सीट्स हैं, आज ही रजिस्टर कीजिए विद न्यू जेन रियल्टी एक्सपर्ट 6472994757, 6472994757, teamsabarwal.com।
5: Real estate ka koi sawal, Team Sabarwal।
6: Another Don clean with the Don Ducks.
7: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
8: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
7: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
8: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
7: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
8: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
7: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
6: Dawn Platinum, the better grease getter.
9: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था, और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए। टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स SR फ्रॉम $154 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 3.99% APR विद $5,800 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
0: Follow us on Instagram. It's RJ Swati _Toronto.

That was from Bajrangi Bhaijaan. Film completed recently, few years of release. Blockbuster thi with a repeat value. Kitni baar bhi dekh lo, achhi lag jati hai. Aur ye wo film thi jisne Dhoom 3 ke collections ko samay sirf 17 dinon ke andar andar piche chhod diya tha. Sundar sa, tikau sa sandesh bhi tha film mein jo sabke man ko bhaya. Aur jitne bhi kirdaar the film mein, un sabko mili bahut sari तालियां. वैसे नॉट मेनी पीपल नो कि बजरंगी भाईजान वॉज सपोज टू बी ऋतिक रोशन एट द टाइम और राकेश रोशन जी डायरेक्शन करने वाले थे और साथ में को प्रोडक्शन भी उनको ऑफर था. पर राकेश रोशन साहब किसी के साथ को प्रोडक्शन में नहीं घुसते तो बोथ रोशन की जगह एंट्री हुई बोथ खान की, सलमान खान और कबीर खान. अब बजरंगी की जैसी इच्छा आप कह सकते हैं. वैसे भी भाईजान नेम सूट्स सलमान मोर आई गेस देन ऋतिक. ऐसा मैं नहीं कहती, उनको भाई बोलने वाले लोग कहते हैं क्योंकि अब वो तो किसी के भाई हैं और किसी की जान ये हम सभी जानते हैं. पर किसी के भाई किसी की जान फिल्म की बात मैं नहीं करूंगी क्योंकि वो एक अलग लेवल का टॉर्चर रही है. हम चलते हैं सीधा गाने पर, सुनते रहे फिल्मी नुक्कड़ विद स्वाति एंड शर्वन.

अच्छी लाइफ के लिए एक सक्सेसफुल करियर होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए रूहानी कॉलेज ऑफ हेल्थ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। वहाँ से सिर्फ एक साल का RMT हाइब्रिड कोर्स करने पर आप $15,000 पर मंथ तक कमा सकते हो। एलिजिबिलिटी 12th पास ओनली। इसके अलावा एक साल की ऑस्टियोपैथिक मैनुअल प्रैक्टिस, एक्यूपंक्चर एंड नेचुरल हीलिंग साइंसेज का कोर्स भी है, जिसे करके $300 पर आवर तक आप कमा सकते हो। कोर्सेज तो और भी बहुत है यहाँ, बस आप अपना करियर बनाने का करो पक्का इरादा। विजिट 239 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट यूनिट 21 ब्रैम्पटन, और कॉल 905-731-2555। विजिट रूहानी कॉलेज.com।

0: एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट। फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर। विजिट veinsautogroup.com।
1: मन की भी ना एक सीमा रेखा होती है, ये मन को कहाँ पता होता है, ये तो बस हमें पता होता है ना। तो बस उसी की कश्मकश को म्यूजिकली बताता मुकेश साहब की आवाज में ये गाना, आज उनकी बर्थडे पर बनता भी है, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स। तो छोड़ी जाती हूँ इसके साथ, दिस इज स्वाति साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, सेइंग कि कभी कभी मन की उलझनों में उलझे रहने का भी अपना ही एक मजा होता है ना। सो लेट इट बी, लेट इट बी। मिलते हैं फिर, बेदार उलझा सुलझा मन।

0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी। कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? खुदा रब्बे करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब्बे करीम आपको आसानी अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद सलाम। के खुद अल्लाह रब्बे करीम और फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीद मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीद मजीद। या रब्बुल आलमीन। आज टोरंटो और उसके गिरदनवाह में मगरिब की अजान का वक्त 8:53। कल सुबह फजर की नमाज का वक्त शुरू होगा 4:17। तलुए आफ्ताब 5:26। आज का कॉल: जो आदमी दुआएं नहीं मांगता खुदा उसकी दुआ को कबूल नहीं करता। आज 22 जुलाई है, 7 सफर मुजफ्फर, बुध वेनसडे का खुशगवार दिन, 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता दर्ज हरारत, रोशन चमकता सूरज। कल भी मौसम मुतदिल और रोशन दिन की पेशगोई है, 24 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा। ऐसे रेडियो पाकिस्तान टोरंटो का साथ अरशद भट्टी के साथ और सबसे बढ़कर आपके साथ साथ हमारा और आपका साथ रहेगा आपसे 8 बजे तक। स्टूडियो इंजीनियर हमारे साथ मरियम है। आप सबकी सेहत सलामती तंदुरुस्ती और खुशहाली की दुआओं के साथ यही दुआ की जिंदगी के इस सफर में हमारा और आपका आवाज़ का ये रिश्ता यूं ही कायम रहे। जहां जहां मेरे छिड़ प्यारे सामिन हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, ख्वाहिश रोजाना की तरह आज भी ही कि आप सबकी आवाज़ हमारी आवाज़ में शामिल रहे। तरीका बहुत आसान है, प्रोग्राम के दौरान हमसे रब्ते में रहा कीजिए। राबते के नंबर है 416-593-0003। अगर आप बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस की तफसील ज्यादा मौसर तौर पर सामीन तक पहुंचे, तो रेडियो पाकिस्तान टोरंटो में एडवर्टाइज करके आप यकीनन दुरुस्त फैसला करेंगे। 416-300-5600 इस नंबर को अपने पास महफूज कीजिए। जब फुर्सत मिले हमसे रब्ता कीजिएगा, हम आपकी तरक्की में इंशाल्लाह मुआविन साबित होंगे। 416-300-5600। हेडलाइंस आपके लिए पेश करेंगे, फिर कनेडियन इंग्लिश हेडलाइंस वानी आपके लिए पेश किया करती हैं, तफसीली खबरें 7:30 आपके लिए पेश की जाती हैं।
1: न्यूज के लिए हमें दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट। फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861।
2: खिदमत है अब तक की खास खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत जारी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूनसून बारिशों की पेशगोई की गई है। पाकिस्तान और ईरान ने सिक्योरिटी तावन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। कनाडा ने अमेरिका के साथ नए ब्रिज की सेलिब्रेशन को कैंसिल कर दिया है। अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद डोनाल्ड ट्रंप का सेंटकॉम को ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोलने का हुक्म। उधर ईरान से जंग में हलाक 4 अमरीकी फौजियों की मैयतें अमरीका पहुँचा दी गयी है। जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी अमीरुल अजीम इंतकाल कर गए। मनीला में आसियान इजलास में शरीक अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के खिलाफ मुजाहरा किया गया है। वजीर अजम शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। फ्रांस में 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। भारत में पहली डेंगू वैक्सीन की मंजूरी दे दी गई। ये थी अब तक की खास खास खबरें। तफसीली खबरें सुनिए 7:30 पर।
3: Good evening, you're listening to Radio Pakistan Toronto. This is Meevani with local updates. Toronto man with alleged links to Hamas facing terrorist charges in connection to 2024 demonstration. Man seeks answer after mystery object appears to fall from sky and crash into car on Highway 427. Brampton couple wins $70 million Lotto Max jackpot after Mother's Day gift turns into the surprise of a lifetime. Toronto man charged after allegedly robbing store with rock. Scarborough Plaza fire deemed suspicious, leaving multiple tenants displaced. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
0: कनेडियन इंग्लिश हेडलाइंस वानी आपके लिए पेश किया करती हैं। स्टूडियोज़ में रब्ते के नंबर 416-593-0003। गैलेक्सी इंटरनेशनल एक्सचेंज का आज का रेट है 196 रुपये। डेबिट और ईमेल ट्रांसफर के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर लीजिए, वहाँ अकाउंट नहीं है, कैश बैंक ड्राफ्ट भी हासिल कर सकते हैं। घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कीजिए। gondalbrothers.com पे आप लॉग इन हो जाइए। आज का रेट है 196 रुपये। कॉल कर लीजिए 905-306-0000, 905-306-0000। آج کے دن مارگیج کی معلومات راجیو تلوار صاحب آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. عائشہ منور صاحب ایڈیٹ کنسلیشن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. آئی سی ایس امیگریشن سے ایم ڈی بھائی ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں. تفصیلی خبریں 7:30 بجے اور پھر 8 بجے یہی خبریں جو لائیو 7:30 ہوں گی وہ آپ کے لیے رپیٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کی لائیو کالز لیتے ہیں. وہ ہمارے سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے جس میں ٹک ٹاک بھی ہے, فیس بک بھی ہے اور یوٹیوب بھی ہے. سیم نمبر ہوتا ہے 4165930003. میرے شعر پیارے سامعین, آواز کی تاثیر مسلم ہے. ایک آواز اطاعت پیدا کرتی ہے اور ایک آواز بغاوت پیدا کرتی ہے. ایک آواز خوف پیدا کرتی ہے, ایک آواز شوق پیدا کرتی ہے. آواز انسان کو محبوب بناتی ہے اور آواز ہی سے انسان ناپسند کیا جاتا ہے. آواز بڑی پر تاثیر ہوتی ہے. کسی کے منہ سے نکلی ہوئی آہ آسمان کو چیر جاتی ہے اور کسی کی فریاد بے حسی کی کانوں سے ٹکرا کر شرمسار ہو جاتی ہے. کرخت آواز دوزخ کے نگرانوں کی ہوتی ہے, جنت کے مکین شیریں سخن ہوتے ہیں. سب سے پیاری آواز سب سے پیارے انسان کی ہے. اللہ کو یہ آواز اتنی پیاری کہ اس نے حکم دے رکھا ہے کہ خبردار کوئی آواز اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو, ورنہ سب اعمال ضائع ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کے مقابل دنیا کی ہر آواز کا قد پست ہے. یہی راز ہے, یہی اس پیغام کی ندرت ہے جو آپ کی آواز نے عطا فرمایا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہی گرے ہوئے انسانوں کو سنبھالتی ہے اور آپ کی آواز ہی روشن مستقبل کی طرف نشاندہی کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز قلوب کو منور کرتی ہے اور یہ آواز زمین و آسمانوں میں سب سے زیادہ مقبول آواز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر چلنے والے مسافروں کو خدمت میں سلام. اللہ رب کریم سے دعا ہے خدا رب کریم ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.

0: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
1: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
0: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
1: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
0: दैट्स वंडरफुल।
1: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
0: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
1: ऑन बवे, जस्ट वेस्ट ऑफ मैकलॉगलन। टेलीफोन 905-450-2828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस.ca।

0: 7323
1: सिर्फ मॉर्गेजेस दस राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा तो याद रखिए मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 905-819-1001 License number 12374
2: राजीव तलवार साहब आज के दिन हमारे साथ हुआ करते हैं ए वेरी रिनाउंड एंड वेरी वेरी पॉपुलर मॉर्गेज एडवाइजर हैं मॉर्गेज ब्रोकर हैं और मॉर्गेज की कोई भी प्रॉब्लम हो वेरी वेल नोन ब्रोकर आप इनसे राबता कीजिए ऑन द फोन आपको बता देंगे कि आप अप्रूव हैं या नहीं है लास्ट मिनट की मॉर्गेज के स्पेशलिस्ट हैं अगर आपको कहेंगे कि आपका काम हो जाएगा तो फॉर श्योर आपका काम हो जाएगा 905-819-1001 इनके राबते का नंबर है खुश आमदीद कहेंगे राजीव भाई वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो
3: बटी साहब थैंक यू वेरी मच हेलो लिसनर्स कैसे हैं आप सब
2: बहुत शुक्रिया आपका बहुत से लोग जो हैं वो कनाडा से बाहर भी रहते हैं वो कैनेडियन जो ओवरसीज रहते हैं उनकी मॉर्गेज के हवाले से आप बताइएगा कि उनकी मॉर्गेज हो सकती है और हो सकती है तो आप किस तरह से उनको हेल्प कर सकते हैं
3: हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स आउटसाइड कनाडा रहते हैं बटी साहब आप जानते हैं मेरे को अराउंड 23-24 साल हो गए हैं इतने सालों में हमने हंड्रेड ऑफ एप्लीकेशंस करी हैं जो कैनेडियंस बाहर रहते हैं स्पेशली जो यूएस में रहते हैं हमने यूरोप में भी काम किया है और केमैन आइलैंड्स एंड ऑल अदर प्लेसेस वी हैव गेट मैं आपको तफसील से बता देता हूँ देखिए साहब स्पेशलाइज सोल्यूशन है हमारे पास फॉर कैनेडियंस लिविंग एंड वर्किंग इन द यूएस हो चाहे वो मिडल ईस्ट में हो चाहे वो यूरोप में हो एशिया में हो या किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में वो काम करते रहते हैं वी हैव स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशंस फॉर देम हमारे पास बहुत सारे लेंडर्स हैं एक्सेस टू मल्टीपल लेंडर्स चाहे वो ए लेंडर्स हो वो भी हैं बी भी हैं और प्राइवेट तो बहुत सारे हमारे पास है ही है सर उसके अलावा एक्सपर्टीज इन फॉरेन इनकम जो करेंसी कन्वर्जन है यूएस के साथ या कनाडा का या दूसरे कंट्रीज से आ रहे हैं जो उनकी जो फॉरेन इनकम है उसको कैसे डील करना है ताकि कैनेडियन लेंडर उनको उस इनकम पे मॉर्गेज दे वी स्पेशलाइज इन दैट सर उसके अलावा क्लाइंट अगर बाहर रहता है किसी भी कंट्री में रहता है उसकी मॉर्गेज एप्लीकेशन उसकी डॉक्यूमेंट साइनिंग उसका अप्रूवल फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड हम कराते हैं बिना कनाडा आए हुए सर वो जहां पे है वहीं से ही एप्लीकेशन करके हम उनका काम वहीं बैठे बैठे कराते हैं सर प्री अप्रूवल्स अगर किसी को शॉप अराउंड करना है प्री अप्रूवल्स बिफोर यू शॉप उसके अलावा अगर आपको फाइनेंस फॉर इन्वेस्टमेंट या वेकेशन प्रॉपर्टीज में कुछ करना है वी डू दैट क्रॉस बॉर्डर एक्सपीरियंस यूएस के साथ बहुत है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट्स हमारे हैं जो ओवरसीज वाले यूएस में हैं तो उसका हमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है आइए फाइंड आउट व्हाट आई कैन डू फॉर यू वी विल प्रिपेयर अ पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज स्ट्रेटजी फॉर एवरी क्लाइंट हु इज लिविंग आउटसाइड कनाडा उसके अलावा बिल्कुल फास्ट और डिजिटल कम्युनिकेशन का इंतजाम है ताकि उनके टाइम लाइन के हिसाब से देखिए टाइम वहां फर्क हो सकता है 3-4 घंटे का यूरोप में यूएस में फर्क है यूरोप में 8-10 घंटे का फर्क है ऑस्ट्रेलिया में 18 घंटे का फर्क है तो उस तरह का टाइम लाइन के लिए भी हमारे पास सारा इंतजाम है ताकि आपके टाइम के ऊपर हम काम करके देंगे और सपोर्ट बियॉन्ड मॉर्गेज मॉर्गेज हमारे जो क्लाइंट्स हैं सब जो यूएस में रहते हैं बहुत सारे उसके अलावा भी वी हैव पर्सनल रिलेशंस दे कम एंड विजिट अस एंड मीट अस सो मेनी थिंग्स विच वी कैन डू फॉर क्लाइंट्स हु आर लिविंग आउटसाइड कनाडा सो अगर सामीन आप जानते हैं आपकी फैमिली में या आपके कोई रिश्तेदार या आपके फ्रेंड सर्कल जो बाहर रहते हैं एंड दे आर लुकिंग टू डू समथिंग लाइक दिस इन कनाडा अगर वो कैनेडियन सिटीजन या कैनेडियन पीआर होल्डर है तो कॉल अस बैक डेकेड्स ऑफ मॉर्गेज एक्सपर्टीज है आपको मालूम है मेरे को 23-24 साल से मैं ये काम कर रहा हूं और किसी भी तरह के यूनिक फाइनेंसिंग चैलेंजिंग हो देखिए जो लोग बाहर की इनकम कमाते हैं कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं कुछ गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं कुछ प्राइवेट में जॉब करते हैं, उस इनकम को यहाँ कैसे प्रेजेंट करना है और कैसे उस पर मोर्गेज करानी है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. वी आर डूइंग इट फॉर अ वेरी वेरी वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. बहुत दिनों से बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, तो कॉल अस बैक, सी व्हाट वी डू फॉर यू इफ यू और योर फैमिली इज लिविंग आउटसाइड कैनेडा. एज लॉन्ग एज आप कैनेडियन सिटीजन है, किसी भी तरह का काम कैनेडा में मोर्गेज का या परचेज का या रिफाइनेंस का, वी विल डू इट विदाउट यू कमिंग टू कैनेडा.
2: अच्छा, एक चीज सिर्फ ये है कि अब जाहिर है ये बाहर हैं तो उनके, और जैसे आपने बता दिया कि उनके टाइमलाइन के मुताबिक आप काम करते हैं, तो इसके लिए कोई टाइम ज्यादा चाहिए होगा या जिस तरह रूटीन में मॉर्गेज हो रही उसी तरह उन्हें टाइम
3: मिले? टाइम तो उतना ही चाहिए होगा. देखिए, क्योंकि बाहर की थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इनकम है, 10-15 दिन और लगा लीजिए, 2-3 साल लगा लीजिए, इससे ज्यादा नहीं. अगर यहाँ पे किसी भी मॉर्गेज को करने में 1-1.5 महीना लग रहा है तो आप 15 दिन और लगा लीजिए. ये क्योंकि पेपर वर्क आने में टाइम लगता है, थोड़ा टाइमिंग का फर्क है, वहां दिन है तो यहाँ रात है, यहाँ रात है तो इस तरह से अगर 10-15 दिन और लगा लीजिए, इससे ज्यादा नहीं. हमारे बहुत क्लाइंट्स हैं यूएस में, बहुत जगह हम काम कर रहे हैं. कॉल अस बैक, सी व्हाट माय ऑफिस
2: Right. जनाब अगर आप बाहर भी रहते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो. जनाब राज तलवार साहब की पूरी टीम आपके लिए 24/7 आपको जो है वो सहूलत देती है. आप इनसे रब्ता कीजिए और फॉर श्योर आपके मॉर्गेज जो है वो फॉर श्योर हो जाएंगे. नंबर नोट कर लें, 905-819-1001. थैंक यू वेरी मच राजीव भाई, बहुत शुक्रिया आपका, और फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे बात करते हैं. थैंक यू.
3: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. बाय लिसनर्स, टॉक टू यू सून.
2: श्योर, थैंक यू वेरी मच. नंबर नोट कीजिए राजीव तलवार साहब का, 905-819-1001. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, CMR 101.3 FM. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सेंटकॉम को ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोलने का हुक्म दिया है. अमरीकी फौजियों के इलाके के 3 रोज कबल भी अमरीकी सेंट्रल कमांड को जहन्नुम के दरवाजे खोलने का हुक्म देते हुए ईरान पर हमला शुरू करने की हिदायत दी थी, और 3 रोज पहले का बयान सोशल मीडिया अकाउंट पर आज दोबारा उन्होंने जारी किया है. और दूसरी जानब ईरान से जंग में 4 अमरीकी फौजियों की मैयतें भी अमरीका पहुंचा दी गई हैं. अमरीकी सदर ने डोवर एयरबेस डिराइवर पर कौमी परचम में लिपटी इन मैयतों को वसूल किया है. अमरीका में ट्रंप की ईरान से जंग पर मुखालफत अब बहुत बढ़ रही है. इस जंग में अब तक तकरीबन $38 अरब खर्च हो चुके हैं, जबकि मरने वाले अमरीकी फौजियों की तादाद 18 है. ईरान इससे बहुत ज्यादा क्लेम करता है और 450 से ज्यादा अमरीकी फौजी अब तक जख्मी हुए हैं. रोज के बयान हैं और दूसरी तरफ से भी सख्त बयान हैं. वो कहते हैं हम तैयार हैं, अगर कोई कार्रवाई की जाएगी तो उसका सख्त से सख्त जवाब देंगे, ये ईरान का कहना है. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, CMR 101.3 FM, और वक्त आपके लिए चलने का आज के शायरी के सेगमेंट की तरफ.
4: जो आंसू दिल में गिरते हैं वो आंखों में नहीं रहते, बहुत से हर्फ ऐसे हैं जो लफ्जों में नहीं रहते. किताबों में लिखे जाते हैं दुनिया भर के अफसाने, मगर जिनमें हकीकत हो किताबों में नहीं रहते. बाहर आए तो हर एक फूल पर एक साथ आती है, हवा जिनका मुकद्दर हो वो शाखों में नहीं रहते. लिए फिरते हैं कुछ अहबाब ऐसे मुस्तरिब सजदे, जहां दरबार मिल जाए जमीनों में नहीं रहते. महक और तितलियों का नाम भंवरे से जुदा क्यों हो, कि ये भी खिजा आने पे फूलों में नहीं रहते. जो आंसू दिल में गिरते हैं वो आंखों में नहीं रहते, बहुत से हर्फ ऐसे हैं जो लफ्जों में नहीं रहते.

0: स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 905-275-3555 905-275-3555
1: 918 Dundas Street East Unit 1C Mississauga पटकड़ाही की पिकरिंग लोकेशन में आपके लिए हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता ऐसा जायका जो आपने पहले कभी चखा ही ना हो सुबह 11 बजे से आपके लिए ओपन इसके अलावा पटकड़ाही की रिवायती कड़ाही बीफ पाए निहारी खोए वाले चने स्मोकी कीमा बटर सेसमी नान लस्सी और बेशुमार आइटम्स केटरिंग के लिए स्मॉल और लार्ज ट्रेज अवेलेबल है रेस्टोरेंट के साथ 150 लोगों तक की पार्टी के लिए बैंक्वेट हॉल जिसमें मेहंदी बर्थडे वेडिंग फैमिली या कॉर्पोरेट इवेंट्स अरेंज किए जा सकते हैं बुकिंग लिए अभी कॉल कर लें बटकराही 820 किंगस्टन रोड पिकरिंग 905-839-0002 कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट हैं मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्राइवेट या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन पर्सनल लोन या बिजनेस लोन 100% गारंटीड अप्रूवल कॉल शिराज हुसैन 647-271-4147 647-271-4147 डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी एंड एसोसिएट्स अब मिसिसागा के बाद स्कारबरो में 2155 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट लॉरेंस और ब्रिजमाउंट का इंटरसेक्शन 416-757-9999 दांतों की कोई भी बीमारी हो आप एतमाद के साथ डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी और उनकी तजुर्बाकार टीम की प्रोफेशनल सर्विसेज का फायदा उठाइए तमाम इंश्योरेंस प्लान एक्सेप्ट करते हैं इंश्योरेंस ना रखने वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंट रूट कैनाल ट्रीटमेंट और री ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट हैं मिसिसागा लोकेशन 1110 ब्लूर स्ट्रीट ईस्ट ब्लूर और डिक्सी के इंटरसेक्शन 905-232-5678
2: पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 FM स्टूडियोज में रब्ते के नंबर 416-593-0003 आपको हम लिए चलेंगे ग्लोबल एडवाइजरी इंक के ऑफिस में जहां नागपाल साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं 437-264-3175 इनके रब्ते के नंबर है गवर्नमेंट की ग्रांट्स जो बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं लास्ट वीक है ये और आप ना सिर्फ ये कि एक स्किल हासिल करते हैं आप एक प्रोफेशन नया बना चूज कर सकते हैं बल्कि इसके साथ आपको नॉन रिफंडेबल ग्रांट भी मिलती है और क्या तरीक़ेकार है नागपाल साहब से ही पूछेंगे खुश आमदीद कहेंगे नागपाल जी वेलकम यू इनवेरी पाकिस्तान टोरंटो
3: थैंक यू जी सभी को सलाम और खुश आमदीद
2: बहुत शुक्रिया आपका और हम रोज़ाना ही आपसे ये सवाल करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें बहुत से लोग फ़ायदा उठा भी चुके हैं क्या ये लास्ट ही वीक है और इसके बाद ये चांस ख़त्म हो जाएगा कि उसके बाद लोग ग्रांट कम अज़ कम नहीं हासिल कर सकेंगे
3: बिल्कुल जी ऐसा ही है ये लास्ट वीक है सैटरडे तक जितने एडमिशन जिन्होंने ले लिए दे आर गुड दे विल गेट द ग्रांट्स और लाइक जो उसके बाद लेंगे उनको ग्रांट्स नहीं आएगा गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर रही है कॉल करें 30 से 100,000 की फंडिंग हासिल करें तालीम भी हासिल करें हुकूमत से फंडिंग खर्चे पाने के लिए लिविंग एक्सपेंसेस के लिए अपने अकाउंट में डायरेक्ट हासिल करें कितने क्लाइंट्स 8 साल से कर चुके हैं 8 साल से इस धंधे में आज शुरू नहीं करा बहुत टाइम हो गया है
2: ठीक है 437-264-3175 इनके रास्ते के नंबर है अच्छा इसमें जाहिर है आप बता रहे हैं कि जिनकी इनकम जो है वो कम है उनको ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है तो क्या कुछ उसकी एज लिमिट भी है या कोई ख़ास क्वालिफिकेशन चाहिए या कोई पेपर्स ख़ास चाहिए इसके लिए
3: हाँ जी बड़े अच्छी बात है बड़ी और बड़ी अलग बात है कि मतलब बैंक तो अमीरों के लिए है इनकम ज्यादा है तो ही आपको कुछ देंगे चाहे लोन भी देंगे या तो आपके इनकम अगर कम है सिर्फ तो ही आप हमें कॉल करें उबर ड्राइवर ट्रक ड्राइवर हाउस वाइफ अनएम्प्लॉयड जिनकी इनकम नोटिस ऑफ असेसमेंट में लेस देन $70,000 है फैमिली इनकम 2024 में कॉल करें 30 से 100,000 की फंडिंग हासिल करें अगर कोई फैमिली ऑफ फाइव है मतलब तो 100,000 आ रहा है तो 50,000 तो ग्रांटी है ना सर वापिस ही नहीं करना रेस्ट 50,000 0% पे लोन है बिना क्रेडिट चेक के नो एज लिमिट हमारे इतने पेंशन वाले क्लाइंट्स भी सक्सेसफुली कर रहे हैं और फंडिंग भी हासिल कर चुके हैं खर्च भी कर चुके हैं
2: 437-264-3175 रबते के नंबर अच्छा क्या तरीक़ेकार है को पेपर्स होते हैं असाइनमेंट्स होती हैं घर बैठ के ऑनलाइन करते हैं या कॉलेज जाना होता है
3: ज्यादातर क्लाइंट्स चूज करते हैं आसान से कोर्सेज फुली ऑनलाइन नो एग्जाम्स ओनली इजी असाइनमेंट्स बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए कहीं से भी आपने 10th पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी आपने 10वीं कर रखी हो
2: अच्छा
3: गुड टू गो और कोई एज लिमिट नहीं है कोई क्रेडिट चेक नहीं है आपका एनुअल लगता है, आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, तो गवर्नमेंट आपको आपके फैमिली साइज पे फंडिंग दे रही है, ना कि आपकी इनकम पे, और जितनी इनकम कम है तो ही आपको फायदा सिर्फ
2: सही
3: ऑनलाइन कोर्सेज है, फोन पे आप लगाएं, कंप्यूटर पे लगाएं, तालीम हासिल करें, मत छोड़े ये मौका, और 30 से 100,000 डॉलर ले लें, क्योंकि बाद में ग्रांट नहीं मिलेगी आपको। मिलेगी
2: बिल्कुल। 4372643175 पे आप कॉल कर लीजिए। अच्छा, अभी आपने फैमिली ऑफ के नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स के हवाले से बात की, तो क्या तरीकेकार होता है? जाहिर है जिनके फैमिली मेंबर ज्यादा उनको ज्यादा ग्रांट मिलेगी, मतलब कितनी मैक्सिमम ग्रांट मिल जाती है?
3: आज आप मान के चले आपके शो से 3 फैमिलीज आई हैं, सबके 4-4 बच्चे हैं, तो उन सबका $100,000 बन रहा है।
2: अच्छा,
3: और लाख में से 50,000 तो ग्रांट है। अब जिन्होंने आपके शो से मई में एनरोल करा था, आज उन बंदों की 6 फैमिलीज की फंडिंग गिरी उनके खाते में।
2: अच्छा, वेरी गुड।
3: तो मतलब अगर $100,000 बन रहा है आपको, तो उसमें से 50,000 तो ग्रांट है। कुछ बंदों ने लोन नहीं लिया 50,000 का, वो कहते हैं इससे संतुष्ट है, बट लोन 0% पे ज्यादातर लोग लेते हैं, इसलिए जितना ज्यादा फैमिली साइज उतनी ज्यादा फंडिंग आपके खाते में।
2: सही। अच्छा, आपकी फीस कितनी है? आपकी
3: फीस हमारी 199 या 499, 200 या 500, काम होने के बाद ईमानदारी आपकी चेक है, फंडिंग आपके खाते में आती है, मेरे खाते में नहीं आती। आपका फायदा हाथी जितना, हमारा फायदा चीटी जितना, हमारी जगह हमारी गुल्लक पे है, ईमानदारी से कर रहे हैं, भूल जाइए। आप सारे लोग आजकल चलाक है, लेकिन हम चलाक नहीं है, मीठी बातें नहीं है, इतने लोगों को हम असिस्ट कर चुके हैं, जितने बार लिसनर में सुन भी रहे हैं उनमें से 40% आपके क्लाइंट रिटेन ही है।
2: वेरी राइट, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया नागपाल जी, हमें उम्मीद है लोग इसका फायदा उठाएंगे। बहुत ही कम वक्त रह गए हैं, फिर आपसे बात करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नंबर नोट कर लीजिए, अभी कॉल कर लें, 4372643175। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 FM। जमात इस्लामी पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी अमीरुल अजीम इंतकाल कर गए, इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 1958 में लाहौर में पैदा हुए थे, काफी अरसे से अलील थे। इस्लामिक स्कूल संत नगर से उन्होंने मैट्रिक और इस्लामिया कॉलेज से उन्होंने FSC पास किया था। बड़े डेडिकेटेड जमात इस्लामी के जो हैं ये कारकुन रहे हैं, और तवील अरसा तक जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी इत्तेहाद भी रहे। अल्लाह रब करीम इनको अपनी जवार में जगह दे और इनके दर्जात को बुलंद करें, आमीन।
4: बहुत खुशबू आ रही है खाने में, ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो।
5: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है, जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए, ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके।
6: हांडी मसाले, बिल्कुल घर जैसा स्वाद।
7: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 416-746-5550।
8: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल डिफेंस में चार्ज हो गए हैं, या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773। कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ते कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं। फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773।
9: के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स, या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ 6887 Dixie Road, मिसिसागा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 Auction Lane ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600।
10: DMK brings you the hottest South Asian festival of the year, Durham Summer Fest 2026, presented by TD Bank Group. Day 1 featuring rock stars Ali Azmat and Mustafa Zahid on August 22nd. Day 2 brings you unforgettable Qawwali Night by Sur Sagar on August 23rd, with free parking and free admission at Ajax Downs, 50 Alexander's Crossing, Ajax, Ontario. Enjoy kids' activities and indulge in delicious South Asian cuisine. For sponsorship or vendor opportunities, visit www.bmkevents.ca or call 416-897-1683.
11: अपने मकान की next month closing है, कुछ सोचा है? TV और appliances कहाँ से लेने हैं?
12: हाँ, Brampton TV and appliances, जहाँ special sale चल
11: चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज हुड, माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
12: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
11: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
12: दैट्स वंडरफुल।
11: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
12: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
11: ऑन बवे हेड, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट brampton appliances.ca।
13: SSR ऑटो रिपेयर, 3438 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट, स्कारब्रो, वार्डन और शेपर्ड का इंटरसेक्शन। 24/7 ऑटो रिपेयर, वेरी क्लोज टू हाईवे 401। तमाम मेजर रिपेयर वर्क करते हैं, बॉडी शॉप, एक्सीडेंटल रिपेयर, डेंटिंग, पेंटिंग, इंजन रिपेयर, ऑयल चेंज, टायर चेंज, ब्रेक पैड्स एंड राउटर, व्हील अलाइनमेंट, बैटरी एंड एसी सर्विस। 24/7 टोइंग सर्विस भी अवेलेबल है। SSR ऑटो रिपेयर, कॉल नजीर चौधरी, अवैस चौधरी और मुनीर हुसैन। 6473217444। इट्स 6473217444।
14: सहजा केरला आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर, जहां केरला वैद्य रत्न पीवे राज जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। खानदानी वैद्य हैं जो नबज देह के बीमारी का इलाज करते हैं। हजारों मरीज उनके इलाज से सेहतयाब हो चुके हैं। अस्थमा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, कमर या घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस और हर तरह की बीमारियों के इलाज के माहिर हैं। ब्रैम्पटन में रابطے का नंबर 6473278111। इट्स 6 4 7 3 2 7 8 triple 1।

0: रानी राजधानी। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
3: Barbecue Tonight की दूसरी लोकेशन 5165 Dixie Road, Dixie और Emco का इंटरसेक्शन Mississauga में। 200 से ज्यादा लोगों की गुंजाइश, बड़ी पार्टीज भी आप अरेंज कर सकते हैं। बारबेक्यू आइटम्स, बिहारी कबाब, सीख कबाब, कड़ाही, बिरयानी, ताजा नान और बेशुमार डिशेज। जायका वही और खूबसूरत सेकंड लोकेशन। पार्टीज की बुकिंग या मालूमात के लिए कॉल कीजिए 9052829868। बारबेक्यू टुनाइट की सेकंड लोकेशन 5165 Dixie Road, Dixie और Emco का इंटरसेक्शन Mississauga में 9052829868।